0: कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी,
1: तो क्या कहा आपने?
0: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं I love you, सुबह सवेरे काम पे जाऊं I love you।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: चलिए सुनते हैं पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे याचना नमस्कार
1: नमस्कार निर्माणी सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार कल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला गया इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच और इसी के साथ 60 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनने का इंग्लैंड का सपना अधूरा रह गया और अर्जेंटीना फाइनल्स के लिए अपनी जगह बना गया स्कोर रहा इंग्लैंड 1 अर्जेंटीना 2 अब सभी की निगाहें फाइनल मैच पर टिकी रहेंगी फाइनल खेला जाएगा रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच लायनल मेसी दुनिया का दूसरा ऐसा खिलाड़ी बन गया जो तीसरी बार के लिए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में खेलेगा पहला खिलाड़ी है कफू जो ब्राजील के साथ खेला था और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप का फाइनल एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर रविवार 11 बजे आप देख पाएंगे मॉरिशस टेलीकॉम देश की तकनीकी स्वरूप को नई दिशा देने की तैयारी में है देश की प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज और कल पाई के स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित अपने प्रमुख प्रौद्योगिकी सम्मेलन ऑल माइटी समिट 2026 के लिए डिजिटल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को एक मंच पर ला रही है राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब केवल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में

0: नहीं बल्कि देश के आर्थिक और वित्तीय परिवर्तन को गति देने वाली संस्था के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मॉरिशस में खतरनाक दवाओं की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वित्तीय अपराधों की रोकथाम संबंधी अपनी रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग में कई गंभीर खामियों और कमजोरियों का खुलासा किया है। विदेश की खबरों में जो आज सुर्खियों में है, उनमें ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के पांचवें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान अमेरिकी बलों ने होर्मुज जलमार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान को बंदरगाहों पर लगाए गए नौसैनिक ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खाली एयर टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है। अब चले जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। हमारे इलाके पर हल्की से सामान्य हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह सेंट्रल प्लेटो पर कुछ बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। दोपहर बाद भी बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। रात को आसमान साफ रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19, अधिकतम 22 से 24। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 7:45, शाम को सूर्यास्त 5:47 पर होगा।
1: RM3 Radio.

और आखिर में मैं भी बारगाहे हैदरी में दो तीन अशआर पेश करके इजाजत चाहूंगा। मिलके इस कलाम को बाबा से बुलंद मेरे साथ पढ़िएगा।

जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हज़रत मुआविया बिन जहमा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि उनके वालिद जहमा रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया, क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी खिदमत को लाजिम पकड़ो क्योंकि जन्नत उनके कदमों के नीचे है। यह हदीस वालिदा की खिदमत की अजमत को वाज़ह करती है। अगर वालिदैन को औलाद की ज़रूरत हो तो उनकी खिदमत बहुत से नफली आमाल से भी ज़्यादा फजीलत रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स पर जिहाद या दीगर इबादत तर्क करना लाजिम है, बल्कि ये कि जब वालिदैन मोहताज हों और उनकी खिदमत ज़रूरी हो तो उनका हक मुकद्दम हो जाता है। माँ की खिदमत उसकी दिलजोई, बीमारी में तीमारदारी, उसके आराम का ख्याल रखना और उसके लिए दुआ करना जन्नत के हुसूल के अहम

सामीन मोहतरम, वालिदैन के लिए नसीहत। अल्लाह ताला ने आपको औलाद की शक्ल में एक अजीम अमानत अता फरमाई है। जिस तरह औलाद पर आपके हुकूक हैं, इसी तरह आप पर भी उनके हुकूक हैं। बच्चों के साथ मोहब्बत, शफकत, अदल और नरमी का बर्ताव करें। उनकी बात गौर से सुने। उनकी गलतियों पर फौरी गुस्सा करने के बजाय हिकमत से इसलाह करें। उनके दिल में खौफ के बजाय एतमाद पैदा करें। उन्हें दीन की तालीम दें, नमाज, कुरान और अच्छे अखलाक की आदत डालें। बेटों और बेटियों में किसी किस्म का इब्तियाज़ न करें। उनकी जायज़ ख्वाहिशात का ख्याल रखें। उनके लिए दुआ करें और अपनी अमली ज़िंदगी से बेहतरीन नमूना पेश करें। याद रखें, मोहब्बत से की गई तरबियत नस्लों को सवार देती है, जबकि सख्ती और नाइंसाफी दिलों में दूरियां पैदा कर देती है। सामिन मोहतरम, सबाल खैर प्रोग्राम करीब ख़त्म होने वाला है। आइए आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इंशाल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही

0: ஃப்ரீ வானொலி
1: இன்றைய காலை சிந்தனை.

94.6 98.2 RM3.

सो प्रति रोजू अदे संदेश अदे उद्देश्य तोने मिम्मल्नी अंटे रंजिंपजेयडानिकी ओक प्रत्येकमैन उद्देश्य तोने मन पाटल लिस्ट लो चाला निदानंगा मनं सिलेक्ट चेसी मीकु प्रसारं चेस्तानु श्रोतलारा मीरु गमनिंचिनट्टुगा ई रोजु ऑलरेडी अंटे जुलाई नेल ओक 16 तारीखुन अनुकुंटुन्नानु इदी जुलाई नेल ओक अर्ध भागं वरकु

0: RL3 Radio.
1: आवो अमारी साथे।

0: best 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति, ताल FM पर.
4: श्रोतागण को अनीता का सप्रेम अभिवादन है. अभी आप रेडियो मनोरंजन की लहरों पर भक्ति में शक्ति कार्यक्रम सुन रहे हैं. भक्तगण, कहा गया है कि ईश्वर की सच्ची उपासना करने से व्यक्ति स्वयं को इतना स्वतंत्र और आनंदित अनुभव करता है कि दूसरे लोग भी उसे देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि ना जाने इसे कौन साधन मिल गया हो. तो चलिए इसी सुविचार के साथ इस कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं.

श्लोक इस प्रकार है, संतोषः परमो लाभः सत्संगः परमागति विचारः परमं ज्ञानं रामो हि परमं सुखम। कहने का तात्पर्य है कि अपनी उपलब्धि पर संतोष करना ही सर्वोत्तम लाभ की स्थिति है और सज्जन तथा विद्वान जनों की संगति में रहना ही जीवन यापन करने की सर्वोत्तम स्थिति है। सद्विचार करना ही परम ज्ञान है और ध्यानावस्था ही परम सुख की अवस्था।

प्रिय जन, कबीर दास जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होई। कबीर दास जी मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, दुनिया का हर काम धीरे धीरे ही होता है, इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि माली चाहे कितने भी पानी से बगीचे को सींच ले, किंतु वसंत ऋतु आने पर ही फूल खिलते हैं।

श्रोताओं, कहा गया है कि लोभ मूलानि पापानि रसमूलानि व्याधयः इष्टमूलानि शोकानि तृणि त्वक्त्वा सुख भव। अभिप्राय यह है कि लोभ सब पापों का मूल है, रसना सब व्याधियों का मूल है, अधिक पाने की लालसा शोक का मूल है। इन तीनों को त्याग कर हे मानव तू सुखी बन।

भक्तगण, रहीम दास जी कहते हैं कि बिगरी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाते दूध को मथे ना माखन होय। अर्थात मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो उसे बनाना कठिन हो जाता है। जैसे यदि एक बार दूध फट जाए तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथकर माखन नहीं निकाला जा सकता है।

श्रोतागण, संसार में उपलब्ध सभी औषधियों में सबसे उत्तम औषधि है सदा प्रसन्न रहना। अच्छे काम करने से, दूसरों को सुख देने से व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। अतः अच्छे काम करे, दूसरों को सुख देवे और सदा प्रसन्न रहे। इस प्रकार आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन।

0: रूप को नई दिशा देने की तैयारी में है। देश की प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आज और कल पाई के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में ऑल माइटी समिट 2026 का आयोजन कर रहा है, जिसके लिए डिजिटल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख साझेदारों को वो एक ही मंच पर ला रही है। राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मॉरिशस टेलीकॉम अब केवल एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि देश के आर्थिक और वित्तीय परिवर्तन को गति देने वाली संस्था के रूप में सामने आ रही है। कल असाइजस अदालत में फैसला सुनाया गया। कोगलू हैंडलिंग कॉरपोरेशन के पूर्व कर्मचारी सरवन गोविंदन को मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 21 साल की जेल की सजा सुनाई गई। मामला जुलाई 2018 का है। एमएससी जान नामक जहाज से करीब 1 किलो हेरोइन बरामद हुआ, जिसकी लागत 15 मिलियन रुपए बताई गई। सरवन गोविंदन को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने मडागास्कर से आए एक कंटेनर जहाज पर रखे गए उस पैकेट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी। ये सजा जज लक्ष्मी प्रसाद जैप ने सुनाई। विदेशी समाचारों में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के पांचवें दिन भी ईरानी ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान अमेरिकी बलों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के बंदरगाहों पर लगाए गए ब्लॉकेज को तोड़ने की कोशिश कर रहे एक खाली एयर टैंकर को निष्क्रिय किया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। कुजालिन ओलिये में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के जनाब शेख हबीब निमत जो बायामीन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज दोपहर 2:15 बजे उनके बेटे के यहाँ कुजालिन ओलिये से उठाकर दफन सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए बेलहोस की मस्जिद और दफनाने के लिए सैमौते का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:15 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: सुहाना सफर,
1: सुहाना सफर,
0: सुहाना सफर के सभी हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ वेदिता और मैं आ गई हूँ आपके लिए लेकर आप ही का वही प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है सुहाना सफर, जहाँ पर खूबसूरत पुराने गाने हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो आज हमारा ये जो सफर है चलेगा आपके लिए और खूबसूरत पुराने गीतों का ये प्रोग्राम, इसमें हम आपका दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलिए भाई, हम पहुँच गए हैं आज गुरुवार 16 जुलाई की ओर भी। देखिए धीरे धीरे करके इस महीने में अभी ये 15 दिन तो निकल गए, अब बाकी जो दिन हैं वो जल्दी जल्दी ना बीत जाए। चलिए इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ गाने आपके साथ गुनगुनाते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार। 12:18 हुए हैं, मैं हूं विदिता और आपका साथ देने आई हूं आप ही के प्रोग्राम में, जो कि है सुहाना सफर, जहां पर सिर्फ पुराने गाने चलते हैं। तो पुराने गीतों के इस खूबसूरत सफर में हम सफर बनने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी टिकटॉक फ्रेंड्स हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले इनसे शुरुआत करेंगे, इनको हेलो बोलेंगे। हाई ट्रैवल, कैसे हो आप? एंड यहां पर आयशा हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और यहां पर अनिल राजन कुंजन हमारे दोस्त, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच और साथ देने के लिए। एंड और भी बहुत सारे लोग हैं, ये तो नंबर वन डिस्को भी करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार। कल्याणी हरी, दिनेश महतो साथ में, यहाँ लवना हमारे साथ है, उनकी मम्मी आशा फकीर के लिए गाना होगा जो रहते हैं पिछे काफ़े, और साथ में विकास बीगो के लिए जो रहते हैं फो जी सैक, भारतीय पोतुपिमो से साथ दे रही है, और वहीं पर फिया हमारे साथ हैं। एंड राम राम आपको भी। राजनील कैसे हो? साथ दे रहे हैं रोशन टेलर, कैसे हो भाई? कपड़े सिलाई हो रही है अभी, है ना, यही चल रहा होगा, और जब ऐसे पुराने गाने बैकग्राउंड में चलते हैं तो सिलाई का मजा ही कुछ और होता है, आई नो दैट। सूर्या हेलो, नाइस टू सी यू टू, चलो आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हो। और नेक्स्ट गाना होगा मेरे पति का बर्थडे है, एक गाना लगा देना। पति का नाम विशाल है, ओके, तो पूजा की तरफ से और बाल गोविंद फैमिली की ओर से हमारे साथ है वीर सिंह, नमस्ते जी, हेलो जी, रेखा जी, दशरथ शिपचंद कैसे हो, नमस्ते, आपको अभी स्वागत है। शफीना खान हमारे साथ हैं, एंड यही गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर नीरा, जो अपने दोस्तों के साथ अभी गंगा तालाब में हैं और वहां से हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो गाना है आ गए हैं लेकर आपके लिए। नमस्कार इंदिरा जी, कैसी हैं आप? सब ठीक, सब बढ़िया। जो लोग काम कर रहे हैं उनको कहेंगे बो कुआज, जो लोग लंच ले रहे हैं बोना पिची, और जो घर पे हमारा प्रोग्राम दे रहे हैं जैसे सेवी, हाय नमस्कार। याद रखिए हमारा टिकटॉक लाइव है, अगर आप चाहें तो वहां पर हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, और शाम के लिए भी इंदिरा जी जरूर।

0: सुहाना सफर
1: होगी रहूंगी हमेशा मैं तेरी। चलो भाई, हम तो आपके ही हैं और आपके दिल में रहते हैं। जगह हमने बहुत बड़ी बना ली है, झूठ मत बोलो। आपके दिल में जो सबसे बड़ी जगह है ना, वो हमारी हमने बना ली है, लेकिन प्यार से बनाया है ना। चलो, आपका स्वागत करती हूँ मैं वेदिता, आप ही के प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर। सुहाना सफर प्रोग्राम में अभी बहुत सारे दोस्त साथ में जुड़े हुए हैं। वे हैं अरविंद, साथ में है रोशनी, देविना, चिरंजीत, अमिताभ बरखान शर्मा, निज़ाम बहादुर का वेलकम करते हैं, यास्मीन आपका भी, कविता, दिव्यदयाल, नमस्ते रीता, दीप्ति, मीरा, शीना साउथ अफ्रीका से हमें सुन रही हैं, आपका हम वेलकम करते हैं, दिल से आपका स्वागत है एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फैमिली।

0: अनिष्ठा राम तो हल वीना अपने पति देव के लिए गाना मांग रही है, वहीं पे सिस्टर सरोजा का जन्मदिन है तो उनको हैप्पी बर्थडे वेलकम है सुविता सूर्या एंड आकाश चेतन मनसुख पूरी फैमिली के साथ। वी हैव गीता कालीचंद स्मिता अनिल जी कहते हैं कि मेरे सभी दोस्तों के लिए गाना हो जाए नेक्स्ट गाना सभी दोस्तों के नाम, और साथ में यहाँ पर ललिता हमारे साथ हैं आशना एंड हेलो जी कैसे हो आप लकी वुमन एंड उषा बानो हमारे साथ हैं संगीता सुखारी नमस्कार स्वागत है एंड थैंक यू सो मच आपका भी हम वेलकम करते हैं ज्योति जी और ये गाना होगा अशोक के लिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ अशोक जी थैंक यू सो मच और इनको गाना पसंद आ गया मुझे बहुत अच्छा लगा तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट गाना जो होगा वो नितिन के नाम डेडिकेट करते हैं एंड कहते हैं क्या आप कोई गाना हमारी पसंद के आप हमारी पसंद के गीतों में से कोई भी गाना पसंद कर लीजिए विंदर जी यू मोस्ट वेलकम हाय माधुरी माधुरी मेरी एक दो तीन चार करती हुई आती है ये चलो तो यहाँ पर गाना होगा आपके लिए एजे कैसे हो आप वेलकम स्वागत है आपका हालत सब बढ़िया सब ठीक खतीबा मंगर कैसे हो सलाम आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग किंग यूजर कैसे हो विम्मी एंड वी हैव कौन सा यहाँ पर कौतिक सुबीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सरोज का वेलकम करते हैं एंड थैंक यू कविता जी आई लव यू टू थैंक यू सो मच इंदिरा नौतन आपके लिए भी गाना विमी का बर्थडे है तो उनके लिए गाना होगा हाय वी दिस इज वेदिता एंड ज्योति चमन का हम करते हैं वेलकम हमारे प्रोग्राम में
1: RM3 Radio.
0: चलिए इसी के साथ विमला लक्ष्मण और केशनी कुमार के लिए भी गाना

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: अरमान किसका क्या है ये तो नहीं जानती, लेकिन कभी कभी दिल के अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। बहने मत दीजिए, अपने अरमानों को इधर भेजिए हमारे पास, हमारे प्रोग्राम में जो कि है रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर। चले देखते हैं कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस, अभी भी थोड़ी सी यू नो वॉइस जो है वो वापस नहीं आई है, लेकिन कम से कम मैं वापस आ गई, वो इम्पोर्टेंट है। चलो जी, यहाँ पर साकुन कहती हैं हेलो विदिता जो कैसी हो, मस्त दिख रही हो, थैंक यू जी। गाना आपकी बेटी दीक्षा के लिए जो कनाडा में है, और साथ में ये गाना जाएगा फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स। कैसे हो भाई हमारी लाविनिया। चलो सुबी स्वागत है आपका मनोज, सो लोबी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अर्जुन हमारे साथ हैं, ओ थैंक यू सो मच अर्जुन। एंड सुल्ताना खानदार, वी हैव यहाँ पर मोहिनी दीनू, करुणा दयाल उनके दोस्त, ओके ये ऑस्ट्रेलिया से है करुणा दयाल, वेलकम, स्वागत है आपका। चलो तो स्वागत आपका शर्लिन रायचन, वी हैव इंद्रा, वी हैव उत्तम। और आप लोग जब आप अपने मैसेज भेज रहे हो तो प्लीज़ अपना नाम भेजिएगा ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो आपका नाम ऐसे ऐसे करके ढूंढने में। गाना होगा सविता रुकैया के नाम एंड साधना, विमला देवी, विद्या लीलू सब हमारे साथ हैं। एंड कहते हैं गाने बड़े तगड़े हैं, आहा क्या बात है, ऐसे गाने होने चाहिए। तो ये गाना मैं अपनी जो नेक्स्ट गाना है ना अपनी माधुरी के लिए माधुरी के नाम चलाना चाहूँगी, जो एक दो तीन चार करके आती हैं, एक दो तीन एक दो तीन चार करके आती हैं। और गाना होगा आपके लिए मुकद्दर का सिकद्दर फिल्म से, ये गाना रेहा के नाम भी, और साथ में जाता है केविन नासा फैन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े हैं। विकास आयशा आपका भी वेलकम करते हैं, चलिए गाना सुनते हैं।
2: You're listening RM Free Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: भाई हमारे पास प्यार के अलावा तो और कुछ है नहीं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं और वो प्यार होता है ये हमारे खूबसूरत चुने हुए गाने जो आपके लिए सुहाना सफर प्रोग्राम में ले आते हैं चलिए यहां ज्योति शिरीन रामजोन रिशान चिता विरामा वी हैव लोटन बीबी रेशमा राम की सुन सभी साथ दे रही हैं अभी हेलो टू आरजे विराग जो इस समय हमें सुन रहे हैं स्वागत है आपका चलिए जी जीएनएच हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं जितने भी स्टाफ है पेशेंट्स है सभी डॉक्टर्स के लिए गाना होगा एंड वी हैव नाज हाय नाज कहती है क्या डांस करती हो हाँ हाँ थोड़ा बहुत डांस निकल जाता है ऐसे गीतों में अब वीना पेंचा का कशिश नीर सिंह सबका हम वेलकम करते हैं वी हैव लता देवीना विक्रम पेतोप साथ दे रहे हैं हेलो जी अजीजा हॉलैंड से साथ दे रही हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी एंड यहाँ पर किंग यूज़र कहते हैं अभी मैं काम पे हूँ एंड फुली इन्जॉइंग दिस प्रोग्राम थैंक यू सो मच मीन्स अ लॉट थैंक यू सो मच करुणा दोमा आपका स्वागत है आकाश एंड साथ में यहाँ पर गाना हम डेडिकेट करते हैं नेश आपके लिए एंड ऋषि महावीर नमस्ते वीर स्वागत हैं किरण खतूना आपका भी विक्षय गाना अभी हमने नोट कर लिया देखते हैं एजे कहते हैं कि ओके अनुजा अच्छा ये अनुजा हैं एक दूसरे हैं अनुजा और उन्होंने गाना मांगा है उनके हस्बैंड राजीव के लिए राजीव जी आप सुन रहे हो ना चलो हस्बैंड जी खुश हो जाएंगे गाना चलाऊंगी अभी थोड़ी देर में एंड यहाँ पर सविता के लिए गाना होगा वी हैव प्रियंका गोयल हेलो प्रियंका हाउ आर यू प्रियंका थैंक यू फॉर जॉइनिंग चलो गाना कौन सा होगा भाई गाना तो वही होगा जो थोड़ा मदहोश कर दे हम भी पुकार रहे हैं आपको और आप हमें ढूंढ रहे हैं कहीं

सुनीता जी नमस्कार स्वागत प्रोग्राम में आपका हेलो माय लवली प्रिंसेस कैसे हो आप हमारा ये सुहाना सफर टिकटॉक पे लाइव है अगर आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं आशनी बहुत सारा प्यार आपके लिए

सुहाना सफर सुहाना सफर. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक RM3 रेडियो मनोरंजन विदित आपके साथ. चलिए यहाँ पर धीरे धीरे करके ये वक्त भी भाग रहा है, इससे पहले कि वक्त और ज़्यादा दूर भागे इसको हम पकड़ के रखते हैं. और इसी के साथ हम गाना जो है डेडिकेट करेंगे इतने इन तमाम दोस्तों के लिए. सुनीता साथ में है, अंजू एंड अनीता जो कि ऑस्ट्रेलिया में है. पति सुरेन के लिए गाना होगा बबीता बुलाकी ने याद किया. संध्या जुरावन ने ज्वाइन किया, हेलो. एक और बबीता हमारे साथ जुड़ गई, अंदनी एंड पानी मलर जो कि है फ्रॉम सिंगापुर. हेलो सिंगापुर, हेलो. चलो तो इसी के साथ अभी हम गाना डेडिकेट करते हैं आप सभी के नाम. एंड वी हैव नेहा फ्रॉम रोजबेल. हे नेहा, कैसे हो? थैंक यू. गाना होगा यशविन के लिए, थैंक यू सो मच. सेंडिंग यू मच लव, बहुत सारा प्यार आपके लिए. पनीमलर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें. एंड मनीषा, जोई, राम, रघुबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम वेलकम करते हैं. अंजनी, प्लीज गेट वेल सून. एंड आई नो योर क्या बोलूँ मैं आपको, सुपर वुमन, या हम सुपर वुमन होते हैं ना. चलो आप जल्दी से ठीक हो जाओ. देविना ननकू आपका स्वागत है, आशनी आपका भी, श्यामा, वरुणा, रामधारी. एंड वी हैव

to Sandy Savita Rukaya जो कि लंदन में हमें सुन रही हैं वो मॉरिशस के और मॉरिशस के सभी लिसनर्स को हेलो बोला है विवेक पवन रमेश पिंदा जो इस समय रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हैं उनके लिए अभी हेलो टू तनुश्री सादरी हैं रागिनी राधा शिपचन एंड फैमिली के लिए रजिया खान और साथ में यहां पर हॉलैंड से हमारे साथ हैं गोल्ड फिश असली नाम नहीं लिखते वो बॉयजोन भी लिखते हैं वो उनका असली नाम नहीं होता संजय नवीन संगीत प्रसाद ये भी हैं फ्रॉम सिटी लोटोका फिजी तो फिजी आइलैंड्स में काफी हमारे फ्रेंड्स हैं साथ दे रहे हैं विमी कलर थे आपके लिए भी गाना होगा

मंजिल थी, कहीं जाना था कहीं, लेकिन आप तो हमारे साथ जुड़ गए हैं रेडियो मनोरंजन पर। वरुण रामधानी, अनीशा तंगा बहादुर और साथ में विशाल लोचन का स्वागत करते हैं। विवेक पवन कहते हैं 80s का अगर हो सके तो कोई गाना हमारे लिए जरूर चलाएगा, जरूर। हमारे पास बहुत सारे गाने हैं। सुनीता मंगर का स्वागत है, अंशोति देवीना आपका भी, और उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंदिनी को गाने पसंद आ रहे हैं, सिलाई कर रही हैं वहीं पे। लैला मदारन कहते हैं वाह गाने बड़े कमाल के हैं। राधा सिपचन आपका भी, एंकर सी हमारे साथ हैं। सलाम आपने भेजा है ठंडी ठंडी हाई फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो चलिए यहाँ पर हम आपके लिए भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार। अगले गाने के साथ आगे बढ़ते हैं और ये प्यारा सा गाना लेके जाएगा समाचारों की ओर।

अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना स्पेन से होगा। अतिरिक्त समय में मिली इस जीत के साथ लियोनेल मेसी ने अपने करियर के तीसरे विश्व कप फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मॉरिशस सेलकम के ऑल माइटी समिट का आज सुबह पाई स्थित स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आधिकारिक शुभारंभ हुआ। डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित इस सम्मेलन में 1,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये आयोजन वर्ष 2026-2027 के बजट के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें प्रौद्योगिकी को मॉरिशस के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने घोषणा की कि मॉरिशस अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी कार्यक्रम से जुड़ेगा। ये रणनीतिक समुद्र तल फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना अमेरिका, भारत और साझेदार देशों के बीच डिजिटल संपर्क को और मजबूत करेगी।

0: लगभग 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की इस परियोजना की घोषणा गूगल ने इसी वर्ष फरवरी में भारत में आयोजित एआई समिट के दौरान की थी। आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 की तैयारियों को आगे बढ़ाना, ये मॉरिशस दौरे पर आई अमरीका की उप विदेश मंत्री सारा ट्राउटमैन की यात्रा के प्रमुख उद्देश्य हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान ने पड़ोसी गल्फ देशों में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर हमले किए हैं, जबकि अमरीका ने रात भर ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले जारी रखे। तेहरान का कहना है कि उसने जॉर्डन, क्वेत और बहरीन सहित क्षेत्र के कई लक्ष्यों को निशाना बनाया है। युद्ध विराम के प्रारंभिक समझौते के बावजूद दोनों देशों के बीच छठे दिन भी तनाव बना हुआ है। उधर अमरीकी सेना ने दावा किया है कि उसने लगभग 6 घंटे तक कई स्थानों पर हमले कर स्ट्रेट होर्मुज में समुद्री मार्गों को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि वह वार्ता की मेज पर वापस नहीं लौटता तो उसे और कड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और उधर अल्जीरिया की राजधानी अल्जीर में एक पशुपालक के देखभाल केंद्र में लगी भीषण आग में 11 लोगों की मौत हो गई है। देश के नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार इस हादसे में 19 अन्य लोग घायल हुए हैं। आज सुबह स्थानीय समय अनुसार दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे। अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आग लगने के दौरान विशेष आवश्यकता वाले 5 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और उनकी देखभाल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही सुन पाएंगे शुभ समाचार। सावानरो नोवेल फ्रांस में 53 साल के 53 years old के श्री जामुन सिंह बासुदेल सिंह, जिन्हें धर्म के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजिन लेन नोवेल फ्रांस की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio, Man.

0: सुहाना सफर।
1: बहुत ही सूदिंग गाना था और ऐसी मधुरता इस आवाज में कि बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि हमारी लाइफ में कोई भी टेंशन कोई भी प्रॉब्लम है ना। कुछ गाने ऐसे होते हैं मैजिक का काम करते हैं, वैसे ही जैसे हमारा प्रोग्राम मैजिक का काम करता है क्योंकि यहाँ पर हर मूड का गाना होता है। चलिए गाना किसके नाम डेडिकेट करें, इतने सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। वरुण रामधारी, अनीशा, नंद, तंका बहादुर, अरमान, मिस्टर नुरैदीन, माया देवी, विनय बुधू, तरुण राम एंड प्रीति, विलासा भारती के लिए जो अभी CW में काम करे, जितने भी स्टाफ सबके लिए गाना मांगा है। उमेश 18th को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, उनको हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। साथ में यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं शैली शर्मा, साथ में हैं सबीना की तरफ से सोनाली, शालिनी और श्रीना के लिए जो गुडलैंड से साथ दे रही हैं, याशीर कश्मीरी हमारे साथ, नील, कविता, अनु, अविनाश, सोनू, अमृता की तरफ से महेन के लिए गाना, हेलो जिनमी कैसे हो, वनकम, अंजी और मुगम, एंड हमारे साथ हैं प्रिया, स्वीटी, पूनम गोबी, डाट स्कूल, रानी जोशी, रुकैया गजवी से साथ दे रही हैं, शेफ अविनाश लच्छन हमारे साथ जुड़े हैं और यही गाना होगा। ओके, विशेज हैं मलिका के लिए, वेरी हैप्पी बर्थडे रुकैया की तरफ से। और यहाँ पर रेशमा हमारे साथ, साधना अलगू, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारे गीतों के लिस्ट में शिखा शामिल हो गई हैं। नमस्कार पूनम, कैसे हो आप? ओके, तो यहाँ हम गाना डेडिकेट करते हैं आप सभी दोस्तों के नाम, बेटी जो इस समय हमें सुन रही हैं उनके लिए। सोनम कहती हैं लिसनिंग टू यू फ्रॉम लंदन। ओके जी, नेक्स्ट गाना आपके नाम भी डेडिकेट करेंगे एंड

एंड साथ में ये गाना होगा वेदना जो काची मिलती से साथ दे रही हैं एंड तरुण के लिए गाना होगा मैं गाना मेरे पास गाना था शायद मैं उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी और साथ ही में यही गाना हम विवियन के नाम डेडिकेट करेंगे एंड वी आल्सो हैव लीना थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस वी हैव तीशा साथ दे रही हमारे और आपके लिए जो हमारा गाना है अगला वाला वो हम डेडिकेट करेंगे एंड टिकटॉक के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं दीप्ति ने कहा है उन सब के लिए गाना होगा वेदना फ्रॉम कैट्रबोन एंड यही गाना नीलमणि के नाम हमारी प्यारी सी नीलू एंड वी हैव निशा भवानी जो साथ दे रही है निशा भवानी फ्रॉम सुरीनाम हेलो गाइस वेलकम वेलकम रोशनी भारती और प्रीति के लिए गाना डेडिकेट करते हैं थैंक यू एंड चलिए इसी के साथ इस प्यारे से मौसम में कुछ और प्यारे प्यारे गाने आपके लिए

मौसम तो सच में इतना खूबसूरत इतना हसीन हम क्या बताएं आपको। केविन रीना शरदा लखनौत भिंता तीशा उनके भाई के लिए गाना मांग रही है। वहीं पे रोशनी कहती है हितिशा का बर्थडे है तो उनको हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो उनको हैप्पी बर्थडे कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू शांता कुमारी गोपाल, ये है माया की तरफ से। एंड शर्मिला दिन आराम साथ में है। प्रेमा रोहित प्रसाद पद्मिनी एंड काव्या के लिए पेश है हमारा ये खूबसूरत सा खुदरत फिल्म का गाना। भाई प्यार को तो हम तोल नहीं सकते ना, प्यार प्यार होता है और किसको कितना प्यार महसूस होता है। आप किसी को कितना भी प्यार कर ले, सामने वाला जब तक वो प्यार महसूस नहीं करता ना, उसको पता होना चाहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। कहने के तो कोई भी कह दे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूं, बस बोल दो प्लेन की टिकट खरीद दो कहीं घूमने जाना है सारा प्यार पता नहीं कहाँ फुर्र हो जाता है।

0: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, लेकिन चलो प्यार के बारे में अगर हम पूछें हमारे लिसनर्स से तो वो तो बेधड़क बताते भाई कितना प्यार करते हैं।
1: सुहाना सफर।
0: जी हम बात कर रहे हैं प्यार की और यहाँ पर प्यार से कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गाना होगा राजन, वर्षा मोहन, सरोज, तारा नरसिंह, ए बी दीवागल, अश्विन, प्रेमिका किमकरण, वाकवा से हैं राजकुमारी के लिए गाना मांग रहे हैं जो रहते हैं कौंदे मास्क, एंड दीपा उनके बेटे निशाल, उनके पति, उनकी माँ और सजदा फैमिली के लिए गाना डेडिकेट करना चाहती है। वहीं पर बबीता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एंड कहते हैं कि भाई आपके जो गाने हैं सेलेक्टेड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू। और यहाँ पर तो इतना आप लोगों ने मेरे लिए प्यार भेजा है ना, किसी ने लिखा स्काई इज़ द लिमिट, किसी ने कहा अनलिमिटेड, किसी ने कहा 100%, किसी ने कहा 1% लाइक करते हैं, 99% प्यार करते हैं, और किसी ने तो इतने सारे जीरोज़ लगाए हैं इस एक के सामने कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये 10 मिलियन है, बिलियन है, कितना है, लेकिन पता है इसमें और ज़ीरो आप ऐड करते रहोगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। चलिए इसी के साथ हमारा गाना होगा आपके लिए एंड गाने के लिस्ट में यहाँ पर हम जानते हैं, कहते हैं कि हाँ मैंने पूछा था कौन कितना प्यार करता है तो किसी ने कहा है बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, और किसी ने लिखा है कि सिर्फ दिल जानता है कि कितना प्यार है, लेकिन सामने वाला वो उसको फील होना चाहिए। थैंक यू यहाँ पर हमारे गानों को पसंद करने के लिए। और परी आ गई है, थोड़ी देर से आई है, कहती है बीमार हो गई हूँ लेकिन आप बिल्कुल फटाफट ठीक हो जाएंगे, घबराएगा नहीं क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारे साथ हमारे दोस्त जब होते हैं तो कुछ ऐसे मूड में होते हैं।

सुहाना सफर, सुहाना सफर, सुहाना सफर और सुहाना सफर में अभी यश और गिरीश के लिए नेक्स्ट गाना शिवम श्वेता आरती केडीसी वी हैव सन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हाय एंड ऑल द कंगारूज जो भी कूद कूद के हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े होंगे उनके लिए जया के लिए तुकोबार राव जी के लिए रॉटेड मंच के लिए एंड साथ में ये गाना जाएगा पूजा के लिए पूजा कहती है आई एम इन क्वेबेक राइट नाउ यहाँ पर मॉर्निंग में 5:30 AM हुआ है लेकिन अभी अभी वो जागी है और अभी अभी उन्होंने हमको देख लिया यहाँ पर प्रोग्राम में लाइव और कहती इट्स सो नाइस तो मेरे लिए मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट है ये पूजा थैंक यू सो मच सेंडिंग यू मच लव टेक केयर गॉड ब्लेस यू और उम्मीद करती हूँ कि ये जो स्माइल है ये स्माइल बनी रहेगी पूरे दिन पूरे हफ्ते और यू विल कम बैक अगेन टू जॉइन इन विद इन माई शो कल्याणी हरी जी थैंक यू सो मच यहाँ पर गाना होगा बट वी लव यू द मोस्ट ओ थैंक यू एंड कहते हैं यहाँ रागिनी जी यू मेड माई डियर आज थोड़ा उदास थी तो गाने ने जादू का काम किया है ना मुझे पता है तो चलिए ऑस्ट्रेलिया वालों आपका भी हम स्वागत करते हैं एंड ओ माई गॉड रागिनी जी थैंक यू जी हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए गाना होगा लक्ष्मी आपके लिए भी साथ दे रही हैं छाया छाया कैसी हो छाया एंड ये गाना होगा आपके लिए जो साथ दे रहे हमारे रिमी सिस्टर रीना के लिए जिद्दा गुचिया से हैं थैंक यू

0: एंड साथ में यहाँ पर विजय कुमार सुखनाम से साथ दे रही हैं और यश हमारे साथ है. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. बबीता जी मैंने नोट कर लिया, जान गई आप क्या कहना चाहती है. आपके लिए विम एक गाना आपके लिए ज़रूर डेडिकेट करेंगे एंड कृता महादेव के लिए उनके बॉयफ्रेंड अजागैन की तरफ से अरमान और साथ में ये गाना जाएगा नीलिमा के लिए भी, लीना के लिए भी, बेबो के लिए एंड वी ऑल्सो हैव सुनीता ऋषि सितो ओके एंड जेनिता के लिए गाना हस्बैंड संदीप बेटे शिवान के नाम.
1: RM3 रेडियो

दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या करना, आप कब किसी पे आता है क्या पता। यश गिरीश के लिए तो ज़रूर गाना होगा। बेबो हमारे साथ रीना सिबनोत उनके हस्बैंड के लिए गाना मांग रही हैं, और वहीं पे चलिए जी गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम रिमी के लिए, उनकी सिस्टर शिमला, और साथ में यही गाना हम बेगुनाथ फैमिली मिस्टर आत्मा आपके भाई से

आस्तेपुल से और गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे चुनील बाबू के लिए और ये परी की तरफ से है स्पेशली चुनील बाबू के नाम और माया और राजन साथ दे रहे हैं रेखा नंदू और अश्विन रामबन कहते हैं कि ओके थैंक यू फॉर द लव थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स थैंक यू फॉर द गुड विशेस बहुत बहुत थैंक यू आपको

ये प्यारा सा गीत उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा एंड जितने भी लोग इस समय साथ दे रहे हैं एंड आप लोग हमेशा कहते हैं गाना मेरे पति के नाम चला दो, ना अपना नाम लिखते हो ना पति का नाम लिखते हो, अब मैं किसका गाना किसके पति के नाम लिखूँ समझ में नहीं आता। चलो भाई काठबोन से हैं ऋषि दोमन, आज 40 ईयर्स के हुए हैं, गंगा तालाब में हैं और सभी किश्तो फैमिली जो हैं साथ दे रहे हैं, तो उन सब के लिए गाना होगा। अनिता पैतोब थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और नेक्स्ट गाना हम खास आपके नाम डेडिकेट करते हैं।

वही किसी ने कहा विदिता जी आप अपने लिए कोई गाना चला लीजिएगा। मैंने सोचा ठीक है अगला गाना खुद के लिए चला लेती हूँ। सलमाना चलम आपका स्वागत करती हूँ मैं, एंड यहाँ पर हमारे साथ जितने भी दोस्त हैं उनका स्वागत है। हाय प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और काफ़ी गीतों की फरमाइश आई है, एंड शर्मिला, केविन, सविता, अमिता, देवी, दत्त, सूरज सभी हैं आयरलैंड में साथ दे रहे हैं। एंड यहीं पे हम गाना जो है डेडिकेट करते हैं आप सभी हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। हमारे साथ हैं अश्विन रामबन, संस्कृत प्रेमचंद जमन जो कि यूके से साथ दे रहे हैं। यहाँ पर सभी कलीग्स के लिए गाना होगा जो हेल्थ सर्वियंस ऑफिसेज हैं, रिव्या जहाँपा हेल्थ ऑफिस में काम करें उनको बॉन कुराज, अनिल, नवीन कुमार, शालिनी और रोशन के नाम पेश है कार्यक्रम का हमारा ये प्यारा।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: प्रोग्राम में सुहाना सफर में अब जो नाम शामिल करेंगे वो हैं विमला पादू उनकी बेटी कल्विना के लिए जो रहती हैं ब्रितानिया और साथ में ये गाना जाएगा फॉर लवना रेखा नंदू और इंदिरा रामदुनिया सिमी सोमदत्त ऐश विक्की एंड मीरा साथ में यहाँ पर नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाना जाएगा इंदिरा जी की तरफ से बेटी चेष्टा और आंसले के लिए उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है आज रेखा नंदू स्वागत है आपका प्रोग्राम में एंड कमेराज सिंह आपके लिए भी थैंक यू आप है फ्रॉम ट्रिनिडाड सो गाना आपके नाम हाय क्वीन कैसे हो

चलिए तो यहाँ पर हमारे साथ सतीता मौलालबे से जुड़ी हुई हैं एंड मीरा कहती हैं कि भाई पुराने ज़माने याद आ गए, पुराने दिन याद आ गए. ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं कि पूरी फैमिली के लिए नेक्स्ट गाना होगा विश्वनाथ परियाग का स्वागत है.

तरह से मेरी जिंदगी में शामिल हैं और आप भी हमारे शो में इस तरह से शामिल होते हो कि मेरा जाने का मन नहीं करता लेकिन मुझे जाना चाहिए. इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय एक्चुअली, लेकिन मैं आऊँगी बहुत जल्द, यानी कि अब मंडे को हमारी आपकी मुलाकात होगी. चांदराज, थैंक यू. फिजी से आप साथ दे रहे हैं. हाँ बिल्कुल, हमारे बिल्कुल सेम सेम होते हैं, कम से नाम भी हमारा ऑलमोस्ट सेम सेम होता है. तो चलिए चलते चलते यहाँ पर हम जोसेफ बोयल, तनवीर खालिद, कवि किशन, नदीम रैना जो कि भी रो रही है, बच्चा मत रो, नाजिया गोवर्धन, देवी, शालू, प्रीति, मालिनी, चांदराज, पूजा, बबीता, बंधु, शालू, इन सब के लिए गाना. हेलो जी, गाना कौन सा होगा? वैसे इस गाने की फरमाइश आई है और सभी लोगों ने यहाँ पर वोट किया उस गाने के लिए ऑन हमारा टिकटॉक. तो ऐसा करते हैं कि हम ये वाला गाना सभी हमारे दोस्तों के नाम डेडिकेट करते हैं जो फिजी में हैं, साउथ अफ्रीका में हैं, यूके में हैं, फ्रांस में हैं. मिस्टर नूरुद्दीन हमें सुन रहे हैं, सो थैंक यू. आई एम गोना कैच यू वेरी सून. टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय एंड थैंक यू आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके साथ के लिए. थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील लाइक वी आर फैमिली.

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम समाचार शुरू करते हैं देश में मौजूदा पेट्रोल और डीजल की मौजूदा भंडारण की मात्रा के साथ देश में पेट्रोल और डीजल का मौजूदा भंडार अगले 18 दिनों के लिए पर्याप्त है। इनकी नई खेप 20 जुलाई को पहुंचने की उम्मीद है। वहीं जेट A1 ईंधन का भंडार 20 दिनों के लिए उपलब्ध मात्रा में है। LPG का मौजूदा स्टॉक 13 दिनों के लिए उपलब्ध है और इसकी नई खेप 17 जुलाई यानी कल पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा हैवी फ्यूल ऑयल का भंडार 45 दिनों के लिए देश में उपलब्ध मात्रा में है, जबकि इसकी अगली खेप जुलाई के अंत तक देश पहुंचने की उम्मीद है। मॉरिशस टेलीकॉम के ऑल माइटी समिट का आज सुबह पाई स्थित स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आधिकारिक शुभारंभ हुआ। डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये आयोजन वर्ष 2026-2027 के बजट के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसमें प्रौद्योगिकी को मॉरिशस के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित

0: करते हुए प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने घोषणा की कि मॉरिशस अमरीका इंडिया कनेक्ट सबसी कार्यक्रम से जुड़ेगा। यह रणनीतिक समुद्र तल फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना अमरीका, भारत और साझेदार देशों के बीच डिजिटल संपर्क को और मजबूत करेगी। लगभग 15 बिलियन अमरीकी डॉलर की इस परियोजना की घोषणा गूगल ने इसी वर्ष फरवरी में भारत में आयोजित AI समिट के दौरान की थी। आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा US अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 की तैयारियों को आगे बढ़ाना, ये मॉरिशस दौरे पर आई अमरीका की उप विदेश मंत्री सारा ट्रॉटमैन की यात्रा के प्रमुख उद्देश्य हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्जीरिया की राजधानी अल्जीज में एक पशुपालक देखभाल केंद्र में लगी भीषण आग में 11 लोगों की मौत हो गई है। देश के नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार इस हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं। आज सुबह स्थानीय समयानुसार दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे। अधिकारियों ने मृतकों और घायलों की आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आग लगने के दौरान विशेष आवश्यकता वाले 5 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और उनकी देखभाल की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रहे सुन पाएंगे शोक समाचार। डॉक्टर मनीलाल रोड मोसलमा सेंट अंद्रे में 14 साल के 14 years old के कुमार चैतन अश्मित कुमार गंगा जिन्हें अश्मित के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 उनके पिता अजय गंगा के घर मोसलमा सेंट अंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन ट्विटर 3:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
5: स्वागत करते हैं आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में, नाट्य कला कार्यक्रम। और आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है, खास तौर पे हमारे जो वयस्क लोग हैं, जिन लोगों के पास बहुत सारे अनुभव हैं नाटक के क्षेत्र में, और खास तौर पे जो रिसर्च करने वाले हैं नाटक की दुनिया में। क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में आए हुए एक ऐसे मेहमान जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है नाटक की दुनिया में, ना सिर्फ नाटक बल्कि फिल्मों में भी, ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया है अपनी कला के जरिए। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हुए है राजकरण बामा जी। राजकरण जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते।
6: नमस्ते सभी को, मेरा सप्रेम नमस्कार।
5: अच्छा, शुरू हम करते हैं, वैसे कई लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो पर, कई लोग देखने वाले हैं अभी टीवी पर, तो आपकी दाढ़ी के हिसाब से आपकी मतलब काफी उम्र हो गई होगी नाटक के क्षेत्र में।
6: वैसे तो पूरी करियर जो है मेरी करियर, मेरा जीवन बस नाटक ही में बीता है। उम्र तो क्या कहूँ मैं, आई एम राइडिंग 80, बस इतना ही।
5: 80 मतलब 80 साल के आप हो चुके हैं?
6: नहीं, होने वाला हूँ।
5: होने वाले हैं, बस दाढ़ी आप निकाल लीजिए, नहीं दिखते हैं आप 80 साल।
6: नहीं, क्या है कि कभी कभी कुछ किरदार के लिए जरूरत पड़ी है। अब देखिए, अभी हाल में आफ्टर पार्टी फिल्म जो जिसकी शूटिंग पार्टी यहाँ पर हुई थी, उसमें मुझे किसी ग्रैंडपा सिख
5: अच्छा
6: का ये किरदार निभाना था तो ये जरूरी था,
5: जरूर था।
6: अच्छा बाद में निकालना पड़ेगा
5: वैसे
6: तो, कोई
5: तो नहीं रहता है ये। राजकरण बाबा जी के बारे में क्या कहें, आपने बहुत सारे नाटकों में भाग लिया, शुरुआत में आपने स्वर्गीय अभिमन्यु अनंत जी के

0: साथ काम किया और बाद में जाके आपका एडमिशन हुआ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बस एक रिज्यूमे के तौर पर मैं आपके बारे में कह रहा हूँ। फिर उसके बाद आपका योगदान हमेशा रहा है नाटक के क्षेत्र में और आपने लुम्बास कान किया है मॉरिशस में। अभी आप कह रहे हैं कि अभी हाल में फ्रेश आप आफ्टर पॉती फिल्म करके आए हैं, फिल्म जिसकी शूटिंग हुई थी मॉरिशस में और अन्य देश में। तो राजकरण जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कब से किस तरह से कैसे आप नाटक में प्रवेश किए?
1: देखिए, मैं एक छोटा सा गांव से आया हूँ, वहाँ पर हमारा एक युवक संस्था थी। उस समय में युवा क्रीड़ा मंत्रालय के यूथ क्लब्स हुए करते थे, तो उस यूथ क्लब में हम ड्रामा करते थे, तभी से ये रुचि आ गई।
0: ये इंडिपेंडेंस से पहले, 1968 से पहले?
1: हाँ, पहले ना। और अब क्या हुआ कि ये जो है लत जो लगी छूटी नहीं, बस होते रहा, वैसे छोटे मोटे नाटक, नौटंकी नाटक में भाग लेते रहा। और मैं स्वतंत्रता की बात कहता हूँ, 1968 में मैं ट्रेनिंग से, मतलब कि टीचर्स ट्रेनिंग से निकला और हम कुछ दोस्त मिलकर सोचा कि चलो हिस्ट्री बनाएं, लेट अस क्रिएट हिस्ट्री। तो मॉरिशस के वो हिंदी नाटक की हिस्ट्री अगर शुरू होना है तो वो होता है फुल लेंथ, पहला फुल लेंथ प्ले ध्रुव स्वामिनी से, जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी, जिसे हमने पोर्टली म्यूनिसिपल थिएटर में मंचित किए, रिपीट शोज भी हुए, फुल हाउस फुल। अच्छा, उसके बाद देखो हिंदी ड्रामा में 1971 में पहला हिंदी नाटक प्रतियोगिता एक एनजीओ द्वारा हुआ, पोर्टिस म्यूनिसिपल थिएटर में, उसमें मेरा ग्रुप भी भाग लिया था। वो सुंदर बकोरी जी के हिंदी परिषद के प्रधान
0: उसके
1: तत्वावधान में वो हुआ था। अच्छा, उसके बाद में आए भारत से मोहन महर्षि जी दंपति, अंजरा महर्षि, तो उनके योगदान से हिंदी नाटक जो कहते हैं उसका इतिहास अब शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले तो एक यूनिट, आगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्ट नहीं था ना, आगे तो यूथ एंड स्पोर्ट्स, उसमें उन्होंने एक यूनिट क्रिएट किया, एक यूनिट की स्थापना की, ड्रामा यूनिट। और उन्होंने पहले से 1951 से ये यूथ ड्रामा फेस्टिवल चलते आया है, वो तो सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच में। तो इनके एफर्ट से हिंदी ड्रामा फेस्टिवल अब एक एनुअल फीचर बन गया। उसके बाद में कुछ वैसे इवोल्यूशन तो हुआ, फिर अभी तक वो हिंदी ड्रामा फेस्टिवल सरकारी तौर से, मतलब कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, वो चलता है। लेकिन वो जो ड्रामा फेस्टिवल्स जो स्टेट लेवल पे होता है वो सिर्फ एकांकी सीमित है।
0: अच्छा,
1: वन एक्ट। अब नाटक तो वन एक्ट में सीमित नहीं हो सकता है, इसीलिए बहुत वैसे सारे एनजीओज हुए जो वन एक्ट से निकलकर फुल लेंथ प्लेज शुरू किए। अच्छा, एक तो पहला सिग्नल हुआ 1975 में, मोहन महर्षि जी ने अंधायुग नाटक, उसका मंचन किया और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में लगा था। उसमें हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री सचिव सागर राम गुलाम जी प्रेसिडेंट थे, प्रेसाइड करते थे, और उसके संदर्भ में हमने ये अंधायुग नाटक पेश किए थे मॉरिशस से
0: एक टोली गई।
1: हाँ,
0: और मोहन महर्षि के निर्देशन में
1: पूरी कास्ट मॉरिशन था। अच्छा,

0: अब मंत्रालय से बाहर एक बहुत बड़ा महत्व योगदान एमजीआई का है. एमजीआई और उनके साथ जुड़े हुए अभिमन्यु अनंत जी.
1: अच्छा,
0: अभिमन्यु अनंत जी हिंदी नाटक को जो दिया है वो अपने आप में एक खजाना है. उनके प्रसिद्ध नाटक के बारे में मैं कहता हूँ, भरत संभाय ले लीजिए, भारत के टूर किया था वो. उसके बाद में राष्ट्रवाद नौशेरा का यात्री, महात्मा गांधी के आगमन का. उसके बाद में उर्मिला जो रामायण पर निर्धारित है, जो वो है ना
1: लक्ष्मण
0: की पत्नी है
1: उर्मिला.
0: उसके बाद में उन्होंने मीमांसा दिया. मीमांसा एक कलेक्शन है, 15 कविताओं का एक समूह, ये नाटक के रूप दिया था उन्होंने. और वो सेकंड वर्ल्ड हिंदी कन्वेंशन में खेला गया था और डायरेक्ट उसका प्रशासन कि उसका प्रोजेक्शन हुआ था डायरेक्ट दूरदर्शन पे.
1: क्या बात,
0: एमजीआई से. ये मतलब कि इतने महत्वपूर्ण बातें हैं. और उन्होंने रवि गान दिया, क्या कहते हैं उनको, रविंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर के उसके जीवन पर. और एक उन्होंने एक और बहुत बड़ा नाटक लिखा, उन्होंने दिया वो है राष्ट्रवाणी. राष्ट्रवाणी मतलब कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पर निर्धारित उसकी वाणी. ये मतलब कि मंत्रालय से अलग. और इंडियन ओशन फेस्टिवल लगा था, इंटरनेशनल ओशन फेस्टिवल, उसके संदर्भ में मुकाफ्राक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक नाटक, हिंदी नाटक स्पॉन्सर किए थे, कला इंद्रधनुष. आप समझ रहे हो ना कि बाहर मतलब कि अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के अलावा, वन एक्ट के अलावा कितने फुल लेंथ होते थे.
1: मतलब उस समय नाटक की जो लहर, उसका जो वेव था, वो पूरे मॉरिशस में फैल गया.
0: पूरे मॉरिशस में. अब इमेजिन कीजिए 1975 में मंत्रालय की हिंदी नाटक प्रतियोगिता में 100 पार्टिसिपेंट्स थे, 100 ग्रुप्स पूरे मॉरिशस से. तो सेंसिटाइजेशन जो था ड्रामा के बारे में वो मोहन महर्षि ने कर दिया, उन्होंने कर दिया.
1: और उस समय जब उसका फाइनल हो रहा था तो एमबीसी की ओर से लाइव सीधा प्रसारण
0: हुआ था.
1: जयकरण जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा. जब आपकी शुरुआत हुई थी, हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले, तो और मोहन महर्षि के आने से पहले, अभी कुछ महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी इसी मंच पर, इसी कार्यक्रम में, राजेंद्र सदा सिंह द्वारा गुरुजी, तो उन्होंने थोड़े से इतिहास के बारे में कहा, खासतौर पर ट्रियोले में किस तरह से नाटक का प्रादुर्भाव, नाटक की शुरुआत वहां पर हुई. आपसे हम जानना चाहेंगे, आपकी याददाश्त में, आपके योगदान में, हम थोड़ा से खजाना को खोल करके आपके देखना चाहेंगे कि नाटक की शुरुआत किस तरह से हुई जहां पे आप रहते थे, और उस समय नाटक की कहानियां कैसी थी.
0: नहीं, जहां मैं रहता था तो मैंने कह दिया आपको ना कि वो यूथ क्लब्स उसमें हम ड्रामा करते थे, नाटक करते थे. अब वहां से स्कूल में, जब स्कूल में गया, मैं बुजवारी कॉलेज में एचएससी में था, एचएससी करता, तो वहाँ पर हमने मतलब कि काफ़ी ये एक्टिविटीज़, ये ड्रामा एक्टिविटीज़ होते थे, तो उसमें भी कभी कभी भाग लिया करता था.
1: और उस समय के नाटक की कहानियाँ कैसी थी.
0: देखो, एक तो जो अंग्रेजी और फ्रेंच ड्रामा फेस्टिवल 1951 से इंग्लिश और फ्रेंच ड्रामा फेस्टिवल होते आए हैं, तो उनका जो प्रभाव था बहुत बहुत

0: महत्वपूर्ण था। इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने हिंदी को रिवालोराइज किया और इसको इसको इसको महत्व दिया। तब से हिंदी नाटक और हिंदी भाषा जो है इसका स्तर, इसका स्थान जो है वो मिला, समझ रहे हो ना। अब मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ पर आए थे ना अभिमन्यु अनर्जी के वो योगदान के, और भी है महेश राम जियावन जी ने हरिवदन नाटक का निर्माण किया था, उसका निर्देशन किया था, और राजन सदा सिंह जी है जो अभी हाल में रामायण नाटक
1: रामलीला उन्होंने की,
0: रामलीला की है, और वेरी न्यू फ्यूचर अभी हाल में वो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट जो है वहाँ पर उन्होंने हिंदी दिवस डे के लिए भगवद गीता पर नाटक पेश किए। मतलब कि अब मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने आप को प्रमोट थोड़े ही करूंगा, मैंने वो डायरेक्ट किया था।
1: नहीं, आपने वैसे जयकरण जी आपके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि नाटक का जो रूप है मॉरिशस में वो फला फूला रूप है, मतलब एक पेड़ बन गया है और उस पेड़ में फल लदे हुए हैं।
0: हाँ, ये तो सही है,
1: कह सकते हैं। तो आपका जैसे आपने कहा कि आपकी रुचि ग्रुप के साथ हुई, फिर जाकर आपने नाटक में भाग लिया थोड़ा सा, फिर उस समय जब मोहर महर्षि आए आपने उसके साथ भी भाग लिया, और उस समय जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए सिलेक्ट हुए वहाँ पे गए, वहाँ का आपका अनुभव।
0: देखो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना एक ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है। आप जाओ वहाँ पर, देखो मैं छोटा सा मॉरिशस से गया, 5-7 साल मोहन महर्षि जी के साथ अंडरस्टडी थे, उनके साथ सीखा बहुत कुछ, लेकिन जब वहाँ गया तो जीरो, क्योंकि स्कूल ट्रेनिंग और वर्कशॉप ट्रेनिंग में बहुत अंतर होता है,
1: जमीन आसमान का
0: फर्क है। अब वहाँ से मैंने शिक्षा पाई, अपने डिप्लोमा कोर्स किया, ग्रेजुएशन किया, और जब वापस आया तो क्या कहूँ, तकरीबन 60 फुल लेंथ प्लेज को मैंने डायरेक्ट किया और अन्य भाषाओं में,
1: जैसे क्रियोल, फ्रेंच, अंग्रेजी,
0: इंग्लिश, और नहीं, ये तो मैं यूं ही कह रहा हूँ, और बाकी जितने बड़े बड़े प्रोडक्शंस हुए हैं
1: उसके साथ भी आप जुड़े।
0: अब अभिमन्यु मरानत के लीजिए, उनके साथ मैं उनके हर प्रोडक्शन में था, और वो भी टेक्निकल असिस्टेंस के रूप में, डायरेक्शन के रूप में, पर क्रेडिट नहीं लेता हूँ क्योंकि
1: गुरु जी
0: हैं, उनके साथ मैं उनके अंडर ये सब मतलब सहयोग दिया। अब मैं कहूँ, क्या कहूँ आपसे, अब इंग्लिश, फ्रेंच, ये सब तो है। अब क्रियोल में जो है एक समय आया था जब क्रियोल का बोलबाला बहुत हुआ करता था। देव विरासोमी आए थे मिनिस्ट्री में, और उनके नाटक जो थे, उनसे कहा कि डायरेक्ट करो, जैसे कि प्रोफेसर मार्डली, लिंकन सिंह फिनाले, इत्यादि उनके नाटक को मैंने डायरेक्ट किया था। अब नंदकिशोर जी थे, उन्होंने संपूर्ण रामायण का निर्देशन किया था, और उसमें मेरा सहयोग था लाइटिंग इत्यादि बैक स्टेज पे, है ना। तो मतलब कि जहाँ पर नाटक होता है, अभी देखिए अभी हाल में कोविड के समय में मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, उन्होंने वर्चुअल थिएटर के लिए किया था, का आयोजन किया था, और उसमें एक नाटक जो सिलेबस में है, लावा, रोहित नायडू के साथ मैंने उनको टेक्निकल हेल्प दिया, साथ लावा में मैं पूरा वो मेन कैरेक्टर जो है उसको खिलाया। आप अगर मौका मिले देखने के लिए तो देख लीजिए।
1: अच्छा,
0: हाँ बोलिए।
1: तो आपने कहा कि 70 के ऊपर आपने फुल लेंथ प्ले डायरेक्ट किया, और बहुत सारे नाटकों में भी एज एन एक्टर आपने भाग लिया, फिल्मों में भी

0: आपने भाग लिया, बहुत सारे फिल्मों में आपने भाग लिया, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो, तो इतने सारे अनुभवों के साथ राजकरण जी, एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थिएटर नाटक क्या है?
1: देखिए, मैंने एक बार, मैं टीचर था तो मुझे पता था कि 40 अगर बच्चे हैं मेरे निगरानी में तो मैं 40 भविष्यों को, उनके भविष्य को मार्गदर्शन देता हूँ। तो जब मैं फुल टाइम ये नाटक के फील्ड में आया तो मुझे लगा कि क्या है यार, ये क्या है, इसमें इसका लक्ष्य क्या है,
0: नौटंकी करना है और क्या?
1: तो एक बार वैसे मोहन महर्षि जी से वार्तालाप हुआ, तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा देखिए मैं तो अगर कोई डॉक्टर हो तो वो तो सेवा करता है, टीचर है वो तो मार्ग दिखाता है, पर मैं कलाकार की नाटक में क्या है? तो उन्होंने ये जवाब दिया, देखिए मामा, एक आदमी दिन भर काम करके थके हुए थके मांदे घर लौटता है तो उसको क्या चाहिए? थोड़ा सा रिलैक्सेशन और साथ साथ थोड़ा सा ज्ञान भी। तो ये पूर्ति सिर्फ नाटक कर सकता है, थिएटर ये एक जो साइकिक डिसबैलेंस बन जाता है दिन के स्ट्रेस पर, दिन भर स्ट्रेस में काम करते हैं, थकावन है, शाम को अगर ये मिल गया तो वो साइकिक बैलेंस जो होता है वो बन जाता है और अच्छे नागरिक का बिल्डअप होता है, ये थिएटर करता है।
0: मतलब थिएटर जो है जैसे समुद्र मंथन होता है, लेकिन थिएटर हमारे मन का मंथन करता है और जो अच्छाई होती है वो निकालता है बाहर और आपको एक नया नागरिक बनाता है।
1: वो तो सही है, ये सही बात कही आपने। और थिएटर सिर्फ वो विजुअल नहीं होता है, लाइफ होता है, लिविंग होता है, क्योंकि आप मान लो दर्शकों में बैठे हैं, मैं स्टेज पर हूँ, तो ये जो फासला है अगर मेरा अभिनय ठीक हुआ तो ये जो फासला है ये नहीं रहता, मैं और आप हम एक हो जाते हैं। अगर मैं रोता हूँ तो आप रोते हो, अगर मैं हंसता हूँ स्टेज पर तो आप हंसते हो, ये जो इमोशनल कनेक्शन बनता है, कनेक्ट, ये सिर्फ थिएटर में होता है, फिल्मों में नहीं, ये बनता है। तो कहते हैं ना कि थिएटर एक कल्चर है, आर्ट फॉर्म तो है ही, पर आर्ट फॉर्म जो है वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मेरा मतलब है कि एक पेंटर है तो वो अकेले वो आर्टिस्ट बनता है, एक तबला वादक हो तो अकेले, मतलब कि एक स्कल्प्टर हो तो अकेले, तो वो आर्ट जो है इंडिविजुअलिस्टिक से अलग होकर थिएटर में जब आता है आर्ट फॉर्म तो ये कल्चर बनता है, पूरा एक कम्युनिटी है। इसमें इसमें राइटर है, ड्रामाटिस्ट, निर्देशक, एक्टर्स, स्टेज हैंड्स, लाइटिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम, है ना, ये सब, ये पूरा एक कम्युनिटी बन जाती है, कि कल्चर बन जाता है। क्योंकि एक नाटक के दौरान ये जो पूरा जो टीम बनता है, ये टीम एक एक्सपीरियंस से गुजरता है, कहते हैं ना थिएटर इज एन एक्सपीरियंस, इनका एक अनुभव होता है, एक तजुर्बा होती है, ये है थिएटर।
0: आपकी शुरुआत से लेकर अभी तक आपने कई नाटकों थिएटर में भाग लिया है, थिएटर के किन किन फॉर्म को, किन किन रूपों को आपने देखा है? क्योंकि कहा जाता है कि अभी डिजिटल थिएटर के बारे में बात हो रही है, तो किन किन रूपों को आपने देखा है, किस तरह से थिएटर इवॉल्व आया?
1: देखिए,

0: एक जो वर्कशॉप से जो थिएटर निकलता है, एक्टर्स को कुछ ट्रिक्स दे देते हैं कि चलो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप प्रोडक्शंस। फिर इसके उपरांत आता है स्कूल प्रोडक्शंस। स्कूल प्रोडक्शंस जो होता है, एक तो है सब सब सब जो बनता है वो टेक्निकली बनता है, जैसे कि मेकअप, जैसे कि कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, डिजाइनिंग इसका एक इसके उसूल है, इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसके मेथड्स हैं, वो सीखने को मिलता है। जो भी हो मतलब कि टेक्निकली, तो जो उससे उभरता है, जो नाटक उभरता है, वो उसका स्तर अलग हो जाता है। अब इससे उपरांत जो बहुत कम है, थिएटर लैब्स होते हैं।
1: अच्छा,
0: थिएटर लैबोरेटरी कहते हैं। और वैसे दुनिया में सिर्फ तीन वैसे थिएटर लैब्स को मेरा ज्ञान है, एक तो ग्रोटाउस्की का पू थिएटर लैब, और उसमें क्या है, जितने ये इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टर पर निर्भर करता है। नो प्रॉप्स, नो सेटिंग, और जो कुछ होता है वो एक्टर उसके बॉडी लैंग्वेज से, अपने वॉइस से, अपने एक्सप्रेशन से, वो पूरा क्या कहते हैं, पूरे माहौल को बना देता है। ये लैबोरेटरीज के हैं। और आपने कहा ना कितने स्टाइलों में, तो पू थिएटर मेथड से मैंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल प्ले किया था, पोलिवियाजिनी। वो जब मैं वो NSD से वापस आया था, और उस बेयर स्टेज सिर्फ एक्टर्स पर निर्भर करते थे। तो ये एक्सपेरिमेंटल जो है, एक्सपेरिमेंटेशन मैंने किया था। फिर अब हिस्ट्री देखते हैं, जब थिएटर हिस्ट्री जनरल में देखना, मतलब कि विश्व नाटक कला को देखते हैं, तो इसमें इवोल्यूशन के आती है, ग्रीक से लेकर, शेक्सपियर को लेकर, फिर मॉडर्न थिएटर को लेकर। तो कई नाटक हमने रियलिस्टिक स्टाइल में किया। रियलिस्टिक मतलब कि सब कुछ सही है, सब कुछ होना चाहिए, अगर पानी पीना है तो पानी होना चाहिए, ग्लास भी होना चाहिए,
1: रियल लाइफ ऑन स्टेज।
0: और दूसरी बात है माइम पांटोमाइम, एक स्टाइल है, एक प्रोडक्शन स्टाइल है जिसमें कोई प्रॉप नहीं होता है, आपको बस दिखाना है कि ये यहाँ पर ये कप है, मैंने शक्कर लगाया, मिक्स किया, ये उठाया और ये, तो ये माइम है, ये एक स्टाइल है, ये भी होता है, ये भी मैंने किया है। और बाकी अन्य स्टाइल वैसे है जी,
1: बहुत सारे
0: फॉर्म्स है। थिएटर जो है ना, बस एक समुंदर की तरह है, इसके प्रवाह अता है, मतलब कि जितने भी करो उतना ही वो इवॉल्व होता है, क्योंकि थिएटर जो है ना ओनली आर्ट है जो सोसाइटी को मिरर बनता है, सोसाइटी का मिरर, उसके आईना बनता है कि सोसाइटी एक ये भी एक तरह की ये है ना,
1: तो समाज का दर्पण,
0: समाज का दर्पण। अब सटायर ले लीजिए, एक तरह एक फॉर्म, एक ड्रामा फॉर्म है जो मतलब कि करप्शन इत्यादि को बस एक अलग स्टाइल में वो प्रोजेक्ट करता है।
1: एक चलिए गहराई में हम उतर गए हैं, एक गहरी बात आपसे पूछना चाहूँगा।
0: कहिए कहिए।
1: शायद इस कार्यक्रम के दौरान मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन क्योंकि आपके विषय इतने गहरे हैं और गहराई में उतर गए हैं, नाटक में कलाकार होता है, कलाकार में एक्टर होता है और कहानी में पात्र होता है। एक्टर और कैरेक्टर दोनों के बीच में संबंध क्या है, फर्क क्या है, किस तरह से एक्टर कैरेक्टर में अपने आप को ढालता है।
0: देखिए, ये दो तरह के

0: दो दिशा नहीं, एक ही दिशा में पर दो अलग अलग मसल्स चलते हैं। एक एक्टर, पहले एक्टर को ट्रेन करते हैं अभिनेता, अभिनेता बनने के लिए, पात्र नहीं, चरित्र नहीं, पहले वो अभिनेता बनता है। अभिनेता जब बनता है तो अपने अपने पूरा जो शरीर है इसका ज्ञान, इसको एक्सप्लोर करता है, वॉइस को, बॉडी, माइंड, है ना। अब ये ट्रेनिंग में मिलता है, ये ट्रेनिंग में होता है एक एक्टर को। पहले एक्टर को ट्रेन करते हैं कि मतलब कि अपने बॉडी से कैसे कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, शरीर के किस अंग को किस ढांचे में लगाते हैं। यहाँ तक कि एक्टर जो बन जाता है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, किसी भी पात्र में उसको उड़ेलो वो उस वो फॉर्म ले लेता है पानी की तरह। ये एक्टर हुआ, है ना। तो एक्टर जब अपना ट्रेनिंग, पहले बॉडी को कॉन्शियस हो जाता है, जानता है, उसको मालूम है कि देखिए वैसे आम जीवन में एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आप एक उदाहरण, आम जीवन में आप मान लो ये फूल वाला है, वहाँ पर आप गए, है ना, तो सभी लोग जाते हैं, फूल वाला वही है। एक एक्टर जो है जब वो फूल वाला के पास जाता है तो वो जो सुगंध है
1: वो उसको लेता है,
0: अलग अलग फूलों के अलग अलग सुगंध वो, और जो टेक्सचर है, जो एक फूल के सॉफ्टनेस जो है, टेक्सचर है, दूसरे से अलग है, और उसके जो फॉर्म है, कलर जो है, ये सब वो दिखता है। मतलब कि आम जीवन में हम अपने दिमाग को तो 15% यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, पर एक्टर जो है अपने हर एक इंद्रिया को 100% उसका यूज करते हैं, ये एक्टर होता है। अब पात्र जो है, टेक्निकली मैं कह रहा हूँ, एक्टर को पहले तो वो अपना जो पार्ट है उसको असिमिलेट करता है। हम लर्न बाय हार्ट नहीं, हम नहीं मानते हैं, मेमोराइज, अंडरस्टैंड, इसको मेमोराइज कर लो, इसको अंडरस्टैंड कर लो, इसको उतार लो अपने आप में। एक पहुंचे हुए एक्टर जो कर पाते हैं, वे और उनके जो पात्र है, जो किरदार है, वो आइडेंटिफाई हो जाता है, एक हो जाते हैं,
1: एक हो जाते हैं,
0: वो जीता है उसी पात्र में। अच्छा, ये जो अपने आप को तैयार करते हैं टेक्स्ट वो अकेडमिकली लिटरली जो है उसको, अब टेक्निकली कैसे टेस्ट करें। पहले तो जो टेक्स्ट है वो तो आपने सीख लिया, बोल सकते हो उसको, डायग्रेस जो भी है उसको ये बना सकते हो, लेकिन इसके अलावा टेक्निकली कैसे पात्र को तैयार करोगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ अगर समय हो तो।
1: हाँ बिल्कुल।
0: हम वो NSD में थे तो एक नाटक को तैयार कर रहे थे हम स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ एक क्लासमेट थी 18-19-22 वर्ष का, उसको एक गर्भवती स्त्री का रोल करना था, है ना। तो उन्होंने मेंटली तैयार कर लिया अपने आप को, बॉडीली भी, अब क्या उसको स्तर और देना है टेक्निकल, तो कैसे दे सकती है, मतलब कि जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, उनका कोई अनुभव नहीं है। तो हमने कहा, हम साथ मिलकर सोचे, कह कि उनसे कहा कि देखो बटक जो है, डक, बटक को इमेजिन करो और सोचो कैसे वो चलता है, उसी तरह से चलो। तो इसको हम कहते हैं एक्टर्स का एसोसिएशन।
1: अच्छा,
0: वो एक एनिमल से एसोसिएट, कैसे कोई राजा हो तो कहते हैं दहाड़ो, दहाड़ो मतलब शेर, उसको एसोसिएशन, एनिमल एसोसिएशन होता है।

0: कभी एलिमेंट होता है, एलिमेंट वो पात्र ऐसा कभी कभी ऐसा किरदार होता है कि तूफान है अंदर, तो इमेजिन करो एक तूफान। ये तो आपने पूछा ना, तो ये तो लंबा सेशन
1: नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं, क्योंकि गहराई में उतर है अभी।
0: एक्टर को

0: कि वैसे होता है।
1: तो हमारे साथ राजकरण बामा जी है, तो आप साथ देते रहिए, आपसे बहुत सारे प्रश्न होंगे कि अभी तक आपके कौन से सबसे मनपसंद पात्र आपने निभाया है, और क्या आपके जीवन में कोई ऐसा मौका आया है कि आपने सोचा कि मैं अगर मुझे ये रोल मिल जाए तो मैं उसको अच्छी तरह से निभा लूँ, लेकिन अभी तक नहीं मिला। इन सारे क्वेश्चंस है हमारे पास, लेकिन अच्छा। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आते हैं।

0: पाठ्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: आज के कार्यक्रम में खास तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकरण बामा जी। राजकरण बामा के साथ, उनके जीवन के साथ इतने सारे अनुभव जुड़े हुए हैं उनके बस्ते में। कहा जाता है कि जिनकी लंबी उनकी दाढ़ी है, जितना सफ़ेद उनका उनकी दाढ़ी है, उतना ही बड़ा उनका अनुभव है नाटक के क्षेत्र में। राजकरण जी, आपने कहा कि 70+ आपकी फुल लेंथ प्ले एज ए डायरेक्टर और एक्टर भी है, और आपने बहुत सारे लोकल और इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया है। तो आपसे भी एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न पूछना चाहूंगा। अभी तक जिन जिन पात्रों ने जिन जिन पात्रों को आपने निभाया, उनमें से सबसे आपका मन पसंद, जो आपके दिल के करीब है, कौन सा पात्र आपने निभाया अभी तक, आप उसको याद करते?
2: वैसे तो

0: काफी
1: बहुत सारे हैं
0: बहुत सारे हैं
1: कुछ तो एक तो होगा।
0: एक जो मुझे मतलब कि काफी मुझे मुझ पर असर किया था वो हम एक एक्सपेरिमेंटल प्ले एनएसडी में कर रहे थे साउंड एंड मूवमेंट मतलब कि उसमें शब्द नहीं थे साउंड एंड मूवमेंट और पूरे एक घंटे तक साउंड एंड मूवमेंट पे चला था वो और उसमें क्या कहूँ मैं वो मैंने कुछ लेबोरेटरी एक्सरसाइज किए थे वो साइकोफिजिकल को सुना है आपने साइकोफिजिकल साइकोफिजिकल स्टेट जो है एक साइकिक स्टेट होता है जिसमें जैसे कि एक चिपकली के पूंछ काट दो तो वो हिलता रहता है हिलता रहता है मतलब कि एक्टर का जो है वो जो कॉन्साइंस है कॉन्शियसनेस है और उसके मूवमेंट उसके बीच का जो है ये पूल वो कट जाता है तब क्या होता है सिर्फ एक साउंड और एक मूवमेंट ये एक्सरसाइज आई वेंट थ्रू इट मैंने किया था वहीं पर लेबोरेटरी में वैसे इस स्थिति में मैं 2 घंटे रहा
1: अच्छा
0: मुझे मुझे कुछ ज्ञान नहीं था बस हाँ हाँ हाँ वैसे ही चलता रहा मतलब कि ये जो साइकोफिजिकल स्टेट है वो मुझे बहुत बहुत सहायता किया था इस रोल में तो इस रोल में सिर्फ वो करना था हुक हुक हुक और पूरे 1 घंटा वो रोल मुझे बहुत याद है बहुत इम्प्रेस
1: बहुत ही रोचक बहुत है। अभी हम बात कर रहे थे तो हमने एक आपसे एक प्रश्न पूछा चलिए ऑन एयर मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि हमने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है बहुत सारे लोगों के जीवन के बारे में पढ़ा है दिलीप कुमार भी क्योंकि कहा जाता है कि दिलीप कुमार मेथड एक्टर थे मतलब जो पात्र उनको दिया जाता है उस पात्र में अपने आप को इतना डाल देता था कि एक बार कोई व्यक्ति कह रहा था कि उसको उस पात्र से निकलने के लिए उसको कठिनाई हो रही थी उसको हेल्प लेना पड़ा किसी डॉक्टर से। यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा जब हम अपने आप को एक पात्र में ढालते हैं तो हम वह पात्र बन जाते हैं
0: वो तो सही
1: है। नो लॉन्गर द एक्टर वी आर द कैरेक्टर तो वापस कैसे है
0: वापस आने को एक तो समय चाहिए यू नीड टाइम मतलब कि ये जो लिंगरिंग इफेक्ट होता है ना चरित्र का वो रहता है वो जो टेक्स्ट होता है वो आते जाता है तो इसके लिए दूसरा रोल लेने से पहले बीच में समय होना चाहिए समय अपने आप थोड़ा सा काम करता है और दूसरी बात यह है वो जो डिस्ट्रेसिंग एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि मेडिटेशन होता है मेडिटेशन और वैसे एक्सरसाइज होते हैं जिससे हम उस रियलिटी से अलग होकर दूसरी रियलिटी में आ जाते हैं तो अगर ये हो गया तो वो जो भूत की तरह पीछे लगा है वो पात्र वो चला जाएगा
1: चला जाएगा
0: पर समय लगता है कोई किसी भी एक्टर से आप पूछो वो समय लगता है अभी मैं वो उस वो पात्र क्या कहते हैं एक सिख का ग्रैंडफादर सिख का रोल किया था आफ्टर पार्टी में तो अभी तक लिंगर हो रहा है 2 महीने हो चुके हैं अभी तक लिंगर हो रहा है दूसरे रोल नहीं ले सकता हूँ आई हैव टू रेस्ट लेट इट गो ये हर एक जो कमिटेड एक्टर होते हैं ना उनके साथ ये होता है कुछ भी कहो सर ओलिविया लॉरेंस से वो अपने लास्ट जो हैमलेट को वो जो नेशनल ग्लोब थिएटर नेशनल थिएटर उनके डायरेक्टर उनके पास गया कि सलोट सर आपको हम आपका ये स्वान सॉन्ग होगा लास्ट प्ले तो आप हैमलेट का रोल कीजिए तो उन्होंने कहा है मुझे जितने पहुँचे हुए एक्टर नाइटेड बाय द क्वीन उन्होंने कहा मुझे 3 महीने दो
1: उनको निकलना है
0: उनको निकलना है और इस फिर से ये हैमलेट के किरदार निभाना है ये सब होता है
1: एक्टर्स नीड्स ब्रेक
0: नीड ब्रेक डेफिनेटली डेफिनेटली क्योंकि कमिटेड एक्टर

0: होते हैं ना, वो दिलो जान से पात्र में बन जाते हैं एक, वो आइडेंटिफिकेशन जो कहा था ना वो एक हो जाता है, वो उस पात्र की तरह सोचने लगता है, उस पात्र की तरह खाने लगता है, उस पात्र की तरह चलने लगता है। अब वहाँ से निकलने के लिए समय चाहिए।
1: एक पॉडकास्ट मैं सुन रहा था जहाँ पे एक मशहूर एक्टर, उन्होंने कहा कि कभी कभी जिंदगी उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि वो ह्यूमन इंटरेक्शन से दूर रहना चाहता है, क्योंकि वो अपने आप अकेला बंद कमरे में रहना चाहता है, क्योंकि उसने बहुत सारे पात्र को निभाया है, एक तूफान चल रहा है दिमाग में, तो इसीलिए थोड़ा सा शांत रखने के लिए वो अपने आप को अकेला कमरे में बंद कर देता है कई दिनों के लिए, फिर बाद में जाके ह्यूमन इंटरेक्शन में फिर चला जाता है।
0: नहीं, ये काम करता है आइसोलेशन जो कहते हैं ना, आइसोलेशन, खुद को इन सब चीज़ों से दूर रखो। लेकिन ये जो है
1: दिमाग
0: जो है, इमेजिनेशन जो है, मेमोरी जो है, इससे निकल आप कहीं भी अकेले जाओ, किसी भी बंद कमरे में रहो, इससे बच नहीं पाओगे। इससे निकलने के लिए मैंने कहा ना
1: मेडिटेशन,
0: बस समय मेडिटेशन।
1: बिल्कुल। अभी तक जो पात्र आपने निभाए बहुत सारे, लेकिन ऐसा कोई पात्र अभी तक आपको नहीं मिला, कहीं ना कहीं राजकरण बामा की जिंदगी में ये इच्छा थी, डिजायर था कि काश ये पात्र मुझे मिल जाए, मैं उसको इस तरह से कर पाऊं, ऐसा कोई पात्र रहा है?
0: एक बात कहूं आपसे, जब मैं पीछे देखता हूँ अपने जीवन को, तो मुझे कुछ कमी नहीं दिखता, कुछ कमी नहीं दिखता। जब आगे देखता हूँ तो एक तरह की रिग्रेट जो है, एक तरह की अफसोस कि जिस मिशन के लिए मैं बना था वो सपना ही रह गया। वो क्या है, वो क्या है, मैं आपके प्रश्न से थोड़ा सा अलग होकर कहता हूँ, वो क्या है, मैंने सोचा था कि मैं इंडिया जो है, भारत जो है, वो तो विशाल है, खुद में एक महाकॉन्टिनेंट, वो तो ये है ना,
1: हाँ।
0: एक कॉन्टिनेंट है, और वहाँ पर जो है उसका अगर एक, मतलब कि थोड़ा सा एक हंड्रेड अगर यहाँ पर कर सकूँ, वहाँ से जो कर लेकर आया, तो मेरा जीवन सफल होगा। तो ये रिग्रेट क्या है भाई, मैंने सोचा था, एक तो देखिए अमाट्योर लेवल पर लोग कहते हैं प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि नाटक वो उनको खाना पीना नहीं देता है, नाटक जो है इट्स नॉट रेम्यूनरेटिव। तो अगर वो ये अमाट्योर लेवल से थोड़ा सा स्कूल लेवल पर आ जाते तो प्रोफेशनल बन जाते। अब क्या है, 1979 में मैं मोहन मोहर्षि जी के साथ था, हमने एक ड्रामा स्कूल का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को दिया 1979 में। शशि सागर राम गुलाम ने पूरे कैबिनेट को, अगर आप आरसी में जाओगे तो आपको मिलेगा ये, पूरे कैबिनेट को अप्राइज किया कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स विल बी डोटेड विद अ ड्रामा स्कूल। इमेजिन 50-55 साल बाद कोई ड्रामा स्कूल नहीं है। तो ये रिग्रेट होगा ना किसी भी नाटक कार्यकर्ता को, नाटक करते जो नाटककार होते हैं उनके पास ये रिग्रेट रहेगा कि मॉरिशस में एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं है, एक ड्रामा सेंटर नहीं है।
1: लेकिन अभी तक हम देख पा रहे हैं कि आप जैसे वयस्क लोग हैं जिसके पास बहुत सारे अनुभव है, लेकिन बहुत सारे हमारे नौजवान अभी रुचि दिखा रहे हैं नाटक में, ये लोग नाटक सीख रहे हैं। अभी हाल में ही हमारे एक ग्रुप है, हमारे आदर्श राजेश्वर सितोहर, उनकी एक टोली गए थे ड्रामा ओलंपिक में, वहाँ पे उन लोगों ने भाग लिया है और वहाँ का एक्सपीरियंस लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, और बहुत ही जल्द अभी हम बात कर रहे हैं तो शायद सोमवार को हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा एक नाटक का मंचन होने वाला है, बूढ़ी काकी प्रेमचंद द्वारा उसकी कहानी, उसका मंचन होने वाला, बहुत ही सुंदर उसका,
0: बढ़िया,
1: हाँ उसका रिहर्सल मैं देख रहा था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जल्द टीवी में आने वाला है। तो इस तरह से क्या

0: क्या कर सकते हैं, एक दरवाजा बंद होता है तो बहुत सारे दरवाजे खोलते हैं। इच्छाएं जो है पानी के बबूले की तरह होते हैं, जितना आप उनको दबाओ वो अपना रास्ता निकालेगा,
1: ऊपर तो निकाल लेगा। हाँ,
0: बिल्कुल। अभी समय हो गया है, मैं समय को देख रहा हूँ, समय हो गया, इशारा हो रहा है कि जाने का अच्छा। समय भी आ गया है, लेकिन वही प्रश्न मैं सबसे भी पूछता हूँ, आपसे मैं भी पूछना चाहूंगा, एक एक्टर होने के नाते क्या हम कैन वी अर्न ए लिविंग फ्रॉम थिएटर, फ्रॉम एक्टिंग, फ्रॉम मूवीज इन मॉरिशस, या फिर और बहुत सारे काम करने हैं?
1: यहाँ पर एक्टर को एक तो गवर्नमेंट लेवल पर प्रोफेशन नहीं माना जाता है, पर MRA आता है।
0: अच्छा,
1: सॉरी है ना। एक एक्टर को अगर जीना है तो उसको एक साइड बिजनेस होना चाहिए। ये जो थिएटर जो है, मैं आपसे कहता हूँ एक एक्सपीरियंस, एक भारत से NSD से एक ट्रूप आया था मॉरिशस इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशंस के बारे में, वो पगला घोड़ा नाटक लेकर MGI, तो एक नॉमिनल फी लगाया गया था 50 रुपीज। एक बंदा, हमें मिनिस्ट्री में था, एक बंदा 75 फोन कम से कम किया था ये मांगने के लिए कि उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दो। तो ये जो पेइंग, और 50 रुपया में तो वो तो खरीद सकता था।
0: हाँ।
1: लेकिन नहीं, ये जो पेइंग कल्चर जो है ये नहीं है।
0: मॉरिशस, आप जानते मॉरिशस बहुत छोटा है, तो हम सबको जानते हैं, आप हमारे परिवार हो सकते हैं, वो हमारे, मान लीजिए मैं एक नाटक का मंचन कर रहा हूँ तो कोई कहेगा एक टिकट तो दे दो ना। मॉरिशस छोटा है तो हम सब परिवार है, शायद यही तो प्यार है।
1: तो ये पेइंग कल्चर अगर बन जाए, जैसे कि अभी कोदा आर्ट्स ऑफ 500 रुपीज टिकट या 300 रुपीज, तो उससे हो सकता है। अगर ये पेइंग कल्चर पब्लिक में बन जाए तो एक्टर अपने आप जी सकता है।
0: बिल्कुल, लगे हाथ में ये अपील कर देता हूँ सभी सुनने वालों के लिए, अगर कोई कलाकार आपके परिवार में कलाकार है, कोई कुछ मंचन कर रहा है या फिर गीत गा रहा है या फिर डांस कर रहा है, थोड़ा सा आप उनको अनकोरेज कीजिए। अनकोरेज किस तरह से, आप उसकी टिकट खरीद लीजिए, इस टिकट से वो अनकोरेज होता है और नाटक और डांस और सिंगिंग प्रोग्राम वो प्रोड्यूस करेगा, फिर कलाकार कला इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी हमारे देश में। राजकरण बामा जी, देख रहा हूँ कि 2:55 हो गए हैं, आप आए हैं, आपके जीवन के सारे अनुभव आपने साझा किया हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो समझता हूँ बहुत कम आपने बताया है।
1: बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।
0: लेकिन आपकी जरूरत पड़ेगी जरूर, और आपको एक लंबी आयु की इच्छा हम रखते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी दाढ़ी और लंबी हो और आपकी उम्र और बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ उठाया। मैं तो सोचता हूँ यह कार्यक्रम जो है एक शोध की तरह है, एक रिसर्च की तरह है, आप लोगों के लिए इसका ज़रूर फायदा उठाइएगा और हमारा साथ देते रहिएगा। हर गुरुवार को दोपहर के 2 बजे हम आते हैं आप लोगों के लिए नाट्य कला कार्यक्रम को लेकर। अगले गुरुवार तक हमारी ओर से नमस्कार।

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से आशिता आपको नमस्कार
1: नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है मॉरिशस की अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत बनी हुई है लेकिन उसे लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है मध्य पूर्व में जारी युद्ध ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और दबाव में आए पर्यटन क्षेत्र ने आर्थिक स्थिति पर असर डाला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस सप्ताह मॉरिशस के साथ अपनी वार्षिक समीक्षा पूरी की इस दौरान IMF ने सार्वजनिक ऋण के ऊंचे स्तर को लेकर चेतावनी दी है जो जून 2025 के अंत तक सफल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 86% पहुंच गया था साथ ही सरकार के वित्त पर बढ़ते दबाव को लेकर भी चिंता जताई गई है IMF ने पेंशन व्यवस्था से जुड़े सुधारों सहित सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधारों की सराहना की है हालांकि संस्था ने टिकाऊ आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बजटीय संतुलन सुधारने और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है लैंगिक समानता एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जूनियर अचीवमेंट मास्कारेंस के बीच आज गुड़गांव में गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की क्षमताओं को सशक्त बनाना है इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री तथा संबंधित मंत्री आर्यन नवामारी ने इस साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करेगी देश में पेट्रोल और डीजल का मौजूदा भंडार अगले 18 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इनकी नई खेप 20 जुलाई को पहुंचने की उम्मीद है वहीं जेट A1 ईंधन का भंडार 20 दिनों के लिए उपलब्ध है LPG का मौजूदा स्टॉक 13 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में है और इसकी नई खेप 17 जुलाई यानी कल पहुंचने की संभावना है इसके अलावा हैवी फ्यूल ऑयल का भंडार 45 दिनों के लिए उपलब्ध है जबकि इसकी अगली खेप जुलाई के अंत तक देश पहुंचने की उम्मीद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के कई शहरों में राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा लोकप्रिय रक्षा मंत्री मिकाइलो फेदो

0: रोवक को अचानक पद से हटाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। राजधानी कीव में बड़ी संख्या में विशेषकर युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। उन्होंने फेदेरोव को मत हटाओ और जीत के प्रयासों को कमजोर करना बंद करो जैसे नारे लिखी तख्तियां उठाई और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब तक अपने इस फैसले का कारण सार्वजनिक नहीं किया है। इस निर्णय से राजनीतिक विश्लेषकों, सैन्य अधिकारियों और नागरिक समाज के एक वर्ग में असंतोष देखा जा रहा है। 35 वर्षीय मिकाइलो फेदेरोव को इसी वर्ष जनवरी में रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। उन्हें मंत्रालय में सुधार, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान और युद्ध मोर्चे पर प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए डेटा आधारित रणनीतियों के इस्तेमाल का श्रेय दिया जाता है। संसद में आज गृह मंत्री आइहो क्लिमेंको को नए रक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर मतदान होना है। वहीं फेदेरोव की बर्खास्तगी को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ इसे सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सारेस्की के साथ मतभेदों से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि सैन्य लामबंदी में सुधार की धीमी गति इसके पीछे की वजह हो सकती है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: News on NBC Play. Center 95.5. North, South 95.6. 95.6. East, West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और बेशक आप लोग भी हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। और वैसे जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो आज की चर्चा, ये प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, इम्पोर्टेंट मुद्दों पर हम बात करते हैं जो समाज से जुड़े हैं, इस तरह के चर्चा हम लोग करते रहते हैं। और आज जो हमारा विषय है वो है नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण, एक ऐसी समस्या जो धीरे धीरे हमारी सेहत, मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता पर कर रही है, तो काफ़ी प्रभावित कर रही है इस तरह की जो ध्वनि प्रदूषण। हम मानेंगे कि आप लोग इससे सहमत हैं कि काफ़ी एक, मतलब ये एक ऐसे विषय हैं जो गंभीर हैं। और आज इस चर्चे में हमारे साथ इस स्टूडियो में पुलिस दे लॉन्विरोनमेंट कई सदस्य आए हुए हैं, सब इंस्पेक्टर ओमदत्त सीताराम जी। तो आप इस स्टूडियो में पधारे हैं, हम आपको कह के धन्यवाद और आप अपनी कीमती समय निकाल कर हमारे साथ आए हुए हैं। नमस्कार और स्वागत है आज की चर्चा कार्यक्रम में सीताराम जी। तो जैसे कि हमने कहा कि हम ध्वनि प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन सुनो पर चर्चा करेंगे, तो ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। और सीताराम जी, सब इंस्पेक्टर सीताराम जी, हम आपसे यही खोजब जाने के, जैसे कि हम बोल लीजा कि ये जो नॉइज पॉल्यूशन है, विध्वनि प्रदूषण, ये काफ़ी एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय से संबंधित है, जहाँ जहाँ ये बात जब होला तो ये काफ़ी लोग इस पर कर सेहत पर भी असर होला, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या हम लोग, काफ़ी हम लोगों के सेहत पर भी असर पड़ेगा। तो हमने के सबसे पहले बताओ कि ई कर कारण कौन सी है, यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन कौन सी है और कर कारण कौन सी है हमने के जैसी मोरिस में।
1: नॉइज़ पॉल्यूशन जो ना हम ऐसा पॉल्यूशन सुनो, ये एगो बहुत एगो मेजर प्रॉब्लम होगा मोरिशस में। ये जो प्रॉब्लम बाटे, ये तो आदमी के जो हमने के माम पब्लिक के वो लोग की ला सोते ये सब घाटे गए, आदमी लोग स्ट्रेस होला, लड़का लोग नहीं सकेला पढ़े, जो बड़ा आदमी मलाद बा बिस्तर में रहला वो लोग के प्रॉब्लम है। तो हर खातिर हमने के जो मोरिशस में नया कानून लागू करल बा।
0: अच्छा, एकर पर कानून लागू होल बा।
1: कानून लागू होल बा। तो हमने के कैसे बजला लालवा में, हमने के कानून में दू गो लालवा है, ठीक है, पॉल्यूशन नॉइज़ पॉल्यूशन के दू गो कानून है। एगो है जो ला पुलिस अप्लिक करला।
0: अच्छा।
1: जो ला पुलिस अप्लिक करला ओके बोला सा कंट्रोल ऑफ नॉइज़ रेगुलेशन। तो है सब कानून लाने 2020 में अपर्चर 1 अक्टूबर से लागू करल बा। तो एगो है कंट्रोल ऑफ नॉइज रेगुलेशन जो में ला पुलिस अप्लिक करला है लालवा बा। और यहाँ पर हमने के लापारी डिसिप्लिन नहीं, हमने के लापारी डिसिप्लिन हमने के कान हमने के जो हुई, हमने हई नॉइजवा के डिटेक्ट करा से हमने के ओकर जो एटोसिटी है हमने के कान से, तो हमने एस्टाब्लिश कंट्रावेंट करेला से। जो डिजम ला कानून है वो है स्टैंडर्ड फॉर नॉइज रेगुलेशन, कैसे बोल जाला स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में एगो बन लिमिटर है, कैसे बोल जाला डिसिबल है, तो डिसिबल कराता तो है ला मिनिस्टर ला संति करेला। हमने के देखब सगरों सगरों हमने के ब्यूरो कैसे बोल जाला सानिटी है, तो वहाँ पर हेल्थ इंजीनियरिंग ऑफिसर्स था वो लोग है कानून वो लोग भी लागू कर लें सर है ला स्टैंडर्ड फॉर नॉइज रेगुलेशन।
0: अच्छा।

0: ये जैसे बोला ये कानून लागू बा 2020 से तो खाली दुगो मतलब कौन से आने बा
1: दुगो लागू
0: कानून कौन से आने बा तो ये कानून में कौन सी नया लागू कर बा अभी जैसे 2020
1: से ये कानून तो रहल आगे से भी तो अब भाई नया कानून में कौन चल बा इमें फिक्स पेनाल्टी चला बा समझे जो अपराधी है कॉम्प्लेट ओफेंसवा करी तो है ओफेंडवा के हमने सब से फिक्स पेनाल्टी दे तो फिक्स पेनाल्टी से तो जो एक लामान है
0: आगे जैसे फिक्स पेनाल्टी नहीं रहा
1: ऐसे आगे हमने जैसे लाखों बिला कर दिया अब नहीं अब सब से फिक्स पेनाल्टी दे तो फिक्स पेनाल्टी है दे के 10,000 रुपये ओकर फिक्स पेनाल्टी है लामान ओकर जुर्माना है 10,000 रुपये जो एगो दिल्ली वैंकेन जूम है जहीं पे करे के सर मैं जो डाट से हमने इश्यू करब सर एगो एग्जाम्पल बताए कि आज एगो अपराधी के एगो देव सर एगो फिक्स पेनाल्टी तो किसी वैंकेन जू मिली पे करे के ओकर लामान एगो लाखों में
0: तो कबो कबो ऐसे हो जाला कि कनू वैंकेन जू वहाँ में नहीं सकल पे ये
1: हाँ होला ऐसे होला जब नहीं सके उनसे पे करे तो एक दूसरा
0: फिर से वो लोग की चाय पे कर
1: तो हाँ तो फैन से लॉकेट होला लॉकेट करके तब हमने ओके लाकू भी लागे गा जा तब वहाँ पर ओका जुर्माना जस्टी फो हो जाला वो टोआफा लालुआवा में बोल जाला कि मोज एंड राइस सभी जे 3,000 से जस्टी सकी पे करे तो 10,000 के बदले में सकी 3,000 लिख पे करे
0: तो कितना तरह के मतलब फिक्स पेनाल्टी
1: हाँ यह पूछता हूँ जानने के कि जिफिकों का आयते के फिक्स पेनाल्टी है हमने के लालवा में है 3rd schedule 4th schedule 5th schedule 6 तो 3rd schedule है जो कैसे एगो एगो एगो व्यक्ति वो ढेर जोर से ला म्यूजिक डाले बा तो वो एगो आकीजे डायरेक्ट हम के तो ओके 3rd schedule ला सा सर जे कैसे एगो एगो एक कोई भी व्यक्ति वो अपन लुटो में जोर से अपन ला म्यूजिक डाले बा तो हमने ओके 3rd schedule डायरेक्टली ला सा 4th schedule जो ना वो स्वा एगो कैसे बोला एगो लुटो सिपा एगो व्हीकल के ओनर के नहीं तो एगो बेंगालो सिपा एगो बिल्डिंग के ओनर के ओके दे ला सा क्योंकि ज़्यादा तक जाइला से जब कंप्लेंट दिखे तो देख बा कि एगो बिल्डिंग में कैसे ले बा एगो बेंगालो में उल्लुए करल बा तो वहाँ जाइब हमें कि डिफिकल्टी वाला जाने के हो वहाँ पर जो लम्बी ढेर जोर से डर लेबा तो हमने ओना के जाने ला सर तो ओना के दिल्ली ला सर तो हो ओके 4th schedule ले ला सर तो क्या करवा जब ओके देबा 4th schedule तो हमें पार्ट 1 है पार्ट 2 है तो हमने जब दे ला सर तो ओके डेली ला सर पे करे के पोपीट दवा के कि ओके चाहे वैकेंसी में पे करे के तो अब लौकी की पोपीट है बोली हम तो नहीं कर ले है जुर्मा हम नहीं कर ले है तो ऊ में पार्ट 2 है तो उभर के नामवा डाली के लुए कर
0: अच्छा
1: स्वा के लुए कर लुटुए अब डाले उभरा के बोले कि हई कानूनवा ई जस्टी लागू है बिल्डिंग्स में और व्हीकल्स में जितना बिल्डिंग्स है बिल्डिंग्स जब ले बट घर है साल डिफेक्ट है रेस्टोरेंट है लोटेल है जहाँ जहाँ ला म्यूजिक खेलेला है सब बिल्डिंग्स में और जो गाड़ी है कैसे लुटो ले जो अपन जाने लग जब बुक्स खोल बट दिख बट कानो बासू डालल है ऐसे तो टपास करेला तो जब ओनर के देव सक से जुल कट तो ओकर देव है कि कैटोजू में ओकर में बॉटू भर के रेटूने करे के जो पुलिस सेवा सेवी कर रही स्टेशन सेवी कर रही सब पुलिस दे एनवायरमेंट सेवी कर रही तो ओ हो से जुल कटवा के टूने के वाला कैटोजू में तब का होला तो हमने के मिल जाला कि के हो अपराध हुआ कर लेबा उसमें नामवा लिखा रहला के हो का सब चीज NIC नंबर ओका कॉन्टैक्ट नंबर सब तो हमने एगो छोटा सा लॉन्गेट करके तब पॉट 5 भरला सा शेड्यूल 5 शेड्यूल 5 वा दिला सा जन नवा नामवा मिलल रहला जन पोपीते वा देवेला कि एटिल ला म्यूजिक खेले रहा हो डाटवा हम नहीं रिस्पॉन्सिबल है ऊ हा तो ओके दे देवेला ओका नाम देवेला तब है शेड्यूल 6 हमने भर के थोड़ा लॉन्गेट करके ओका लगे दिला के ला जा अब शेड्यूल 6 का है फॉर एग्जाम्पल एगो पोपीते एगो नाम दे लेबा शेड्यूल कटवा में जब ओकर नमवा दे लेबा तो ओ नमवा ढले ऑप्शन नहीं छबा फिक्टिशियस बा सके लगो फोस न बा लेट बिदा कर लीसा फिक्स पेनाल्टी बा जब बिदा कर लीसा अथी एनरजिस्ट्रे हो ड्रॉ भेजे के लापोस पर जब बिदा कर लीसा ओके नहीं मिला के लेटवा के ट्यून हो जाए तब से जिलवा शिशवा को चिकारे ला जा और पोपीते जो नृत्य
0: बाकर
1: ओकरे दे लीला सा बुझा सा जा टू पे करा बस कि तुहर बाची मोहल हुआ पर एक जो नॉइज पोल्यूशन रहा

0: pour les gens sur nous, tout le monde a de toute responsabilité. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et il y a des gens qui ont été en train de se faire.
1: Oui, c'est à votre propriété qui a été en train de se faire. Donc, pour les yeux, l'environnement, concerné noise pollution kip kaisen kaisen shikayat awela complaint awela
0: de ya kaise vitala
1: boli augmenté ho kal ba pichla statistiques
0: augmenté ho li dalai i problème pollution wa kaise ta ba sa national issue kal ba de ba noise from building tale boli ki house le ghar ba apartment ba hot wedding house ba ab hai sab ta loudspeaker se na घर में जन डाउट से लाउड स्पीकर लाम बिजिक कर से जोर जोर से डाउट होने जा अब नॉइज फ्रॉम व्हीकल्स बा
1: व्हीकल्स के भी बच्चे ले जा
0: तो कोनो बा म्यूजिफिक कर रखा है से मोटरसाइकिल ले बा अभी इस ज्यादा नो नो यू जो जेनेस लोग बा बोले जा
1: कैसे
0: वो लोग जैसे म्यूजिफिक कर लें सा तो टापास कर लें सा तो ही लाउड स्पीकर के बा जो कैसे टाले बोली कॉल बूट्स में जो रहला ऐसा अब
1: मतलब तरह तरह के कॉम्प्लेंट जैसे हो व्हीकल में पर आवेला जैसे बट लाउड मतलब नॉइज पर जैसे पर आवेला तो मान लो एको व्यक्ति कॉम्प्लेंट करी शिकायत करी डर्स करे कि ओकर वाजे गहियां तपास होता या फिर कोनो मिटाल वर्कशॉप होला जा खुलल बा ओकर भीरी बात जैसी तपास होता इस सब में कुंची इस समस्या में निपटाने के लिए कुंची कर जाला
0: तो हमी के जन कॉम्प्लेंट कैसे आगे के मिशन में हम डिजा बोल रहे कि हमने के हॉटलाइन में सब कॉम्प्लेंट करे तो ऐसे कॉम्प्लेंट मिला तो हमने मैक्सिमम वो कागज भी दे तो हमें चाहिए ला से देखे और ढेर जे ईयरजो मांगे रहता तो चाहिए ला से देखे तो कैसे मेटल वर्कशॉप बा लेबर मैकेनिकल वर्कशॉप एल्युमिनियम वर्कशॉप ये भी तो घर इतना तपास करेगा ना कैसे मिटाल कर बट गाइंडर सेवी कर बट एक भी कानून है तो हमने जाए ला से तो भर सक सेंसिटाइजेशन कर ला से देखी ला से कि लोग के पेमी आजू बाकी में वो लोग इलीगल मो लोग के दुआ बा कम करे कि
1: नहीं कोनो समय बा कि वो लोग के चाहे ऐसे नहीं हाँ, कानून
0: हो वैसे तो कैसे
1: फजीरे से
0: हाँ फजीर से काम करेगी हाँ तो जिससे काउंसिल उमें कंडीशन डालेला जब पीएमई को देवेला तो लोग को कंडीशन डालेला सर तो कोई के पीएमई में कंडीशन नहीं रहेला
1: अच्छा
0: तो हमने मांग करेला सर जिससे काउंसिल से कि कंडीशन डाल दी कि वो सेटल ले में था काम कर लिया जा तो हमने जाके सेंसिटाइजेशन कर लिया जा कि जो चीज काटे के रही भीतर में बंद करके काटे जब मैं वो पोल्यूशन नहीं करी अब जे हमने के कंप्लेंट आ रही करंट मिलती रही तो हमने मिनिस्टर ला सोते के लिए लेला सर तो लोग के बुला के l'appareil décibel leke mesurer la sanson wa iski pa misibel limite me baki ne ba je nay la limite me ta ministère la santé jon ba o lo action de
1: lanza
0: o lo action de lanza a o fond se hita ni ta contre mon champ de vigueur là ça et c'est ça
1: तो प्रिय श्रोताओं इस समय आज की चर्चा प्रोग्राम चल रहा है और नॉइज़ पोल्यूशन पर हमने चर्चा करते हैं जा तो फिलहाल एक ब्रेक एक गाना हमारी श्रोताओं के लिए चलाएं

0: इस कार्यक्रम में आप सबको दोबारा स्वागत हम करते हैं और आज का हमारा विषय है नॉइज़ पोल्यूशन और पुलिस दे लॉन्विरोनमेंट से आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में सब इंस्पेक्टर श्री ओमदत्त सीताराम जी। तो सब इंस्पेक्टर जी, हमने के सकब बोले आज काल के जो युवा है, युवा जो बा वो लोग कहे मोटरसिक्लेट में रिशापा मोडिफिए करे लंजा पहले सब कहे
1: कानून का बोला कानून तो रेग्लिमेंट से अलबा ना कि चाहे तो डिसेबल करे के लोग सब नहीं कर लन सर में मफल जरा जो तपास बाकी आतनी कहला जिमिए कहला वो लोग हम मफलवा निकाले हुए लंजा कोई तो देख बा वो एगो नवा मशीन किन लग तो एगो अपन एगो और जो पुलिस आप मोबा लोग किन के दूसरे कायदे के लगे सर तैसा मोडिफिकेशन हो तो वो लोग जैसे बोले वो लोग के मन में का है सब बोले वो लामूद है ऐसे करे खोजे लंजा

0: heter kanunen Djurmoha.
1: बिल्कुल मोटरसाइकिल और ये लोटो के मोजिफिये कर रिसापों के बारे में कैसे आप लोग क्रैकडाउन ऑपरेशन करे ले जाए
0: हमने के तो ढेर कॉम्प्लेंट वो मिले ला मॉम पब्लिक से तो हमने के होटलाइन में मिले ला तो हमने जाए ला सा स्टूपेन सर्च करे तो स्टूपेन सर्च कर ला सा अब ऐसा मशीन के कॉन्ट्रोमोशन मिल के फासिल है बस कि जब वो प्लास में रही रहा जहाँ पर तो एगो ओसन मशीन जब आवेला एगो मोटरसाइकिल जब उनके पुल डिसापमा सौंसे है जब वहाँ आवेला तो हमने के दूर ही से जाना चला कि एगो मशीन आवा तो के आगे टेक ला सर आगे टेक करके तो के फिक्स में नाटी ला सर भाई जिसमें दू लालुआ बा एगो भाई हमने के जो नालुआ बा नॉइज पोल्यूशन में जो कंट्रोल ऑफ नॉइज रेगुलेशन ई में भी जिसमें रुपी है और एगो रोड ट्राफिक एक्ट में है जो लालुआ रोड ट्राफिक में हाउला में बोला सके मोडिफाइंग साइलेंसर सिस्टम कोजिंग एक्सेसिव नॉइज ओकरो भी लामान जिस मिल रुपी है तो हमने जिस हमने ये नहीं कह ला सर मुगिस में जितना ला पुलिस बांचे स्टेशन के सब कोई करे लाई है स्टॉप एंड सर्च रोज के रोज कंट्रोल कंट्रोल हो रहा सब ला पुलिस स्टेशन के लेबर सब करे ला जा हमने वो भी करे ला जा तो हमने स्पेसिफिक कह ला सर जो एगो प्लास में लेबर एगो नॉर्मल में मौका में हमने के गो प्लास स्पेसिफिक मिलल बा तो हमने टारगेट कह ला सर जो एगो निमेरो मिल रहे तो जस्ती हो व्हीकिल के टारगेट कह ला सर तो कॉन्ट्रोमोशन मिला सर ऐसे
1: बराबर थी अब ये सापमों के पोल्यूशन सुनो मतलब उसके कॉन्ट्रावेंशन के जुर्माना
0: 10,000 वो लोग में सांस में मोर्टालिटी वाला जाना सांस में रह के वो लोग के नहीं सके इनसे जनरल पब्लिक के डेंस करे
1: और बेटा वो लोग के कॉम्पिटिशन हुआ कब कब रात के भी होला तो इमें भी फ्रांस वाले पारे हुए
0: पारे हाँ तो हमने क्रैकडाउन ऑपरेशन है ला में ढेर कर्मचारी लोग जो पुलिस के बाद एस एस यू लोग हमने के डिविजनल सब इन्वॉल्व हो जा देखा कब वो गाली होला तो इसने इसने मशीन देखा तो टपास गए ला इकर में तो एगो ऑपरेशन ऑर्डर निकले ला एगो डिविजन में जहाँ पर हो तो वहाँ पर ये सब क्रैकडाउन ऑपरेशन होला तो कॉन्ट्रोवर्शन ले बढ़ गया और हमने एगो फासों के गला से कि ये सब जिमिनी हुई और जिमिनी होता सब तो सब बोले
1: और ट्रंप ट्रंप के इस्तेमाल के बारे में कोई कानून बा
0: हाँ ट्रंप के कानून कैसे बोल रहा उसका जगह है जहाँ पर नहीं चाहे ट्रंप पे करे और कोई है अपन देख बता मल्टी हो मल्टी होन डालेगा जिफिलों का ये कि ट्रंप रहला जब ट्रंप ही कर बट जिफिलों सॉन्ग करी हम सब दुआ नहीं ये वो कॉन्ट्रोवर्शन है हाउ जो लिब डिफरेंट प्लास में कैसे लिकुल लगे लाकू लगे लोपिटल है सब प्लास में कानून बोला कि है सब प्लास में ही चाहिए ट्रंप ही करे देख बा पानों डाल बा नो होनिंग ये सब तक कानून में है जब जब तू अपन लाइसेंस भी नहीं कर बट देख बा ये सब है तो मागे कि है सब है पढ़ के गलवन जा तो देख बा टोनों पर है सब करे लग जा लोग हमने है ऐसा जो लेकिन बा हमें अपन बगल से जितना सकी ला सके जो कोशिश करे ऐसा हमने कही ला सके
1: अच्छा कैसे तय कर बा कि एगो गाड़ी में एगो व्यक्ति बहुत जोर से है या हद से ज्यादा वो लोग अपन ला म्यूजिक डाल ले बात कैसे आप लोग की जाने ला जाइए कर बार पर
0: देखा हमने तो ऑथर नहीं सर ला पुलिस टालेर कैसे बोली हमने के वो कानून है कंट्रोल फॉर नॉइज रेगुलेशन तो कंट्रोल फॉर नॉइज रेगुलेशन में चार गो एलेमो है एगो बोला कि और जो इंटेंसिटी जो एटोसिटी बा जो तापास बा कि कितना बा कैसन बासे ओनली इंटेंसिटी ऑफ द नॉइज एज परसीव बाय द ईयर तो वो हमने के ला पुलिस के कान से देखो से एटोसिटी कितना बा
1: बढ़िया बा कितना
0: ज्यादा जोर बा फॉर एग्जाम्पल एगो डिस्टेंस में से 50 मीटर से 100 मीटर से सुना था और नॉइज बा टापास बा पर सुना था जैसे जैसे आप खुशी हो रही सर एटोसिटी मोटी हो ली जाता फिनाल में जब जगह हवा में जहाँ गैली से जहाँ पर लुटुआ में से लामजिकवा खिलाता तो वहाँ ढेर बहुत जोर से वाह तो है इसे हमने इनोसिफिक ऐसा कि है नोजवा ढेर फोबा और ढेर एलिमो वा चिकेला खिला सा कि कौन ला पाही बा कई गो ला पाही डलेबा कैसे कोई आदमी डलेबा कानो बास 10 गो लाउड स्पीकर

0: leba da isab ego element la cour katin ki does go speaker dalita uta kaske na baji ar tala deke ki habitation ba kine ke se interference ba ego jaga me wala interference ki public loke deranje karta kine te normal ego ego l'exemple da ki ego sont la ville mais dans les langues la musique te uta normalement deranje karta bola me wo me kat même se dalba te bola me wo me dher ko ja ke la musique khele la dher zor se हाई फासो में हमी सब इधर से फिर कैसे हमी के लोग के ऐसा हाई लालू हवा हमने दापे समान हाई किसी बदला थिया जो बा हाई चार गो एलिमेंट वाबा हाई से हमने पूर्वी के लिए किस वापन
1: तो ऐसा निस्तिति में जब लापुली जाया या लोग की मतलब मना नहीं कर बोले लंच इस सब नहीं चाहिए तो कैसे कौन कौन रेस्पॉन्स रोला
0: देखा ढेर कोई सुनेला लापुलिस के बोला सा कि जिमिनिया करेंगे हमने नहीं बोला सा कि तय कर देखे नेट
1: Diminuer
0: que dès que j'ai bloqué là qui est au niveau que c'est pas raisonnable bas de ami ou le contre mon champ là ça fait alors ou raisonnable mais ou c'est réel là ça nous c'est négé là ça hop quoi il a ou n'est pas négatif lui quoi il a n'est ce que là de seul d'absence moi c'était des fans là de là mon public que j'en ai que j'étais qui ami ça comme ça fans ça que deux là ça comme ça contre mon champ là ok je n'ai pas n'est carré t'as ou que par là ओके सकब से हमें स्टेशन लाने ओकर नेम एड्रेस सकब से आर्सर्टेन करे जिस सकब ओकर डेनियर रिकू सिक मजा नहीं उ एक्सेप्टेबल रहता सकब से वो लापारिवे ओकर निकाल दे उमिसे सकब से सेजी कर दे कैसे बजाला सेजी लालवा में हमने किया ये वो पब्लिक प्लेस में रहे तब सकब से लापाराई सेजी करके ओके एग्जिबिट निकाल रखे के तब लाकू में जब केस हुआ जब फिनालिजे हो जाए तब ओकर
1: लापारिवे तो सब इंस्पेक्टर जी अगर एगो व्यक्ति फोन करके बोली कि ओकर पड़ोसी के जो एनिमल से संबंध है कुत्ता बहुत भोंकता कि परेशान करता तो आप लोग कैसे सुलझावे लाई पर
0: हाँ देखा ई लालवा में है कैसे ताले बोलिए हमने के कंट्रोल ऑफ नॉइज रेगुलेशन में एगो सेक्शन है यहाँ पर बोला ला कि एगो व्यक्ति के कोनो भी एनिमल नहीं रखे के ऐसा कि वो डेरांजे करे कैसे कुत्ता बाटे ढेर भोंकी डॉग बॉकिंग्स हो रहा था तो खाली में एगो कंप्लेंट गई देखे तो जब गई नहीं सत हमने दूर ही में वह घर पहला को जाके घर आइडेंटिफाई कर ले जा कहाँ पर से ऐसा नहीं हुआ मुकेला एगो 50 मिनट में आ गए थे ओके सुना था ऐसा तो देखा जैसे कि पुनः ये चिट्टू ना कोई पासे होता कोई नहीं तो कुछ नहीं मैं वो कुटवा भोंकते बा 15 मिनट तुम्हारा लिसा वो भोंकते हुए बा सौ कैन रिजन उठा कैसे बेला भोंकते रहा जब फिर ही गए सौ वहाँ पर तो भोंकते हुआ तो वाजें जो कंप्लेन कर लो कुछ में रहला तो ये आधा घंटा पुनः जीतू भोंकते रही था तो
1: नहीं
0: छपा ना तो हमने के लालवा हाँ जे वो एनिमल वो जब अननेसेसरी ऐसे बॉकिंग रहला तो जो व्यक्ति हुआ के
1: कंप्लेन
0: करता उसकी एगो डिक्लेरेशन करे एगो स्टेटमेंट दे तो हमने जाके वहाँ पर वो देखे अब सर इडेंटिफाई कर सर इसकी ये प्रॉब्लम हो बा तो हमने सर कब सर ओके कानून ओके जैसे बदला वो लालोवा में ओके ओके लाकू भी लाकरे तो ये कानून में है हमने के आर कारी ते कंप्लेंट कोई ता कंप्लेंट कर ला कैसे चर्पिंग ऑफ बर्ड्स कोई है लिलवाज कर ला जुआसो कैसे बदला ठीक है डिफरेंट कारी कैसे टूटा बा महीना ऐसा बात ही कर लन सा तो वो लोग ढेर मना एगो काजुट में डाले रह लन सा ना तो वो एगो सेटन ले में नहीं खाई के डिलीवर बटा दिख बटा तबाज गया ला तो ऐसा भी कॉम्प्लेट मिला
1: अच्छा
0: तो से मॉड हमने जाए ला सा तो सेंसिटाइजेशन जस्ती के ला सा तो से मॉड मिनिस्टर के सब ले जाए ला सा ऐसे मिनिस्टर बाते आसंते के बा अग्रो बा ऐसे जो जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व से के ला हुई में तो वो लोग के भी हमने लेके जाए ला सा वहाँ पर वो साइड विजिट कर सा जॉइंट तो एगो सोल्यूशन खोज ला सा जे रही कोनो ऑफेंस डिस्क्लोज हुई तो बराबर ओके लाकू भी दाखिल सा जब नहीं रहे तब हमने कंडीशन डाली ला सा मिनिस्टर कंडीशन डाली कि देखा ऐसे रखा जब मैं प्रॉब्लम हुआ जैसे कैसे बता सके रेजू दें हमने भर सक खोज ला सके एक बार मेजर देखे कि बार अभी पेट में जल बिला सा कि सोल्यूशन देखा सा एक प्रॉब्लम के भर सक सोल्यूशन खोज ला सा कोई प्रॉब्लम के
1: मतलब हर तरह की शिकायत रहे ला ना कि खाली लुट्टो गाड़ी के घर में भी जैसे कुत्ता जैसे एनिमल
0: सब
1: रहे ला
0: बर्ड्स भी हाँ ऐसा भी एगो तो हमने के कंप्लेंट ऐसा भी मिल रहा सकब हाँ से कि ओकर मुर्गा जब भोंकेला हाउ के भी कंप्लेंट कर जा कि सुबह हर वक्त mudah bang bang kita okay
1: dapat
0: dapat jadi hari ini tersinggung sensitasi

0: शंका से करी वो गवाटा वो काम मना पोगे कि दसन दसन भी कंप्लीट मिले लामनी के।
1: अच्छा सब इंस्पेक्टर जी हमनी के समंदर में बहुत बात हो गजा प्लेजर बोट्स

0: पुलिसले भइरहनमा इमेबी इन्टरभिन गरिला छ गर्नन्छ
1: हामीले इन्टरभिन एक्सन कम्प्लेन मिलेल हामीले के जम बुझ हामी जन पुलिस नभिरहनमा आजियालाईमा एकैसा लोकल पुलिस बा उभी आजिया होला नेशनल कोस्ट गार्ड भी आजिया होला मे हाई बन हाई कावनमा हामी बोट्स व्हीकल मे नै ढाइला छ बोट्स ला कोस व्हीकल मे नै ह फिक्स पेनल्टी नै दिला छ काउला देखा काहे होला हिसाब
0: सी समंदर में बचे कोस गॉड जसी इंटरव्यू करी ले हां
1: ठीक कोई जाला ना अल्ट्रा रिलैक्स हो जाला कटामा में जियन से द फाइनल में जब रेटिनो इला गन से तो ला म्यूजिक द बो में आवेन से ठीक कॉम्प्लेन मिला आवेन से द बो ला में मैं यहां पर हैबिटेंट लोग बा यहां पिकनिकर्स लोग बा वहां ढेर कस के ला म्यूजिक आवेन से धनी कॉम्प्लेन मिला तो हमने सुला लवाला हई ला लवा में कंट्रोल ऑफ नॉइज रेगुलेशन से मैं फिक्स पेनल्टी नहीं ले ला सर ओके कंट्रोवर्शन लेके ओके ला कॉपी ला गिरा सर तो कल भी हुआ जब लाखों में जाए तो माजिस्ता ओके हो जिसमें लुपी लमानवा दे सिनेमा है के प्रोसीजर दूसरा बस कि हमने कानून व्हीकल्स और बिल्डिंग्स बटियाला बोट्स नहीं बटियाला तो खातिन नॉर्मल प्रोसीजर कैसे बोला हमने नॉर्मल कॉन्ट्रोवर्शन ले ला सर लीव में लिख के ओके बिदा कैसे लाखों
0: तो उन्हें पर
1: हमने तो हमने इंटरव्यू किया सर को नेशनल कोस्ट गार्ड भी हमने के कुल में दिवला और लोकल पुलिस भी कुल में दिवला हम तो मांग करते कि जैब लामे जहाँ पर नाम से करके हुआ एगो लामिक डलबा एगो टों की सुना में डाला डाला जमे कोई के नहीं देखों से करी नहीं देखों से करी तो हम इंटरव्यू नहीं कर सर टोरू नहीं जाके लामान पे करके ना ऐसे
0: तथा बोला जो व्यक्ति उल्लंघन करेला तो अगर एफ पी एन यानी कि फिक्स पेनल्टी नोटिस ओके देवल चला तो अगर वो व्यक्ति मतलब जुर्माना सही वक्त समय पर अपन नहीं मतलब चुका पाए रहा तो कौन कदम ला पुलिस से मिला जैसे पेटीएन जू के बोला
1: देखा एगो वो व्यक्ति ला म्यूजिक ढेर जोर से डल दे तो हमने ओके फिक्स पेनल्टी दे सर तो हमने के ला पुलिस के रहला वेंटीएन जू देगे वेंटीएन जू में देगा सर तो दुनजात से देगा सर तो वेंटीएन जू ओके रहला पे करेगी जो आज वो कॉन्ट्रोवर्शन रिलीज सर लेजिस के ओके सर्वे करे सर तो लेजिस से वेंटीएन जू गन के ओके देगा सर पे करेगी जो नहीं पे कर ला तो हमने ओके
0: जैसे
1: लॉकेट ला सर ओके बुलाए ला सर एगो लॉकेट देव सर पूछा जा काहे नहीं पे कर ले बा तो वो भरसक बोला कि पैसा नहीं रहला स्वाप बोला पापिये भी लागल बा वो लोग रिजन देवे लन जा तो वो रिजन है डाल के उनके लाखों भी लागे ला जा जबकि स्वा जला लाखों जला तो हुआ माजिस्ता कैसे बोली कि ओकर लालवा में लिखल कि ओके मोज एंड स्काइस है जो तीन हला से ज्यादा वो जुर्माना पे करी तो लालवा तो सेवे बा 10,000 नहीं पे कर ला अभी तो लाखों में जाके 5 में रुपये करेंगे बहुत करबा ना हम तो मांग करती कि देखा एगो लालवा ऐसा सेवे बा भर सक जितना सकब अपन ला म्यूजिक डाला नहीं बोल रही कि ला म्यूजिक एगो जाफे ऐप उठो अच्छा है नहीं बोल रही कि नहीं अच्छा मैं सिर्फ चाहना गुटो कि सुना अपन खाली ला म्यूजिक डाला
0: तब त्योहार रहेला कबो शादी सामाजिक कार्यक्रम भी होला तो ये कौन कौन बात चुन मनी जो नागरिक चुन है उन लोग के परछाई ध्यान देगी
1: हाँ देखा लालवावा था यहाँ पर हमने के कॉम्प्लेन मिला नॉइज फ्रॉम इसे बा प्लेसेस ऑफ वर्शिप
0: ये वहाँ पर भी
1: यहाँ पर पूजा कैसे ले बा मंदिर में ले बा आजान के जो ले है मुस्के के अब ले बा ऐसे बोल जाला असेंबली डीजे वो भी एगो प्रॉब्लम हमने के कभी ढेर क्रिए करता एक बताओ लोग लाम म्यूजिक ढेर खेलन सा एस सीमो से भी खेलन सा तो हाई तो बहुत सेंसिटिव इश्यू है कैसे बोल जाला हमने जाके ज्यादा तक सेंसिटाइजेशन खेला सा सेंसिटाइजेशन कह रहा सर कि ला म्यूजिक नहीं खिला के ढेर जोर से एगो टों के जुनाब में डाले के तो हाई जब इशू आ रहा था इला में जो मिनिस्टर बाटे ला सौते वो लोग के ले जाएगा सर जिससे काउंसिल के भी ले जाएगा सर काहे वो लोग पेमी दे बन सर जाना ना एगो प्लेस ऑफ वर्शिप के एगो जाना एगो परमिट जिससे काउंसिल से बोला सर बिल्डिंग लैंड यूज परमिट वो पेमी हुआ चाहना रहे के तब सक वहाँ पर पूजा करे तब जब नहीं रहला तो जिससे काउंसिल वहाँ पर लोग स्टॉप नोटिस सकी दे दें मिनिस्टर ला सौते अपन ला पाके ले जाके देखे कितना डेसिबल बा कि इसकी 65 डेसिबल से जस्ट ज्यादा बा तो वो लोग के बोला बेसे करके तो कॉन्जिशन डाल सर तो ऐसे हाई सब 21 सोना टन के समय

0: इस प्रोग्राम में आप लोगों का दोबारा स्वागत हम करते हैं। विषय है नॉइज पोल्यूशन। हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सब इंस्पेक्टर ओम दत्त सीताराम जी, जो पुलिस से लॉन्विरोनमेंट से आए हुए हैं। और अभी सब इंस्पेक्टर जी, अभी जब कंस्ट्रक्शन होला देखा चला, इनमें भी कोनो शिकायत आवेला कि हम बहुत ढेर तपाबा कबो कबो, मतलब वीकेंड में भी ऐसा, जैसे जिमांश के दिन होला था
1: ऐसा भी हमने के कॉम्प्लेट मिला कॉन्स्ट्रक्शन से। क्या होला कि ज़्यादा तक हमने के स्वा ले अप्रैल ले काम कर ला, कोई रात के काम कर ला कॉन्स्ट्रक्शन कर ला, कोई हा वीकेंड में सेटू जिमांश के जब मजबूते आदमी काम कर पोसी कर ला, तो हमने ऐसा कॉम्प्लेट बना कि कॉन्स्ट्रक्शन होता टपाज होता। तो ऐसा काम में हमने जाएला सर, तब हर सक जाके सेंसिटाइजेशन कर ला सर बटियाला, जबकि देखा जब जितना सक कि टेल दे ऐसे टेल दे काम कर रहा है, जिमोस के नहीं काम कर रहा है, जमीन नहीं देहों से कब वाजीनास के देखा वो लोग के तक वो पहमी मिला रहेगा जिसे काउंसिल से कि ओके वो कॉन्स्टिट्यूशन रहा करेंगे वो पहमी बा सकी करे मैं सिर्मा वो लोग के बाहर लोग के काम करेंगे हम। तो हमने बोला से काम सकबा करे मैं सिर्मा वॉकिंग डेज में काम कर रहा और ट्वीटेज का काट रहा काम कर रहा, रात के नहीं काम कर रहा, जिमोस के नहीं काम कर रहा। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेन भी मिला कैसे जिसे भी है देखा तो कहूँ पर वो जो मोटो से अपन घुस फोड़े ला था, हाई सब भी काम कर उ बहुत दूर ले सुनाना नहीं टपास नोज एगो नोज पोल्यूशन में लिखाना। तो ये लोग के भी हमने बोला जा कि काम करवा तो एगो सेटन ले में काम कर, जिस वीकडेज में काम कर ऑट वीकडेज का काट रहे कानून में नहीं है, मैसे में हमने सेंसिटाइजेशन कर ला सर बोला सर कि ऐसे करवा तो कंप्लेन में सगरो चलानी के ढले को बैलेंस करेंगे। हमने पब्लिको नहीं सूफे हुए न वो लोगों सूफे हुए, वो लोग काम करता यू तो कोई के चोरी नहीं करता ना।
0: तो लोग के जैसे जैसे मौका मिले ला रविवार के दिन तो से ऐसे करे ला तो के ऑटो नहीं
1: नहीं तो जब ऐसे करियन जा जब पहुंचनी होला तो हमने जो मिनिस्टर कौंसिल है कैसे जिससे काउंसिल बा मिनिस्टर ला सौंटे बा मिनिस्टर एनवायरमेंट के सबके वो बोला के जो सर्विस के ला सा तब नोटिस दे ला सा कि तेल जो नहीं काम करे के जो कैसे बोल हम ये कानून जो बा एनवायरमेंट एक्ट में जब हम ये नोटिस दे ला सा बोल सर नहीं करके तो वो लालवा उसे करी तो जुर्माना से कि 100,000 तक हो जाए। हमने के मिनिस्टर बा जो एक्शन लेके हमने के सब का ये कानून यहाँ बा तो हमने सेवी सकब से करे अपन कानून अब जो नहीं अबाइड करी तो वो तो वो लोग के तो जुर्माना वहाँ रही पे करे के वो लोग के सकब से लापारी भी सहजी कर दी वो लोग के कानून वहाँ में ऐसे है कि वो कॉन्टिन्यूस एगो न्यूजेंस करता है वो पोल्यूशन करता तो सकब को लापारी भी सहजी करे।
0: अच्छा जैसे अभी तबिया बोला कि रेस्टोरेंट में जाके जब कनोटा पाजे है लास पा एको बिल्डिंग एको जहाँ वर्कशॉप मेटल इंडस्ट्री सब, तो जब एको बंगालो जो प्राइवेट है उनमें सब आप लोग जाके सपा

0: वहाँ तो नॉइस टपास होता तो इमें आग लोग भी सब बचाए हुआ दिखे इस बाई डिवीजन ले के
1: हाँ जब से देखे नहीं जैसे इसे कॉम्प्लेंट में देखा प्राइवेट ने बा पब्लिक है तो हूँ मेरी हमने जब से कॉम्प्लेंट देखे प्राइवेट में एगो प्रॉब्लम हुआ और पब्लिक देखा पब्लिक में हेल के सकब से एगो प्रॉब्लम होता जे देखा कि नुजोंसवा नई सोल्यूशन नहीं मिला था वो कंटिन्यू होता तो हमने के ला पुलिस के कॉन्टरवेंशन प्लीज हमने के एगो एगो लालवा बोला कि सकब से लोग ला पारी सेजी कर दे पस कि ला पारी ना तो उठा नुजोंसवा बा वो सकब से सेजी कर दे हाउ पब्लिक प्लेस में है कैसे वो रेस्टोरेंट में रही से पाए वो होटल में प्राइवेट में नहीं प्राइवेट में नहीं सकब से ले हम इस सकब से जाके सीजी करें वो सब एगो डेनिया एगो बोले सकब से एगो माजिस्ट्रेट लगे जाके एगो वारंट सीन करेंगे जब वारंट वहाँ सीन करा दीजिए बेटा तब हो वारंट वहाँ रख लेर हम जा जो इन दिन हम की कंप्लेंट करेंगे हो वारंट ने कही जब से घर में ही जब से बोले सर तो है जाके प्रॉब्लम नहीं रही होता लापारी उठा के आने से लापारी यान देखे लॉकेट कर के जब लाकू जाए तब हुआ माजिस्ट्रेट डिसीडे करी लापारी रिटूने करल जाए कि नहीं रिटूने करल जाए तो है तो एगो प्रॉब्लम माना एगो समस्या है जो पब्लिक जो ला म्यूजिक ढेर रहा था तो हमने के इतना लालवा हुआ तो हमने भर सक मिनिमम फोर्स कैसे बदला सही के लासा हमने शुरू से सेंसिटाइजेशन के लासा नहीं कॉम्पोन होता कॉन्ट्रोमोशन लासा कॉन्ट्रोमोशन नहीं मिली तो ओकल लाहो आर लालवा बा तो हाउ सब कानून सब सही करे तो हमने नहीं खुशी लासा कि मैक्सिमम फोर्स में आके हमने मिनिमम फोर्स में खोज ला सके प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए
0: जब वारंट की बात बोला अभी तो ऐसे ऐसे देख के डर लग जाला पा गो वारंट हाँ। बाकी को मजा से पा ओके चाहे एगो मतलब डिफिसिल बा कठिन बा कैसे कौन सी बोल पा
1: नहीं तो देखा जब औसन कार रही परिला औसन कार जब ओब्लिजे करी तोड़ा लेके तो पढ़ी लेके ना एगो प्लस में जब प्रॉब्लम नहीं है रिजोल्व होता तो हमने चाहला एगो सोल्यूशन खोज के ना तो यही हमने के डेनियर रिकू है लॉ में है ना कि सकब से वारंट लेके चाहे ओकर कॉन्ट्रोवर्शन भी लेप ओकर लापारी भी सेजी कर लेप तब लापारी से पास एक बरिस दो बरिस दो तीन साल के बाद
0: सेजी
1: हाँ सेजी रही हम ही लाके रख रही जब ले पूछिए ना कैसे लाकू में यही सब जब का ओब्लीज जब बिन नेसेसेयर बा सकब से
0: वारंट किस काम अभी ला
1: ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है देखा ढेर बंगालो बा देखा कैसे वेस्टर्न में देखा फ्लिक ऑन फ्लैक नॉर्थर्न में देखा गांव बे पेरे बे हई बगल हई सब जगह में ऐसा प्रॉब्लम होला देखा जो व्यक्ति बा ओपन बासी मॉलवे कर दे तो हर सेमेन के हर रोज देखा ला म्यूजिक बा तो जो रेजिडेंट वहाँ हमारा रहा था रोज ओके पहला रोज सुविधा करे के ट्यूटा एक सेमेन में एक बरिस में एक हाथ टू जाता तो कल एगो दूसर जाता परसों एगो दूसर जाता तो जिफे वो आदमी जाता तो जिफे वो आदमी तफाज रोज करता तो जी के जो वहाँ दमिया रहा था ओके पर सुबिया हो के तो ऑप्शन प्लस में जगह में जेब तो जिन आदमी नहीं समझी ठंड के पढ़ेला ऐसा लालवा सब अप्लाई करेगी
0: और कबो कबो जब पड़ोसी लोग टेलीफोन करे ना जबकि में तपास मतलब जान जाए मतलब हमारे पड़ोसी में ओकर हियाँ बहुत ढेर तपास होता है म्यूजिक कस के जा रहे थे तो कॉम्प्लेंट कर दे वो तो प्रॉब्लम नहीं हुई हो पड़ोसी अगर कॉम्प्लेंट कर
1: नहीं देखा जब कॉम्प्लेंट नहीं देखा कोई है अपन नाम बोलेगा
0: हाँ
1: वो खुशी ला बोले के कि हम है कॉम्प्लेंट करता आप कुछ तो वो नहीं सकता सही ढेर कॉम्प्लेंट इतना नहीं होता कि वो अपन नाम देवे ला वो एक्सेप्टिव ला लाकू जाए कि तो कोई है अनोनिम रखेला वो नहीं खुजला प्रॉब्लम गाय अथी के अपन अपन वासन संगे प्रॉब्लम हुई के नहीं खुजला तो वो लोग के हमने अनोनिम रखेला सा हमने जो ला पुलिस में अभियान में और लोकल पुलिस जे भी बा हमने बोला सा कि हमने कब्बो कॉम्प्लेनेट जो जो नदमिया जो कॉम्प्लेंट कर लग वो नाम नाम नहीं बोला सा नहीं जीवी के कहला सा काहे जे नाम बोल दे सा जैसे ला पुलिस वहाँ से जाए तो देख बट झगड़ा लगी ऐसे ऐसे भी हो बा ला म्यूजिक खातिन जान भी चल गा
0: अच्छा होता कि अनोनिम रही
1: अनोनिम रही नहीं बोला और ला पुलिस से हम तो हमें कितना लिखित नहीं है बोला और हम मांग कर कि सब ला पुलिस के कोई के नहीं बोले के ऐसा जब कंप्लेंट मिली कि नमो नहीं चला पूछे खाली जैसे गोली मोह कॉन्टैक्ट ले ला हाँ कहाँ पर प्रॉब्लम बा स्प्लीके कर दे ओकर गोली मोह कॉन्टैक्ट ले ला जाके ओकर कंप्लेंट देखा नहीं बोला हुआ कि कंप्लेंट कर देबा नमिया पूछबो करी तब बोला देखा अभी तो यहाँ के कर लेगा जब मैं ऊ नहीं जाने के कंप्लेंट कर लेगा जब मैं ऊ नहीं जाए कोई से झगड़ा नहीं करे कोई लामेर नहीं करे
0: अच्छा अंत में हमारे श्रोता के कुछ हमारे क्या संदेश तक बदी हुई
1: देखा हमार हम देखा हम तो बोलते कि जहाँ हमने के

0: हमारे के वाजीनाज के रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट हमारे के, हमने अपन लालवा के रिस्पेक्ट करी सर, लालवा इसी बात है, हमने अपन लालवा के नहीं सबसे उल्लंघन करे, हमने अपन नव जीवन में के रिस्पेक्ट करी सर, और हम मांगते करती कि तो लगे गो कोनो फेत बा तो अपन जो वाजे पा वो के चाहना बोल दे के कि वाजीनाज के गेठा हमारा लगे एगो फेत बा सके 10 बजे रात लग जाए जब वो लोग को पेपा के रही ऐसा बोला कैसे।
1: अच्छा जाते जाते जब एगो फेत रहेला तो कितने बजे मतलब समय होला चाहे ना कोई
0: समय तो नहीं है से समय नहीं है तो भर सक जब एगो कंप्लेंट जान तो बात है भर सक वो 10 बजे इधर ही रात के
1: ओके मतलब अच्छा रही एक मजा
0: तू अपन प्रोग्राम सब कौन करिया करा से मैं लामजिक नहीं डाला नहीं तो एगो कूल म्यूजिक डाला जो कोई के नहीं दे से करा हम कूल म्यूजिक कैसे बजला कैसे तू अपन घर में डाल
1: इतना ही लिमिट
0: सीमित जिसमें जिसमें सीमा पर जब निकल के जब सुनब तो थोड़ा नहीं सुनाई ऐसे रही भर तीज अभी बजल लालवा में नहीं बोलल कि कितना बखत खेल ला म्यूजिक सब वैनकाचे वैनका खिलाई मैं ओकर डरला टोवा चला के सुनाब रह गए कैसे अपन घर में डरला सीमा में निकलला जैसे देख गए तो वहाँ पर नहीं सुनाता तो सब ठीक पा अब ढेर दूर लोग सुनाता था नहीं छपा तो ये हम मांग करती कि हाँ आज वो ज़्यादा मांग करती कि पागल लोग के चाह अपन लड़का लोग एजी के करेंगे कैसे कानो बास बा वो लोग अपन लड़का के कुछ नहीं बोल जान से बड़का बड़का मार बुक्स में तो हम तो जाए लेकिन चाहला हाई हॉप चिल जाए कि क्या करा रोन जा बड़का कानो ब्लास्ट डाल रोन सा कुछ नहीं उम्र से बट डाले अब जो लड़का लोग अपन मोटरसाइकिल के मुजिफिये कराता ले साफ मो पाहो कि चाहला लोग से बट जाए कि ऐसा भी जिज्ञासा नहीं से
1: तो आज की चर्चा इस प्रोग्राम का समय यही पे पूरा होता है। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से अवश्य लाभ हुआ होगा। तो आप सबों के ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद और एक और प्रोग्राम तक अनुमति दीजिए।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. Musty.
1: ये सुनते हैं समाचार आशिता के साथ। नमस्कार।
2: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था अभी मजबूत बनी हुई है, लेकिन उसे लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और दबाव में आए पर्यटन क्षेत्र ने आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस सप्ताह मॉरिशस के साथ अपनी वार्षिक समीक्षा पूरी की। इस दौरान IMF ने सार्वजनिक ऋण के ऊंचे स्तर को लेकर चेतावनी दी है, जो जून 2025 के अंत तक GDP का 86% पहुंच गया था। साथ ही सरकार के वित्त पर बढ़ते दबाव को लेकर भी चिंता जताई गई है। IMF ने पेंशन व्यवस्था से जुड़े सुधारों सहित सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधारों की सराहना की। हालांकि संस्था ने टिकाव आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बजटीय संतुलन सुधारने और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। लैंगिक समानता एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जूनियर अचीवमेंट मस्कारेंस के बीच आज कुदों में गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की क्षमताओं को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर उपप्रधान एवं संबंधित मंत्री अगयाना वोमाखी ने इस साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करेगी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आप्रवासी घाट एक महत्वपूर्ण वर्षगांठ मना रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मॉरिशस में गिरमिटिया प्रथा के इतिहास के प्रतीक इस महत्वपूर्ण स्मारक की विरासत को संरक्षित करने के महत्व को एक बार फिर याद दिलाती है। आप्रवासी घाट देश के इतिहास और उन हजारों श्रमिकों की स्मृतियों से जुड़ा एक प्रमुख स्थल है, जिन्होंने अनुबंधित श्रम व्यवस्था के तहत मॉरिशस का रुख किया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ते हुए बात करें हम टीकाकरण के क्षेत्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने एक मिश्रित तस्वीर पेश की है, जहां वैश्विक स्तर पर टीकाकरण कवरेज में लगातार सुधार जारी है, वहीं अब भी लाखों बच्चे आवश्यक सुरक्षा से वंचित हैं या अपना पूरा टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं। संघर्ष, आबादी का विस्थापन और गरीबी जैसे कई कारण बच्चों के टीकाकरण अभियान के लिए चुनौती बनी हुए हैं। वहीं मॉरिशस में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़े देश में टीकाकरण की मजबूत स्थिति को भी दर्शाती है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
0: You're listening to RM3 Radio.

0: 4:13 हो चुके हैं। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो सभी को, मैं हूँ आपके साथ पूनम और आप सुन रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन। अगले वन आवर जो है 90s के वो खूबसूरत गीत जो मोहब्बत की खुशबू आज भी अपने साथ लिए हुए हैं। तो अगर आपने अपने किसी से प्यार किया है या आज भी किसी को अपने दिल में बसा कर बैठे हैं तो ये वन आवर आपके लिए ही है। यहाँ पर बातें होंगी मोहब्बत की। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250620 पर, और बताइए कैसा दिल का हाल है। तो चलिए दिल से मिले दिल, मिलाते हैं दिलों को।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: Testing 1 2.
2: Yeah. कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
0: RM3 Radio.

0: 4:29 हो चुके हैं दोस्तों, और आप सुन रहे थे अभी उदित नारायण की आवाज में मेरी सांसों में। कितना खूबसूरत गीत है। कहते हैं ना, जब किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो फिर दुनिया कम और वही एक इंसान ज्यादा नजर आने लगता है। शायद यही तो मोहब्बत का सबसे प्यारा एहसास है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस प्यारे से प्रोग्राम दिल से मिले दिल के साथ।
1: RM3 Radio.

0: 4:35 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ में दिल से मिले दिल। और ये प्रोग्राम इतना प्यारा ना क्योंकि यहाँ बातें होती है मोहब्बत और प्यार भरी वाली, जिसको सुनने के लिए पूरे दिन इंसान तरसता है, कहता है कि काश दो पल सिर्फ इंसान दो मीठी बोल बोल ले, तो दो मीठी बातें कर ले, तो ये प्रोग्राम उसी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए भाई, बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं, कुमार सानू हो या उदित नारायण, अभिजीत या कविता कृष्णमूर्ति, इनकी आवाज़ों में 90s को सिर्फ संगीत नहीं दिया बल्कि मोहब्बत को आवाज़ दी। और जब लता मंगेशकर जी जो कि 50 में मतलब 1950 से गा रहे थे, वो भी उन्हें मैच करते थे, और जब मैच करते थे तो बाकी सब तो रह जाते थे बहुत पीछे और लता जी चली जाती थी सबसे आगे।
1: RM3 Radio.

4:43 हो चुके हैं दोस्तों और आप न जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ यानी कि दिल से मिले दिल के साथ और मैं हूँ आपके साथ इस समय पूनम। प्यार में बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, बस छोटे छोटे पल होते हैं, साथ बैठना, बिना वजह हंसना, एक दूसरे की फिक्र करना, और यही छोटे पल सालों बाद भी याद आते हैं, चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और दिल को फिर से वही एहसास याद करा जाते हैं जो कि देखो याद है

0: तुमने, मैं वहाँ तुम्हें लेके गया था और हमने ये बातें की थी। ये बातें तभी होती हैं जब आपने कुछ समय किसी के साथ बिताया होता है। बहुत ही प्यारे से पल होते हैं, कभी कभी खट्टे और कभी मीठे, पर वो यादें जो हमेशा हैं वो ताज़ा बनी रहती है। तो अपने इस यादों को ताज़ा करते रहिए, इंजॉय करते रहिए। ये गाना जो चलेगा सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, दिल से मूवी से, बहुत ही प्यारा गाना है, इसको इंजॉय कीजिएगा।
1: RM3 Radio.

0: दोस्तों इसी के साथ दिल से मिले दिल का आज का सफर यहीं तक। उम्मीद है 90s के इन प्यार भरे गीतों ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा, और अगर कोई खास आज भी आपके दिल में बसा है तो उसकी मुस्कान हमेशा सलामत रहे। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मुलाकात होगी RM3 पर। तब तक मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए। नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। और अब मैं आपको इतना ही कहूँगी कि आराम से अपना रेस्ट कीजिएगा, खाइएगा पीजिएगा। मेरे बाद आपको साथ मिलेगा संजय जी का, उनका साथ भी ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: Yo, yo, hello. Testing. One, two. Yeah.
2: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: रसधारा
1: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः। राम रसधारा के सभी श्रोता भाई भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सिया राम, जय जय हनुमान। आप सबों को रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हार्दिक अभिवादन है। आज हमारे स्टूडियो में 5 बहनें उपस्थित हैं जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। माला जी, शिवानी जी, सीता जी, देवी करानी जी और सुनीता जी, जय सिया राम,
2: जय सिया राम।
1: आज के इस रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री राम जी की स्तुति और श्री हनुमान जी की स्तुति के साथ। जय सिया राम,
2: जय सिया राम।

0: रसधारा।
1: जय सिया राम देवी और सज्जनों, आज के प्रोग्राम के अंतर्गत हम रसपान करेंगे शबरी उद्धार प्रसंग का। शबरी प्रसंग जो आरण्यकांड दोहा 34 पर आता है। अभी के लिए स्टूडियो में उपस्थित बहनों से सुनते हैं सुमिरनी। जय सिया राम।
2: जय सिया राम।
3: जो

0: रामरसधारा।
1: जय सियाराम श्रोताओ, पिछले गुरुवार को हमने रामरसधारा के अंतर्गत अहिल्या उद्धार प्रसंग आपके समक्ष पेश किया था। आज हम तुलसीकृत रामचरितमानस का एक और अति मनमोहक प्रसंग पेश करने वाले हैं, माता शबरी उद्धार प्रसंग। ये प्रसंग रामचरितमानस के अरण्य कांड में आता है, जब सीता मैया के हरण के बाद उनकी खोज में व्याकुल श्री राम जी और भ्राता लक्ष्मण मातंग ऋषि के आश्रम के नजदीक से गुजरते हैं। श्रोताओं, अपने नरलीला अवतार के अंतर्गत श्री राम जी ने अनेक महिलाओं का उद्धार किया। राक्षसी तारका का वध करने से पहले उनको भरपूर मौका दिया सुधरने को। गौतम ऋषि के आश्रम में श्री राम जी ने समाज द्वारा कलंकित ग्रसित माता अहिल्या का उद्धार किया, और अब माता शबरी के इस प्रसंग में श्री राम जी जात पात से ऊपर उठकर अपनी उदारता का एक और प्रमाण दिखाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
2: जय सिया राम।

0: रसधारा।
1: सभी श्रोता भाई बहनों को एक बार फिर भाई संजय की ओर से जय सिया राम, जय जय हनुमान। राम रसधारा में आप सबों का हार्दिक अभिवादन है। चले हम आपको ले चलते हैं उस प्रसंग में जहां पर सदियों से प्रतीक्षा करने वाली माता शबरी के आश्रम में पधारते हैं प्रभु श्री राम और प्राता लक्ष्मण। जय जय सिया राम,
2: जय सिया राम।

0: जय सियाराम।
1: सर से चलो चन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बन माला, श्याम गौर सुंदर दहु भाई, सबरी परी चरण लपटाई, कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गौरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी उनको देखकर लिपट पड़ी। जय सियाराम,
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम।
1: प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लौ चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। श्री राम जी और ब्राता लक्ष्मण का दर्शन पाकर शबरी प्रेम में मगन हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही थी। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। जय सियाराम।
2: जय सियाराम।

0: जय सियाराम। कंड मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए आह, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंड मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। जय जय सियाराम,
1: जय सियाराम।

0: जय सिया राम
1: पानी जोरी आंगे भई ठारी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति भारी कहीं विधि अस्तुति करे तुम्हारी अधम जाति मैं जर मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर शबरी माता हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई प्रभु के प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत ही बढ़ गया। शबरी मैया ने कहा मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं मैं नीच जाति की और अत्यंत मूर बुद्धि की हूं। जय सियाराम
0: जय सियाराम।

0: सियाराम।
1: जय सियाराम। शबरी मैया कहती हैं, जो अधम से भी अधम हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी मैं पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूं। यहां पर जो श्री रघुनाथ जी कहते हैं, वो वैदिक सनातन धर्म की एक सर्वोत्तम सिद्धांत है। हे भामिनी, श्री राम जी माता शबरी को हे भामिनी कहकर संबोधित करते हैं। शबरी मैया को श्री राम जी भामिनी नाम से संबोधित करते हैं, जो मनमोहक हैं, जो अति खूबसूरत हैं, जिसकी एक अपनी विशेष आत्मिक आध्यात्मिक आकर्षण है, उसे भामिनी कहते हैं। ऐसे मैया शबरी को संबोधित करते हुए श्री राम जी कहते हैं, हे भाम

0: में नहीं, ये बात सुनो। मानव एक भगति कर नाता मैं तो केवल एक भक्ति की ही का संबंध मानता हूं, सिर्फ भक्ति का संबंध। इस संसार में हम जब आते हैं तो अनेक संबंध बना लेते हैं, माता पिता, बंधु सखा, बच्चे, हित मित्र, लेकिन एक संबंध जन्म से पहले जो होता है और मृत्यु के बाद भी, मृत्यु के उपरांत भी खत्म नहीं होता, वो है हमारे और प्रभु के बीच का संबंध, हमारे प्रभु और भक्त के बीच का नाता। और इस नाते, इस संबंध में ऊंच नीच, मूर्ख ज्ञानी, जात पात कुछ भी मायने नहीं रखता। जो कुछ मायने रखता है वो ये होता है कि प्रभु के प्रति हमारी भक्ति कितनी सच्ची, कितनी निस्वार्थ और प्रेम भाव से परिपूर्ण होती है। जय सियाराम,
1: जय सियाराम।

0: सियाराम।
1: जय सियाराम। जाति पाति कुल धर्म बराई, धनमल धनबल परिजन गुण चतुराई, भगनी हित नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखूं जैसा। शबरी मैया को संबोधित करते हुए श्री राम जी हम सबों को एक अनमोल संदेश सुनाते हैं। जाति पाति कुल धर्म बराई, धनम बल परिजन गुण चतुराई, अर्थात जाति पाति कुल धर्म बराई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। यानी कि ये सब कुछ हो, यानी कि ये सब कुछ हो, जो भी कुछ लाभ नहीं जब हृदय में भक्ति नहीं, ये सब कुछ लाभ नहीं जब तक हृदय में भक्ति नहीं। कबीरदास जी ने भी कुछ ऐसा ही सोच हमारे सामने रखा उनके दोहे में, पोटी पोटी जगमुआ पंडित भया न कोई, धाई अक्ष प्रेम का परहेस पंडित होई। प्रभु के प्रति हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, यही हमारी सबसे सुंदर आभूषण है, और ये आभूषण माता शबरी के भाव में हृदय में भरपूर है। जय सियाराम।
0: जय सियाराम।

0: इस योग्य समझा कि उनको नवधा भक्ति का पाठ सुनाया जाए। ये अपने आप में बहुत ही विचित्र है। भगवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश सुनाते हैं। मानस में श्री राम जी एक बार तो भरत जी को चित्रकूट में शासन का पाठ सुनाते हैं और फिर दूसरी बार यहाँ शबरी मैया को नवधा भक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं। तू सावधान हो कर सुन और मन में धारण कर। पहले भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। जय सियाराम।
1: जय सियाराम।

जय सिया राम गोर पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गन करही कपट तजि ज्ञान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करो। नवधा भक्ति का वर्णन दोनों मानस और श्रीमद् भगवतम में बहुत विस्तार रूप से किया गया है और इस पर हम एक पूरा राम रसधारा कार्यक्रम करेंगे। आज के लिए हम बस इस भक्ति को कि इस तीसरे रूप का बखान करते हैं। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। निष्काम भाव से गुरु की सेवा करना, ये भक्ति का तीसरा स्वरूप है। गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति में कोई अंतर नहीं होता। संत कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दउ खरे काकेला गो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी मास के 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस विषय को लेकर हम अपने आने वाले प्रसंगों में अवश्य बात करेंगे। जय सियाराम, जय जय हनुमान, जय गुरुदेव।

0: रसधारा।
1: जय सियाराम देवी और सज्जनों, राम रसधारा प्रोग्राम के जरिए हम अधिकतर लोगों को और खासकर नौजवानों को एक मंच प्रदान करना चाहते हैं, जहां पर वे आकर अपने श्री राम भक्ति और रामचरितमानस में अपनी रुचि को प्रदर्शित कर सकते। जो भी ग्रुप राम रसधारा में भाग लेना चाहते हैं वे हमें लिख भेज सकते हैं। हमारा पता है राम रसधारा, रेडियो ओरिएंटेड प्रोग्राम, MBC मोका।

0: रसधारा।
1: रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप सुन रहे हैं राम रसधारा। ये प्रोग्राम चलता है हर गुरुवार की शाम को। इस जुलाई मास के अंतर्गत ये प्रोग्राम एक घंटे का चलेगा, 5 से लेकर 6 बजे तक।

और हम इस आज के प्रोग्राम के अंत तक आ पहुँचे हैं। इसी के साथ ही आज का हमारा राम धरा ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। चलते चलते स्टूडियो में उपस्थित पांच बहनों को, महाराज जी को, शिवानी जी को, सीता जी को, देविका रानी जी को और सुनीता जी को कोटि कोटि धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। देवी और सज्जनों, अगले गुरुवार की शाम को फिर से मिलते हैं श्री राम जी के दरबार में। अंत में श्री रामायण आरती, फिर समाप्ति मंत्र और शांतिपाद चार बहनों के साथ। भाई संजय को आज्ञा दीजिए। जय सियाराम, जय जय हनुमान।

0: Potential suppliers, contractors, and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services, and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others, TV broadcasting equipment and accessories, including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website, mbc.mu, and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Office's website. Deadline for registration is
1: 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मॉरिशस की मजबूत अर्थव्यवस्था की सराहना करते हुए बढ़ते सार्वजनिक ऋण और वित्तीय दबावों को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। मॉरिशस में ईंधन आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक। देश के पास पेट्रोल डीजल का 18 दिनों और घरेलू गैस का 13 दिनों का भंडार उपलब्ध है। मॉरिशस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल बदलाव की दिशा में आगे बढ़ा। माइटी एआई समिट में प्रधानमंत्री ने वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी पहल की घोषणा की। मॉरिशस और अमरीका ने व्यापार, निवेश और अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के लिए नई साझेदारियों की संभावनाओं पर की अहम चर्चा। वैश्विक स्तर पर टीकाकरण में सुधार के बावजूद लाखों बच्चे अब भी सुरक्षा से वंचित। मॉरिशस में टीकाकरण कवरेज मजबूत। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की आराधना से जुड़ी पवित्र रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है भारत में।

इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन उसे लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और दबाव में आए पर्यटन क्षेत्र ने आर्थिक स्थिति पर असर डाला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस सप्ताह मॉरिशस के साथ अपनी वार्षिक समीक्षा पूरी की। इस दौरान IMF ने सार्वजनिक ऋण के ऊंचे स्तर को लेकर चेतावनी दी है, जो जून 2025 के अंत तक सफल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 86% पहुंच गया था। साथ ही सरकार के वित्त पर बढ़ते दबाव को लेकर भी चिंता जताई गई है। IMF ने पेंशन व्यवस्था से जुड़े सुधारों सहित सरकार द्वारा शुरू किए गए कुछ सुधारों की सराहना की है। हालांकि संस्था ने टिकाऊ आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बजटीय संतुलन सुधारने और आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। लैंगिक समानता एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जूनियर अचीवमेंट मैस्केरेंस के बीच आज कुदो में गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की शुरुआत के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस

0: कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की क्षमताओं को सशक्त बनाना है। इस अवसर पर उपप्रधान एवं संबंधित मंत्री आर्याना वोमारी ने इस साझेदारी का स्वागत करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण को नई दिशा प्रदान करेगी।
1: गोदाम में जेंडर इक्वालिटी और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गैर सरकारी संगठन जूनियर अचीवमेंट मास्कागाई के बीच इस समझौते पर हुए हस्ताक्षर से आधिकारिक तौर पर गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई। मकसद है 35 साल या उससे कम उम्र की महिलाओं में रोजगार पाने की क्षमताएं बेहतर करना और उन्हें ठेकेदारी के प्रति प्रोत्साहित करना। किम्बली आमिया कहती है, मेरा अपना कारोबार है, मैं बायो पैदावारें तैयार करती हूँ, अब मैं और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश रही हूँ। एस्टेल जमा कहती है, मैंने होटल में 8 सालों से पेस्ट्रीज में काम किया है, अब मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहती हूँ और अपनी तरह के नौजवानों के लिए उदाहरण बनना चाहती हूँ। जूनियर अचीवमेंट मास्कागाई की गोल कोच ओसियान फोंत कहती है, इस प्रोग्राम के तहत महिलाओं को कई महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, खासकर उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जाएगा। अपने भाषण में उपप्रधान और जेंडर इक्वालिटी मंत्री आर्याना वोमारी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जरूरी साधन उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम कमजोर वर्ग की युवा महिलाओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा। वे कहती हैं, जनता में आधे से ज्यादा महिलाएं हैं और इनमें ज्यादातर घर पर रहने वाली महिलाएं हैं, जिनका योगदान आर्थिक आंकड़ों में तो नहीं दिखता, लेकिन जो पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं जूनियर अचीवमेंट मास्कागाई के अध्यक्ष रोशन रामोली के अनुसार ये प्रोग्राम महिलाओं को अपना जीवन बदलने में मदद देगा। वे कहते हैं, कई महीनों का प्रशिक्षण होगा, इसके तहत मेंटर्स और विशेष पेशेवरों की मदद मिलेगी, दूसरे कारोबारों के साथ सहयोग कायम कराया जाएगा और नए कारोबार शुरू करने और बिक्री के लिए भी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। याद रहे कि इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग 21 जुलाई से शुरू होगी।
0: मॉरिशस टेलीकॉम के ऑल माइटी समिट का आज सुबह पाई स्थित स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आधिकारिक शुरुआत हुआ। डिजिटल परिवर्तन पर केंद्रित इस सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रही हैं। यह आयोजन वर्ष 2026-2027 के बजट के उस दृष्टिकोण के रूप के अनुरूप है, जिसमें प्रौद्योगिकी को मॉरिशस के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बनाया गया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने घोषणा की कि मॉरिशस अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी कार्यक्रम से जुड़ेगा। यह रणनीतिक समुद्र तल फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना अमेरिका, भारत और साझेदार देशों के बीच डिजिटल संपर्क को और मजबूत करेगी। लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इस परियोजना की घोषणा गूगल ने इसी वर्ष फरवरी में भारत में आयोजित एआई समिट के दौरान की थी। पोर्ट लुइस की ट्रेजरी इमारत में आज दोपहर शिष्टाचार भेंट के दौरान मध्य अफ्रीकी मामलों तथा व्यापार एवं आर्थिक मामलों की डेप्यूटी अमरीकी सहायक उप विदेश मंत्री सारा स्ट्राउटमैन ने प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यावसायिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए नए अवसरों की तलाश पर चर्चा हुई। इसके साथ ही मॉरिशस की आर्टेमिस समझौतों में भागीदारी पर भी विचार विमर्श किया गया। आर्टेमिस समझौते अंतरिक्ष क्षेत्र में शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। राष्ट्रीय अवसंरचना मंत्री अजय गणेश ने बुधवार 15 जुलाई को यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने से जुड़ी दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जायजा लिया। त्रियानो में उन्होंने नई पेलगैन त्रियानो लिंक रोड का उद्घाटन किया, जिसे 43 मिलियन रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके बाद मंत्री फ्लिकॉफ्लाक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रस्तावित बाईपास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना की अनुमानित लागत 160 मिलियन रुपए है और इसका उद्देश्य क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को और सुगम बनाना है।
2: त्रियानो इलाके से गुजरने वाले गाड़ी चालकों के लिए अब से एक नया मार्ग उपलब्ध। 43 मिलियन रुपए की लागत में पेलगैन त्रियानो लिंक रोड का निर्माण। ये पेचिकॉम ब्रांच रोड को एबेन में M3A40 नए रावरावाट मार्ग से जोड़ेगी। इस संपर्क से परिवहन को लेकर बेहतर स्थिति होगी, साथ में मोटरवे M1 में वाहनों की आवाजाही में आसानी होगी और त्रियानो, पेचिकॉम और एबेन के बीच फासले में कम समय लगेगा।

0: Ce bâtiment APIM, il y a le thermite que rond-point qui relie avec Terre Rouge, Verdun et Grode. La route il a une distance de 300 mètres et une largeur de 7,5 mètres. Ben, travaux qui inclut aussi le upgrading d'un pont existant qui crosse la rivière Plain Williams.
1: इसके बाद रुख फिकॉनफ्लैक जहां पर मंत्री ने भावी बाईपास के निर्माण स्थल का दौरा किया अनुमान है कि 160 मिलियन रुपए की जरूरत होगी इस नए मूल ढांचे का मकसद है मुख्य सड़क के लिए एक वैकल्पिक रास्ता क्योंकि अक्सर वहां परिवहन समस्याएं उत्पन्न होती है इससे फिकॉनफ्लैक की ओर और इलाके के स्थलों में आवाजाही में सुविधा होगी
2: Fikonflak, c'est un cul-de-sac où rentrer ou sortir par même chemin. Maintenant, on a deux chemins et possiblement, nous avons un troisième chemin de Volmort à Tamarin. Alors, il y a un grand plus pour nous. On a 14 hôtels de Fikonflak. Un hôtelier extra content et un habitant aussi très content avec ce nouveau développement-là.
3: Il permet que nous, un sous additionnel, c'est un savings qui nous fait le projet qui est initié depuis la visite. Vint jusqu'à Cascavel. Donc, nous réussissons à faire un savings. Ça, savings, ça nous peut faire, nous permet de sortir contre l'hôtel Manisha. Nous prévoir que d'ici octobre, chemin-là, pour avoir fini pareil.
1: ये बात उल्लेख किया है कि ये दो परियोजनाएं राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क को आधुनिक बनाने और देश भर में सड़क का इस्तेमाल करने में सुधार लाने के मकसद से सरकारी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती है
4: जैसे कि आपको हम बता रही थी कि मॉरिशस टेलीकॉम की ऑल माइटी समिट का आज सुबह पाई स्थित स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में शुभारंभ हुआ है और इसके अंतर्गत उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने घोषणा की कि मॉरिशस अमरीका इंडिया कनेक्ट सब्सी कार्यक्रम से जुड़ेगा यह रणनीतिक समुद्र तल फाइबर ऑप्टिकल केबल परियोजना अमरीका भारत और साझेदार देशों के बीच डिजिटल संपर्कों को और मजबूत करेगी इसमें लगभग 15 बिलियन अमरीकी डॉलर की घोषणा की गई है के बारे में अब बात की गई है इस परियोजना की घोषणा गूगल ने इसी वर्ष फरवरी में भारत में आयोजित एआई समिट के दौरान की थी अदिति अवतार
0: मॉरिशस टेलीकॉम द्वारा पाई में आयोजित ऑल माइटी समिट बजट 2026-2027 के उद्देश्यों के अनुरूप है जिसमें टेक्नोलॉजी को विकास और कंपेटिटिवनेस का मुख्य आधार माना गया है इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस की डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने के मकसद से एक रणनीतिक परियोजना की घोषणा की
5: I am pleased to confirm today that Mauritius will participate in the America-India Connect subsea cable program. This is the major, major leap forward. This major international project will add a vital layer of resilience to our digital infrastructure and reinforced strategic routes towards South Africa, India, and Singapore. Mauritius is becoming, in the most concrete sense, a digital bridge between Africa and Asia.
0: Google company की तरफ से 15 बिलियन डॉलर की फंडिंग वाले अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी प्रोग्राम में मॉरिशस की भागीदारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है
6: Déjà Maurice nous peut augmenter l'utilisation de la bande passante internationale qui veut dire qu'il nous coûte bien encore et quand nous cause internationalisation nous cause FDI nous aussi cause ban export de ban service de l'internet mais quand nous avons une qualité câble bien sûr il ouvre le chemin pour investissement additionnel à Maurice et aussi pour qu'il y ait une entreprise mauricienne capable de déployer ce service en ligne à partir de Maurice.
0: मॉरिशस टेलीकॉम के चेयरमैन सगत लाला ने मॉरिशस को एक वास्तविक रीजनल हब बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए बड़े निवेश पर बल दिया
7: टुडे मॉरिशस टेलीकॉम कंटिन्यू टू इन्वेस्ट हेविली इन इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज साइबर सिक्योरिटी एंड नाउ डीपली इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस And our human capital.
0: इस सम्मेलन के अंतर्गत मॉरिशस टेलीकॉम और अमेजोन वेब सर्विसेज के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए ये दोनों कंपनियों के CEO विमल गंगादीन और सब सहारन अफ्रीका के लिए AWS की मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योति बाल की उपस्थिति में चला दोनों साझेदार प्रतिभाओं के विकास नवाचार और अनुभवों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करेंगे इस दूसरे ऑल माइटी समिट में माइटी की नई पहचान पेश की गई जो पूरी तरह से कनेक्टिविटी नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित हैं।

0: ये गतिविधि इस शुक्रवार को समाप्त होगी, जिसमें मॉरिशस सहित कई देशों के 1000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।
1: देश में ईंधन भंडार की स्थिति के अनुसार मॉरिशस के पास वर्तमान में 18 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल का भंडार उपलब्ध है, जबकि घरेलू गैस का भंडार 13 दिनों के लिए पर्याप्त है। वर्तमान ईंधन कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी के पास कीमतों की समीक्षा के लिए 19 अगस्त तक बैठक आयोजित करने का समय है। अन्य खबरों में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अब्रवासी घाट एक महत्वपूर्ण वर्षगांठ मना रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मॉरिशस में गिरमिटिया प्रथा के इतिहास के प्रतीक इस महत्वपूर्ण स्मारक की विरासत को संरक्षित करने के महत्व को एक बार फिर याद दिलाती है। अब्रवासी घाट देश के इतिहास और उन हजारों श्रमिकों की स्मृतियों से जुड़ा एक प्रमुख स्थल है, जिन्होंने अनुबंधित श्रम व्यवस्था के तहत मॉरिशस का रुख किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले, कनाडा में इस समय 800 से अधिक जंगलों में आग सक्रिय रूप से जल रही है, जिसका असर अब अमरीका के कई राज्यों तक पहुंच गया है। धुएं के कारण वायु गुणवत्ता को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। अमरीका के उत्तरी राज्यों मिशिगन, मिनेसोटा और मिनियापोलिस के बड़े हिस्सों में वायु गुणवत्ता को अमरीकी वायु गुणवत्ता सूचकांक कार्यक्रम ने खतरनाक श्रेणी में रखा है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे घरों के अंदर रहें और बाहर निकलने से बचें। अमरीकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार वायु गुणवत्ता संबंधी चेतावनियां अब अपर मिडवेस्ट, ग्रेट लेक्स क्षेत्र और अमरीका के उत्तर पूर्वी हिस्सों तक फैल गई है। कैनेडियन इंटर रेजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर के मुताबिक कनाडा में वर्तमान में 857 जंगलों की आग सक्रिय है, जिनमें गुरुवार को लगी यानी कि आज लगी 23 नई आग भी शामिल है। और उधर टीकाकरण के क्षेत्र में सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने एक मिश्रित तस्वीर पेश की है, जहां वैश्विक स्तर पर टीकाकरण कवरेज में लगातार सुधार जारी है, वहीं अब भी लाखों बच्चे आवश्यक सुरक्षा से वंचित हैं या अपना पूरा टीकाकरण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं। संघर्ष, आबादी का विस्थापन और गरीबी जैसे कई कारण बच्चों के टीकाकरण अभियान के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। वहीं मॉरिशस में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़े देश में टीकाकरण की मजबूत स्थिति को दर्शाती हैं। और अंत में आपको ले चलती हैं भारत की ओर। जगन्नाथ उत्सव हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। ये पर्व भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। जगन्नाथ उत्सव में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा मुख्य आराध्य देवता मानी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, इस पावन उत्सव के केंद्र में होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर गोकुल से मथुरा की दिव्य यात्रा करती हैं। ये रथ यात्रा भक्ति, आस्था और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृति का प्रतीक मानी जाती है। देश विदेश में लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेते दिख रहे हैं। इसमें प्रस्तुत है ये विशेष रिपोर्ट।
2: जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा भारत के सबसे प्राचीन और भव्य धार्मिक उत्सवों में से एक है। ये हर साल ओडिशा के पुरी शहर में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालाभद्र और बहन सुभद्रा को उनके मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक विशाल रथों पर ले जाया जाता है। इस पवित्र यात्रा को देखने और इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। इस यात्रा को प्रेम, भक्ति और पारिवारिक संबंधों का प्रतीक भी माना जाता है। रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें तीनों देवताओं का 108 कलशों के पवित्र जल से महाअभिषेक किया जाता है। रथ यात्रा के दिन तीन अलग अलग रथ तैयार किए जाते हैं, एक भगवान जगन्नाथ के लिए, दूसरा बालाभद्र के लिए और तीसरा देवी सुभद्रा के लिए। इन रथों को हर साल परंपरागत विधि के अनुसार बनाया जाता है। हर रथ की ऊंचाई, रंग और पहचान अलग होती है।

0: जगन्नाथ रथ यात्रा का संदेश केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है। ये उत्सव समानता, सेवा, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस यात्रा में किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं होता। हर व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है और उनके रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। इसी कारण जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा को भारत की सबसे विशाल और लोकप्रिय धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है।
1: बात करते हैं अब हम फुटबॉल के बारे में। अर्जेंटीना के मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी ने विश्व कप के लगातार दूसरे फाइनल में जगह बनाने के बाद अपनी टीम की शानदार वापसी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने आखिरी मिनटों में इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता दिखाई। अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व जताते हुए स्कालोनी ने कहा कि टीम के हर खिलाड़ी को इस चयन में अपनी जगह पूरी तरह से हासिल है और सभी खिलाड़ी इस स्तर पर खेलने के योग्य। इस पर ज्यादा जानकारी अरविंद बिसेसा दे रहे हैं।
2: अर्जेंटीना ने एक बार फिर ऐसा मैच खेला जिसकी कहानी सिर्फ वही लिख सकता है। आखिरी मिनटों तक पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हरा दिया और इस रविवार को वे अपने वर्ल्ड कप खिताब को बचाने उतरेंगे। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त शारीरिक मुकाबला देखने को मिला। इस दौरान 19 फाउल हुए और मैच में काफी आक्रामकता थी, लेकिन कोई भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा। हाफ टाइम के बाद द थ्री लायंस ने आखिरकार अपनी दहाड़ दिखाई। 55वें मिनट में एंटोनी गोडन ने गोल करके इस वर्ल्ड कप में अपना पहला गोल दागा। लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत से ही हार न मानने वाली टीम अर्जेंटीना फिर से हिम्मत नहीं हारी। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने मैच के आखिरी 30 मिनटों में पूरी तरह दबदबा बनाया और गेंद को अपने पास ही रखा। यह लगातार दबाव रंग लाया। 50वें मिनट में एंजो फर्नांडेज ने मेसी के पास पर एक बेहतरीन शॉट लगाकर दोनों टीमों को 1-1 की बराबरी पर लाखड़ा किया। जब ऐसा लग रहा था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, तब लियोनेल मेसी ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। इंजुरी टाइम में उनके एक सटीक क्रॉस पर लुटारो मार्टिनेज ने शानदार हेडर के जरिए अर्जेंटीना को जीत दिला दी। इस मैच में 2 असिस्ट करने के साथ ही लियोनेल मेसी अब अपने कैरियर का 3रा वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगा। अब सबकी नजरें उस बड़े मुकाबले पर हैं जिसका सबको इंतजार था, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। एक तरफ लियोनेल मेसी लगातार दूसरा टाइटल और अपने देश के लिए चौथा स्टार जीतने की कोशिश करेंगे, दूसरी ओर लामिन यमाल लाहोआ को दूसरे वर्ल्ड कप खिताब दिलाने के इरादे से उतरेगा। यह फाइनल मुकाबला इस रविवार रात 11 बजे MBC Sports 11 पर लाइव दिखाया जाएगा।

0: पते हम अब मौसम के हाल की ओर आस्था गोविंद चितमन के साथ।
1: देश के उत्तर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। कल सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी। बाद में देश के पश्चिम में रह रहकर बरसात हो सकती है। दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। हवा उत्तर की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम सहली इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्यास्त 5:47 पर, सूर्योदय कल सवेरे 7:45 बजे।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कंसोल पर हमारे सहयोगी आवी हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ रहिए, कुछ ही देर में हम बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: शोक समाचार सुनिए। आविनो जैक्सन कैटरबोन में, आविनो जैक्सन कैटरबोन में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती द्रौपदी भगवंती, श्रीमती द्रौपदी भगवंती जिन्हें शारदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी। कल दिन के 12 बजे उनके घर कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून इंडिपेंडेंस स्ट्रीट लापे पितो में, इंडिपेंडेंस स्ट्रीट लापे पितो में 13 साल के 13 ईयर्स ओल्ड के कुमार हर्ष गुलब, कुमार हर्ष गुलब जिन्हें हरीश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पिता धीरज गुलब के घर लापे पितों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरांस पितों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 एएम। एवेन्यू कोरियोलिस कैटरबोन में, एवेन्यू कोरियोलिस कैटरबोन में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रगुप्त पुनित जिन्हें मुकेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर कैटरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियानो की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 पीएम। महात्मा गांधी रोड लालमाटी में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंपावती हरी पैदाशी नाम जीतन और जिन्हें कुसुम के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके जीजा सतीश हरी के घर गांधी रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 पीएम। सवान रोड नुवेल फ्रांस में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के श्री जमुन सिंह बासुदेल सिंह जिन्हें धर्म के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गामजी लेन नुवेल फ्रांस की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 एएम। नंबर 94 ग्रानम रोड वाकवा में 69 साल के सिमों अरी क्लेन सुताना जिन्हें एनरी के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर वाकवा से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुमोरो एट 10 एएम। ऋषि दयानंद रोड मोटसिनियर सुरीनाम में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अस्वंती जादू पैदाशम कतवागो जिन्हें अस्वंती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति दुलम जादू के घर ऋषि दयानंद रोड मोटसिनियर सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 एएम। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv, Raftar Vibes, Film Me Rides, Center, 95.5, 95.6, East, West, 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: अपने घरे मिला लीजिए इस वक्त शाम के 6:28 हो गए हैं। नमस्कार और आदाब। जी हाँ बिल्कुल, आपका हम स्वागत करते हैं नई सोच कार्यक्रम। कैसे हैं जी, सब ठीक ठाक है ना? हम तो यहाँ पर फिट एंड फाइन हैं, बस आप लोगों के होने का एहसास अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे नई सोच कार्यक्रम समाचारों के बाद ही आते हैं और इस शो में हम एक ही सोच लेकर के आते हैं, जो सोचने पर भी हम विवश हो जाते हैं, हम मतलब मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये भी हो सकता है।

You're listening to Radio Manoranjan for your nahi soch karyakram abhi ke saath. Thank you so much ki aap log hamare saath strongly connected hai. Kabhi kabhi hum sochte hain ki yaar mere jo kismat hai phut gayi hai, toot gayi hai, chakna chur ho gayi hai. Pata nahi hai ki hamari kismat mein ye samne aayegi ya nahi. एक्चुअली मैं किस्मत पर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं कर्म पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ. मेरे दोस्त, अगर आपके अंदर में एक जुनून है या फिर आपके इस दिमाग में एक काम करने की एक तीव्र इच्छा है, एक ललक है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट. चाहे आपकी किस्मत कुछ भी लिख गई हो, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग में ये ठान लिया है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे हर हाल में उसे कंप्लीट करके उसको डिस्प्ले करना है, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट. चाहे आंधी हो, तूफान हो या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आए, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके दिमाग में अगर वो क्लैरिटी है कि मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं ये करूँगा, वो करूँगा, प्लानिंग करूँगा, ये करूँगा, ये मदद मांगूंगा या फिर ये एग्जीक्यूट करूँगा, सो व्हाई नॉट, इसके बारे में सोचियो मेरे दोस्त.

जी हाँ दोस्तों, शाबाशियां डेफिनेटली मिलेगी अगर आपने कड़ी मेहनत की है। ये कड़ा परिश्रम करने के बाद जब शाबाशियां मिलती है ना, तब जाकर के लगता है कि हाँ, सुकून तो मिल रहा है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और उसी सेटिस्फैक्शन के साथ आप एक नए काम, नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आप में एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाएगी।

जो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, सो रिमेंबर यू नीड टू डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, अनुशासन को अपनाना होगा। मोटिवेशन तो होगा वहां पर, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इज योर ओन सेल्फ डिसिप्लिन।

दोस्तों, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, काम से निकल कर घर की ओर जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस गए हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक में अभी की आवाज आ रही है आप तक का, इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी।

कर मैदान फतेह। जब आप जिंदगी के मैदान में उतरते हैं, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, ऑब्स्टेकल कुछ भी हो, बस मन में ये बात ठान करके जाना कि भाई मुझ में वो ताकत है, मुझ में वो हिम्मत है और मैं उस सच को सच करूंगा। पता है, सच को सच करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, एक जो सच कहने की हिम्मत रखता है और दूसरा जो सच कहने की ताकत रखता है, तब जाकर के सच सच हो जाएगा। तो चलिए, ये जो सच्चाई है हमारे साथ जुड़ी हुई है और ये सच्चाई सुफैन में बैठे हुए हमारे एक अजीज दोस्त है जिनका नाम है नील सकराम और उस सच को सच करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए इस सच को हम अभी के लिए शाबाशी देते हैं।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब वंस अगेन फॉर यू दिलों की आवाज कार्यक्रम। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा बंदा जुड़ा हुआ है जो मेरे नाम से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम तो अभी उदय है, उनका नाम है अभ्युदय, जो इस वक्त कौन मास्क पावे से हमें याद कर रही है। हियर वी गो फॉर यू मिस्टर अभी।

दोस्तों, इस वक्त रात के 7:13 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। जो लोग अभी अभी ऑफिस से निकलकर घर की ओर जा रहे हैं, हम आपको कहना चाहेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक में हमारे शो को एंजॉय कीजिए। बॉस के साथ आज कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, इट्स ओके फाइन। अब इसको लेकर के माथा पच्ची करने की बजाय आप अपने फैमिली के बारे में सोचिए। जी हाँ दोस्तों, यही तो हमारी जिंदगी है। जितना हम अपने अंदर को और ज्यादा चट्टान की तरह मजबूत करेंगे, उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। बस जो हो गया है सो हो गया है, भूल जाइए। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। एक स्माइल के साथ आप भी आगे ड्राइव करते जाइए, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। टेलीफोन के घंटी तब बजता है यहाँ पर ही। विल बी टेकिंग योर फोन कॉल्स ऑन 402-420-70 पर। यू मे ऑल्सो सेंड अस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250-6200। वेटिंग फॉर यू दोस्तों।

ये मुझे पता नहीं कि आपका दिल क्या कह रहा है, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि ऐसे टाइम पर बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हल्की सी बारिश हो रही है या फिर ठंडी हवाएं बह रही है, इट्स ओके फाइन, लेकिन हमारे शो को आप एंजॉय करते जाइए। यू मे ऑफ कोर्स सेंड अस मैसेजेस और हैपनिंग ऑन 5250-6200। ये गाना खासकर हम नील के नाम डेडिकेट कर रहे हैं जिस वक्त हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं।

जी बिल्कुल, दिस इज इंडियन ओशन द खजुराहो गाइस। ये गाना उन तमाम दोस्तों के लिए जो ओस्तखंदे, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पढ़ने वाले दोस्तों के लिए। वी डू हैव विकेश, साथ ही साथ वी हैव रोशन बुदना, जो हाल ही में उन्होंने अपना बर्थडे मनाया था। वी ऑल्सो हैव विशम एंड ऑल्सो लिनले।

जो दोस्तों इस वक्त रात के 7:34 हो गए हैं, ये गाना खासकर हम नीता लोखन के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, उनके लवली और प्यारे हस्बैंड के नाम जिनका नाम है अजय लोखन। वी डू हैव आयुषा और आहान और सभी लोखन फैमिली जो गांव बस हमें याद कर रहे हैं, ये गाना खासकर आप लोगों के नाम।

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। वंस अगेन वेलकम बैक फॉर योर दिलों की आवाज कार्यक्रम वेटिंग फॉर यू ऑन 402-80-70 पर फॉर योर फोन कॉल्स या फिर एक मैसेज भेज सकते हैं ऑन 5250-6200।

जॉन दोस्तों, इस वक्त रात के 8:16 हो गए हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो गाना मैं चलाने वाला हूँ, खासकर हम मोहतरमा रेहाना के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जो फेनिक्स से हमें याद कर रही हैं। वी ऑल्सो हैव जालिला और साथ ही साथ हैं उनके सभी फैमिली मेम्बर्स। वी डू हैव प्रिया गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा वो एग्जैक्टली अर्जेंटीना को सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन उनके जो लवली पति हैं उन्होंने कहा चलिए देखते हैं स्पेन को भी वो सपोर्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में एक क्लैश है, फिर भी पति पत्नी है, प्यार का होना जरूरी है मेरे दोस्त, चाहे फुटबॉल टीम अलग क्यों ना हो। जी दोस्तों, अगला गीत स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे प्रीति के नाम, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा लवली पति विशाल के नाम, साथ ही साथ उनके बच्चों के नाम भी वो डेडिकेट करना चाहेंगे, विदाउट फॉरगेटिंग उनके प्यारी और लवली सासू माँ जिनका नाम है माई।

जी हाँ, छोटे छोटे मतलब बड़े शहर में ऐसी छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं, लेकिन क्यों बातें हैं? ये गाना खासकर उन तमाम दोस्तों के नाम जो जगजीत सिंह के बहुत बड़े फैन हैं।

Yes, so thank you so much ऐसे ऐसे गीत की फरमाइश करने का, क्योंकि कभी हम सोचते हैं कि जो चॉइस आप लोग हमें देते हैं वही अपने आप में तारीफ़ काबिल हैं। दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की चॉइस को लेकर के, इसीलिए एक स्पेशल प्रोग्राम दिलों की आवाज़, जो आवाज़ आप दिल से निकाल कर हमें फ़ोन करके कहते हैं कि अभी मेरे लिए ये गाना हो जाए, सुनने के बाद ही ऐसा लगता है कि क्या बात है, सच्ची मुच्ची दिलों की आवाज़ ही है। इसीलिए हर रोज़ शाम के 7 से 9 बजे तक ये आपके अपने प्रोग्राम हैं, जो आप दिल से सुनना पसंद करते हैं, दिल से आप हमें कहते हैं, और यहाँ पर हम भी दिल से आप लोगों के सामने पेश करते हैं। इसके लिए हमारे हम कदम बनने के लिए थैंक यू सो मच। ये गाना जो अगला गीत है, स्पेशली हम डेडिकेट करना चाहेंगे पूनम के नाम, उनकी बेटी परितुष्टि, साथ ही साथ वी हैव मनीष उनके हस्बैंड, और वी डू हैव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लवली माँ, जिनका नाम है संगीता, जो घोंबा के रहने वाली हैं। उनके मामू हैं अजय, और साथ ही साथ हैं उनके लवली मौसी जिनका नाम है बेबी। बेबी के 3 बच्चे हैं, वी डू हैव जानवी और निधीश, साथ ही साथ है व्योमिनी, और उनके मौसा का नाम है बजैया, और जितने सारे बीसीस ऑफ फैमिली जो लाफलोगा के रहने वाले हैं।

So guys, waiting for you on 402-8070 पर आप हमें फोन कर सकते हैं, कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे यहाँ पर हम चलाएंगे, या फिर एक मैसेज भेज सकते हैं on 5250-6200।

थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया दोस्तों, लेकिन वक्त आ गया है जाने का, लेकिन आप लोगों से बिछड़ने का एक दर्द है, लेकिन खुशी इस बात की भी हो रही है कि नेक्स्ट थर्सडे को हम मिलेंगे जरूर जरूर। सो दोस्तों थैंक यू सो मच और विल बी मीटिंग वेरी सून। टिल देन एंजॉय द गुड म्यूजिक ऑफ रेडियो मनोरंजन, टेक केयर, नमस्कार और आदाब।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all
0: night. NBC TV, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: मैं किसी और आदमी के साथ कुछ नहीं करने वाला। सैम को पहले ही कह चुका हूँ, अब तुम भी सुन लो।
5: कुणाल, please don't do this to me right now. मेरा बॉस कभी भी आता होगा, सैम ने मुझे प्रॉमिस किया था।
4: लेकिन मैंने प्रॉमिस नहीं किया था ना?
5: तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। जब एम यहाँ आएगा, you had better be ready.
6: है तो तेरी मेरी राय, उल्टी पुल्टी बातें।
0: रविवार 19 जुलाई को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म दोस्ताना, रोमांटिक कॉमेडी मूवी जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन पर फिल्माई गई दोस्ताना। भोजपुरी तड़का किरण संगे

रात के 9:03 होल बा और जैसे देखा था वा जलसा के रात शुरू हो के समय हो गल बा और ये बखत आप सुना था वा अपन मनपसंद प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तरका और पहला गीत आप सब कोई के मनपसंद कलाकार कुणाल हिरीलाल के आवाज़ में आप सब कोई के ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। हम किरण हमर सब प्रेम नमस्ते स्वीकार करा और हमेशा के तरह बीफे के रात के हमने के मुलाकात होवेला बहुत प्यार के साथ बहुत बेसब्री के साथ इस दिन के इस समय के इस वक्त के इंतज़ार रहेला और अभी जो मौसम बाहर चलता थोड़ा ठंडा तक कहूँ थोड़ा गर्म और ऐसा में बीमारी थोड़ा बढ़ाता कहूँ तो थोड़ा कमती भी होता तो आपके चाहिए अपन ख्याल भरपूर रखे के और जब ख्याल रखे के बात चलेला तो वो खाली शारीरिक मानसिकता के ख्याल नहीं रखे के बल्कि आपके मन आपके जहन आपके चेहरा एकर भी ख्याल चाहिए बहुत ज़्यादा रखे के और जब आपके चेहरा ठीक रही मन ठीक रही मिजाज ठीक रही तो आपके शरीर भी सही रही तो चला आपके ई मनपसंद प्रोग्राम के शुरू करत है जा और कार्यक्रम तो शुरू हो ही गल लेकिन अब आपके फ़ोन कॉल्स के इंतज़ार रही अभी से रात के 11 तक जिसे सुना था हुआ फ़ोन कॉल बजे के शुरू हो गल तो चला कार्यक्रम के जारी रखब जा और आपके फ़ोन कॉल्स एक के बाद एक ले लीजिए।

रात के 9:14 होलबा और आप लोग के फोन कॉल्स भारी संख्या में आवा था। एक अर से आगे एगो छोटा खराबी रहा, लेकिन अब आपके फोन कॉल से कब जाले हुए। अभी फोन कर लन पितों से अमृता गणेश जी और आप स्नेहा सोनिया परी विशान और मीनाक्षी के नाम और पूरा गणेश परिवार के नाम ये अगला गीत करे चाहता हुआ। और आपके मनपसंद गीत में बा कोहरिन के खेत किसनवा धान रोपेला लीलो माथुर के आवाज़ में। और ये गीत जितना कोई खुशी रहेला जा सुने के आप सब कोई के नाम। तो चला पीतों से अमृता गणेश के फरमाइश पर ये गीत सुनी जा।

लीलो माथुर के आवाज में ये भावुक गीत के बाद जो अगला गीत चली वो भी एगो ऐसा ही भावुक ही गीत बा, लेकिन आवाज अबरीहला रही ज्ञान मोहिपतलाल जी के। और ज्ञान मोहिपतलाल जी के आवाज में ए बबुआ तू ना रो ये गीत सुने चाहत हवन आत्माराम जी, आत्माराम जी जे बेलिया से हवन और बोलत हवन कि उनकर तबीयत ठीक नहीं बा, आप बीमार हवा और हमने सब कोई के प्रार्थना, हमने सब कोई के प्यार और आशीर्वाद आप संगे बा आत्माराम जी। आप बोलत हवा कि हॉस्पिटल जाइबा अभी और थोड़ा दिन में, तो हमें यही दुआ करत है जा, यही प्रार्थना करत है जा कि अस्पताल से जब आइबा तोहर तबीयत एकदम ठीक हो जाए और हमने के शरीर समय के साथ जैसे जैसे वृद्धावस्था आवेला वैसे वैसे दर्द और बीमारी भी बढ़ले जाला। और एक संगे संगे और एगो चीज बढ़ेला ऊ है ई सब कुछ सहन करे के शक्ति। भगवान आपके जे ई बीमारी देवता जे ई दर्द आपके नसीब में बा ता आपके भगवान के ओर से बहुत बहुत शक्ति भी मिली, बहुत शक्ति मिला था। और आप सब कोई जितना कोई अभी बीमार हवा जा दुख दर्द में हवा जा हमने के यही आशीर्वाद बा, यही प्रार्थना बा कि आपके सेहत ठीक रही और जो दुख दर्द बा वो कमती तो होइबे करी लेकिन ओके सहन करके शक्ति भी आपके भरपूर मिली और आपके प्यार और मोहब्बत और एगो अच्छा वातावरण में रहे के भी शुभ अवसर मिलते रही। तो चला ई जोन गीत बा ए बबुआ तू ना रो आत्माराम जी के ओर से उनकर चार गो बहिन ललिता सुदेवी छोटी और प्रभावती के नाम और आप सब कोई के नाम जेके ई गीत पसंद बा।

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: देखिए, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आज तक मैंने आपको पलटकर देखा तक नहीं, फिर भी आप मेरा पीछा कर रहे हैं।
2: 4 साल में पहली बार उसने मुझसे बात की, ये मेरे प्यार की जीत की पहली निशानी है। I love her.
3: पहली बार है।
0: शुक्रवार 17 जुलाई को MBC 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म क्या यही प्यार है 2002 की मूवी जैकी श्रॉफ और आफताब शिवदासानी पर फिल्माई गई क्या यही प्यार है

0: जीवन संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: आज बीफे के 16 जुलाई 2026 तारीख है और आज के दिन एगो खास दिन है। आज के ही दिन हमने के देश में एगो विश्व धरोहर है, एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो पहला हमने के देश में एकर अंकन हो रहा। और आप जानेला हमने के पूर्वज उ जगह पर उतरल रहन सा, शहर में उ जगह पावल जाला, हम ओकर नाम नहीं लेव, आप इशारा समझ गल हुई बा। उ साइट के ई जन विश्व धरोहर सूची बा यूनेस्को के, ओकर में शामिल होइला आज पूरा 20 बरिस हो गल। ता उ साइट के जन्मदिन खातिर बहुत बहुत शुभकामना। हमने सब पूर्वज लोग के बहुत बहुत श्रद्धांजलि, जे लोग के बदौलत हमने यहाँ ऐसा, जे लोग के बदौलत हमने के ई भोजपुरी भाषा, ई भोजपुरी गीत संगीत और संस्कृति यहाँ पर बनल बा। और साथ ही साथ आज हमने हई सता उलुगी के बदौलत, आज हमने खुशी मनावत है जाता उलुग के बदौलत। इसने ही एगो खुशी के मौका आज मनावत हवन सुरेखा जी अपन परिवार के साथ। और सुरेखा जी ब्रह्मस्थान से हवन, आपके सहेली स्वस्ति के आज जन्मदिन बा। और आज हमने एगो ऐसन दुनिया में जिहिला जा जहाँ हमने के दोस्त, हमने के सहेली परिवार से भी बढ़ के रहेला। और हित मित्र परिवार सगे संबंधी के साथ जिए के ही नाम हा मनुष्य के जीवन, हमने एगो सामाजिक प्राणी है जा। तो सुरेखा जी अपन सहेली के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना प्रकट करत हवन। उनकर साथ स्वास्थ्य जी के पतिदेव हवन दया, उनकर बेटी विमी, वनिशा और वर्षा, आप सब कोई के ओर से स्वास्थ्य जी के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। बसंत सुपोल के आवाज़ में सुरेखा जी गीत सुनावे चाहत हवन, हैप्पी बर्थडे। और स्वास्थ्य जी के साथ साथ जेकर भी आज जन्मदिन बा, आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई।

इब वक्त आप हमने के सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और अभी से रात्रि के 11 बजे तक हमने के साथ रहे होला बा लगभग आधा घंटा तक।

खत्म हो गए और आपके फ़ोन कॉल्स भारी संख्या में आवा था, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग के मैसेज भी आवा था, ये मैसेज जो आप भेजेला 525-17-005 5 5 0 0 5 पर, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज सकबा भेजे, बहुत कोई भेजे ला जा तो ये सब मैसेज भी अभी पढ़ब जा। अगला जो गीत चली, ये गीत के फरमाइश करत हवन सुनीता जी घोंगोप से अपन दूगो बहन के नाम अमृता और विमाला के नाम, विमाला कोंगोमा से हवन। और ये अगला गीत है रंभा राम दोहल की आवाज़ में विश्व मशहूर वर्ल्ड फेमस जुबेदा लुतु लेके जाए। और ये गीत सुनने के इच्छा रखत हवन भाई अब्बू, भाई अब्बू जे हमेशा सुने लन हमने के प्रोग्राम आप ही की तरह, और उनकर एगो भतीजी हवन जे अभी तक बीमार हवन रकीबा, आपके भी हमने के दुआ हमने के प्रार्थना आप संगे बा। और रकीबा के मामू भाई अब्बू बोलत हवन कि रात दिन वो अपन भगिनी के सेहत खातिर दुआ करत हवन, तो चला हमने सब कोई मिल के आप खातिर खुशी दुआ सेहत के मांग करत है जा। और भाई अब्बू ई गीत रकीबा के साथ साथ अफेज, जयर, जहीरा, रईस, काला चोटी और अपी और उनकर बीवी के नाम करत हवन, तो चला ये सुंदर गीत सुनी जा जे हमके भी और आपके भी बहुत पसंद है।

देखते देखते रात के 10 बजे के बाद और 15 मिनट में रात के 10 बज जाए और फिर एक घंटा और हमनी के साथ रही, पूरा एक घंटा। और अगला जो गीत चली शिव के महिमा लीलो माथुर के आवाज़ में, ये गीत सुने चाह था वन शीला जी, और आप अपन पति के साथ ये गीत सुना था और अपन पूरा परिवार सब लड़का लोग के नाम ये गीत कर रहा था। तो चला शिव के महिमा सुनी जा लीलो माथुर के आवाज़ में, और जितना कोई भी कोनो भक्ति गीत सुने चाह था जा तो ये अगला गीत आप सब कोई के नाम।

0: संगे एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: हमने तुझे बहुत भरोसा किया, 20 दिन के लिए हमने तेरे लक पर इन्वेस्ट किया, आज तुझ पर बहुत पैसे लगे हुए हैं और तू जाना चाहता है।
2: मैं जाना चाहता हूँ।
3: अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है, तुझे यह लाया कौन? तेरा लक। और तुझे भेजेगा कौन? तेरा लक। अब तुझे तेरे लक से ही तेरे पासपोर्ट को जीतना होगा।
0: रविवार 19 जुलाई को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म लक, 2009 की मूवी हिंदी फीचर फिल्म लक। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
4: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
5: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
6: Your kind of music, all day, all night, right here.

आजकल ढेर ठंडा कर रहता और ऐसन में मरमिट में परेला गरम पानी चढ़ावे के। अब जो अगला गीत चली, ये अगला गीत के फरमाइश अल्बा सेज़ यमिल फॉरेस्ट साइड से हमेशा हमने के सुनेलन शांता सुकारी जी, और आप सुने चाहत हवा अपना दुहब दोहर गैया यशोदा मैया। ये गीत आप नाम करत हवा अपन पूरा परिवार के, आपके बेटा रविन, पतु किरण, बेटी संजना, बेटा सुदेश और जितना भी नाती पोता बा, जितना कोई अभी आपके सुनत हवन जा सब कोई के नाम आप ये गीत करत हवा। और शांता जी भी बोलत हवन कि उनकर भी तबीयत उतना ठीक नहीं रहेला। देखा आप में से बहुत कोई बोले रंजा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं बा, फिर भी आप लोग फ़ोन करेला जा, ये प्रोग्राम के सुनेला जा, इंतज़ार करेला जा, बातचीत करेला जा। और ये बहुत अच्छा बात बा कि आपके एगो मनोरंजन के एगो स्रोत बा ये कार्यक्रम से। आपके मनोरंजन तो होइबे करेला, साथ में आप वो सब गीत सुने सकत हवा जा जो आपके पसंद रहेला। और बोलल जरा अंत गति सोमति, मतलब कि जोन आपके सबसे अंतिम विचार रहेला आपके गति वैसे ही होवेला, अंत मति सो गति। और रात के सूते से आगे जोन सोच आपके दिमाग में आवेला वो पूरा रात आपके सहन में काम करेला और अगला दिन वो ही सच्चाई के रूप लेवेला। ये खातिर बहुत ज़रूरी है कि रात के सूते से आगे आप अच्छा अच्छा चीज सुनबा, सोचबा, देखबा और फिर नींद में जाइबा। तो चला ये सुंदर गीत आप सब कोई के नाम, खास तौर पर शांता सुखारी जी के फरमाइश पर।

इबखत रात के 10 बजकर बा और एक घंटा से कमती समय बा हमनी के पास ये प्रोग्राम के आगे बढ़ावे में और अगला जोन गीत चली माँ बाप भगवान है चंद्रदेव जीबोधन के आवाज में ये गीत सुने चाहत हवन तेरूश से शांति जी शांति जी ये गीत जितना कोई ये बखत ये प्रोग्राम सुना था वजह आप सब कोई के परिवार के नाम करत हवन आप बोलत हवा कि हमार परिवार के भी नाम ये गीत आप करत हवा बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दागोचिया के मराठी परिवार अपर दागोचिया के आपके भगीना ओम के नाम और जितना कोई ई समय सफर करत हवजा आप सब कोई के नाम ई अगला गीत माँ बाप भगवान है चंद्रदेव जीबोधन के

धनाजी नावजी के आवाज में जवानी के रे धुआं उड़ैले चलल जाला। ई गीत खास तौर पर वाशिरी के धनी जी के नाम।

0: सी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: देखिए, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए आज तक मैंने आपको पलट कर देखा तक नहीं, फिर भी आप मेरा पीछा कर रहे हैं।
2: 4 साल में पहली बार उसने मुझसे बात की, ये मेरे प्यार की जीत की पहली निशानी है। आई लव हर।
3: पहली बार है।
0: शुक्रवार 17 जुलाई को MBC 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म क्या यही प्यार है 2002 की मूवी जैकी श्रॉफ और आफताब शिवदासानी पर फिल्माई गई क्या यही प्यार है।

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: और अगला जनगीत चली ई गीत के फरमाइश कर ले हवन वाकवा से विश्वानी दोमन जी और आप सुने चाहता हुआ बसंत सुपोल के आवाज़ में लाल लाल फूल और ई गीत आप अपन बहन इंदिरा और शारदा और आप अपन सहेली नीला और प्रतिभा और शोभा और गीता गजाधर खातिर मांगत हवा तो चला विश्वानी दोमन जी आपके फरमाइश पर बसंत सुपोल की आवाज़ में लाल लाल फूल।

0: रंगीन संगे एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: हमने तुझे बहुत भरोसा किया, 20 दिन के लिए हमने तेरे लक पर इन्वेस्ट किया। आज तुझ पर बहुत पैसे लगे हुए हैं और तू जाना चाहता है।
2: मैं जाना चाहता हूँ।
3: अरे जाने वाले को कौन रोक सकता है? तुझे यह लाया कौन? तेरा लक। और तुझे भेजेगा कौन? तेरा लक। अब तुझे तेरे लक से ही तेरे पासपोर्ट को जीतना होगा।
0: रविवार 19 जुलाई को एमबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म लक, 2009 की मूवी हिंदी फीचर फिल्म लक। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
4: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
5: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
6: Your kind of music all day, all night.
7: अगला जन गीत चला था उहा सुनानोयान के आवाज़ में, हमने के देश के भोजपुरी गीत के सम्राट स्वर्गीय सुनानोयान। और ये गीत सुने चाहा था वन वाकवा से सुदेवी जी, और सुदेवी जी ये गीत नाम करा था वन अपन दीदी ललिता, कुशल परिवार, आत्माराम भैया, सुनीता दीदी, शोभा देवीना, मालेगा के रामरतन परिवार, और जितना कोई अभी हमने के सुना था वजह, आप सब कोई के नाम वाकवा के सुदेवी के ओर से।

रात के 10:30 हो गल बा और ये बखत जितना कोई सफर में हुई बजा, जितना कोई गाड़ी चलावत हुई बजा या फिर सफर के आनंद उठावत हुई बजा, तो आप सब कोई के नाम आशीष रामफल के आवाज में ये अगला गीत और ये गीत खास तौर पर अनीता जी के नाम जे फ्री कॉन्फ्लक्स से हवन, और ये गीत आप अपन पूरा परिवार, अपन सब दोस्त और ये बखत जितना कोई ये प्रोग्राम सुना था वजह, आप सब कोई के नाम अनीता जी ये गीत कर रहा था वन।

रात के 11 बजे में और 15 मिनट कमती बा और आप लोग बहुत प्यार के साथ साथ दिला जा हमेशा की तरह आप सब कोई के बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आज के रात आप सब कोई के अच्छा से बीती ई महीना के मध्य में चला है सर जुलाई महीना के और देखते ही देखते ई जोन बरिस बा एक 7 महीना पूरा हो जाए जैसे अभी तक आपके दिन चल ले आवा था यही उम्मीद यही आशा यही शुभकामना बा कि अभी से आगे एकर से और अच्छा दिन आए आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना हमने के मुलाकात कल फजर के फिर से होई हमारी धरोहर में और नहीं तो आवत बीफे के फिर से मिलब जा आप सब कोई के शुभरात्रि नमस्ते और बहुत बहुत शुभकामना

0: संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ
3: हम फिर से आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर। जी हाँ दोस्तों, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनेशा का प्रणाम। वैसे क्या आपको पता है कि जिंदगी कितनी भी बदल जाए, फैशन बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल के करीब रहते हैं। आज के इस खूबसूरत सफर में हम उन्हीं गीतों को फिर से महसूस करेंगे। शायद आप भी किसी गीत के साथ अपनी जिंदगी का एक हसीन लम्हा याद कर ले। मैं हूँ गिनिशा, जो बड़े प्यार से आपका साथ देने आ गई हूँ, और ये है आपका सुनहरे पल सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

0: वैसे देखा जाए तो हर रात की अपनी एक कहानी होती है और अगर उस कहानी के साथ पुरानी बॉलीवुड का एक मधुर गीत जुड़ जाए तो रात और भी खूबसूरत बन जाती है। तो दोस्तों अपनी सारी फिक्रें कुछ देर के लिए भूल जाइए, दिल को सिर्फ गीतों के हवाले आप कर दीजिए और बस हम आपका साथ देंगे सुनहरे पल में रात के 12 बजे तक।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

स्वागत तो हमने बड़े प्यार से आप सभी लोगों का कर लिया और उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप महसूस कर रहे हो। ये वो महफिल हैं जहां यादें भी मुस्कुराती हैं और गीत भी दिल को छू जाते हैं। ये है आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर। पुराने बॉलीवुड के वो नगमे जो कभी भी अपनी चमक नहीं खोते और आज फिर से आपके लिए सज गए हैं ये खूबसूरत सी सुनहरे पल। तो चलिए मिलकर यादों की इस महफिल को और भी हसीन बनाते हैं और अगला नगमा हम आपके लिए डेडिकेट करना पसंद करेंगे। आप बस आराम से बैठ जाइए और दिल खोलकर बस सुन लीजिए इस खूबसूरत से गीत को।

देखा जाए तो कुछ रिश्तों को अल्फाजों की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ गीतों को किसी की पहचान की जरूरत नहीं होती है, बस पहली धुन बजते ही और दिल खुद ही गुनगुनाने लग जाता है। इसी एहसास के साथ हम आए हैं आपका साथ देने के लिए सुनहरे पल में सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। वैसे अगर आप काम पे हो तो कुहाश।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आज फिर एक बार वक्त की घड़ी को थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, उन फिल्मों में, उन कलाकारों के पास और उन गीतों के साथ जिन्होंने मोहब्बत को अल्फाज दिए हैं, दोस्ती को सुर दिए हैं और ज़िंदगी को एक नई मुस्कान दी है। मैं हूँ आज अग्निशा और मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ हैं सुनहरे पल में। तो चलिए, यादों का ये सफ़र शुरू तो हमने कर लिया, उसको जारी रखते हैं अगले गीत के साथ।

इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे गीत को हम पेश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप दिल से उन्हें एंजॉय कर रहे हैं। ये है आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर। रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग आ जाते हैं बड़े ही शिद्दत से आपका साथ देने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको भी दिल से अच्छा लगा। लेकिन फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय। जी हाँ, जाने का वक्त हो गया है, लेकिन वापस लौट के आएंगे फिर से आपका साथ देने के लिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।